FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1949 की ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 और 51 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगे। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ. TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि

0: वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु में महादेवी वर्मा के विचार।
2: मैं समझती हूँ कि वाल्मीकि सत्य हैं और व्यास शिव हैं। कालिदास सत्य और शिव को समेटते हुए सुंदर हैं। उनमें भारत की समग्र सौंदर्य बोध भावना, प्रेम भावना, प्रकृति, ज्ञान, चिंतन सब कुछ एक साथ आ गया है। सबसे पहले कालिदास ने ही हमें हिमालय दिया है। तुषार किरीटिनी माता आपको और कहीं नहीं मिलती। आपको हिमवंत नाम मिलता है अनेक बार, लेकिन मुझको तो पूरे वेद साहित्य में कहीं हिमालय देवात्मा की तरह नहीं मिला। हिमालय ऐसा हो गया सजीव है, वो स्वयं शिव है और वास्तव में पार्वती स्वयं धरती है। धरती तपती है, जब तप करती है तब शिवता को प्राप्त करती है और जब शिवता प्राप्त होती है तब अजय हो जाती है, शौर्य को प्राप्त करती है। शिवता से जो शौर्य नहीं उत्पन्न होता वो शौर्य ही नहीं है। तो कालिदास ने वास्तव में हमें हिमालय दिया है और भारत की वो प्रकृति दी है जो उसके पहले कहीं नहीं मिलती है। पहले केवल वेद काल में आपको मिलेगी वो चेतना का आरोप जो आपको उषा में मिलता है, जो वरुण में मिलता है, मरुत में मिलता है। वो आपको यानी ऊंचाई तो दिखाता है परंतु तादात्म्य करने की शक्ति नहीं देता है। उसमें इतनी दिव्यता है किंतु कालिदास की प्रकृति हमारी प्रकृति है, हमारी धरती है, हमारी भावना उससे सहज ही तादात्म्य करती है। तो हिमालय भी उसका है और भारत की धरती भी उसकी है। एक अद्भुत राग के साथ उसने देखा है मेघदूत। पूरा काव्य मुझको तो प्रकृति का ही काव्य लगता है। हर पग पर प्रकृति बोलती है, आकाश बोलता है, धरती बोलती है, लताएं बोलती हैं, फूल बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं बोलता। चाहे रघुवंश को ले लीजिए, चाहे अभिज्ञान चाकुंदर को ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, प्रकृति मनुष्य की संगिनी है, चिर संगिनी है। इस प्रकार की कि उसके बिना वो जीवित रह ही नहीं सकता, उसके बिना जीवन का कोई मूल्य रहता नहीं। और मनुष्य के स्वभाव की कितनी गहराई से किसी को पहचान भी नहीं थी संभवतः जैसी कालिदास को। मनुष्य ही नहीं, आप ये वो मृग के पीछे दौड़ता है शिकार के लिए, दुष्यंत जाता है, मृग कैसे घूम घूम के देखता है, कैसे डरता है, यानी आप हर चित्र को देखिए। पशु आता है तो, पक्षी आता है तो, लताएं आती हैं तो, मनुष्य आता है तो लगता है एक चेतना सब में व्याप्त हो गई है, एक ही विद्युत का स्पर्श जैसे सब को स्पंदन दे रहा है। भाषा का ऐसा निखार लेते हुए, भावना की इतनी गहराई लेते हुए संभवतः कहीं और नहीं मिलेगा आपको। सौंदर्य भी उसका वो सौंदर्य नहीं है जो भौतिक है, जो स्थूल है, जो अंत में श्लत श्रृंगार हो गया जाके श्रृंगार, ये संस्कृत के उत्तरार्थ के कवियों में वो श्रृंगार उसका नहीं है। उसका श्रृंगार सौंदर्य

0: तप से जुड़ा हुआ है, निरंतर श्रम से जुड़ा हुआ है, निरंतर सौंदर्य को प्रस्वेद की बूंदें नहलाती रहती हैं, नहलाती रहती हैं, और उससे नई दीप्ति, नई आभा। वो सौंदर्य कहाँ है? जैसे मोती की आभा पकड़ में तो आती नहीं, लेकिन मोती में आभा तो है। जब मोती का पानी उतर गया कहते हैं, वो पानी कहाँ था नहीं जानते हम। इसी तरह कालिदास के सौंदर्य में जो तप है वो भी नहीं पता चलता कहाँ है, किंतु उसके शब्द शब्द में है, हर शब्द की गठन में है, हर शब्द के अर्थ में है। वो शब्द और अर्थ को तो प्रणाम ही करते हैं शिव पार्वती कहकर। मनुष्य के जीवन को, उसके चरित्र को, उसके क्षण क्षण को बहुत निरखा परखा है। और वैसा कवि जिसे भारत की धरती का कवि कहें, भारत के हिमालय का कवि कहें, भारत की भावना का कवि कहें, भारत का सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय कवि कहें, कि कुछ ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं है।
1: महादेवी वर्मा के विचार अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु में। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। आइए शुरू करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। सूर्य की हर एक किरण जीवन में नईपन का एहसास कराती है। तो आइए अपने जीवन की नई उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए उस ईश्वर की भक्ति करें जो हमारा पालनहार है।
1: क्या है ईश्वर, गुरु वशिष्ठ से पूछा था श्री राम ने। उत्तर मिला, बस मन का साक्षी। याद रखना है मुझे यही सोते जागते। कैसे कर सकता है कोई चोर चोरी व मन कोई कुविचार, कपट या अहंकार, जब पता हो उसे देख रहा है सिपाही ईश्वर स्वयं।

जहाँ भक्ति होती है वहाँ मन को शांति मिलती है, जीवन को नई ऊर्जा मिलती है और हृदय में आशा का दीप हमेशा प्रज्वलित होता है। तो आइए इसी दिव्य अनुभूति के साथ सुनते हैं आराधना कार्यक्रम का ये भक्ति वंदन।

ईश्वर का स्मरण मन को निर्मल बनाता है, प्रार्थना आत्मा को सुकून देती है और भजन जीवन में मधुरता भर देते हैं। तो आइए आपके और हमारे जीवन में भी मधुरता भरने के लिए सुनते हैं यह अगली प्रस्तुति आराधना कार्यक्रम की।

भक्ति के सुर जब हृदय से निकलते हैं तो वे सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचते हैं। जब सुरों में श्रद्धा मिल जाती है तब शब्दों में भाव जुड़ जाता है और भजन केवल संगीत नहीं रहता, एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। आइए इन मधुर स्वरों के माध्यम से प्रभु का गुणगान करें और अपने मन को भक्ति की रंग में रंग दें।

भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि हृदय की वो अनुभूति है जो प्रभु को हमसे जोड़ती है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो हर पल एक प्रार्थना बन जाता है।

इसी भक्ति वंदन के साथ संपन्न होती है श्रोताओं अब हमारी आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने आनंद लिया सुरेश वाडकर, अनूप जलोटा, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर के गाए भक्ति वंदनों का।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं आज की बात। इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को कविता का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिसने इस दिन को खास बनाया। 13 जून, जी हाँ दोस्तों, आज का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों की तरह एक सामान्य सा दिन है, लेकिन ये दिन दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में वर्ष 1997 में फिल्म बॉर्डर देखने पहुंचे कई आम लोगों के लिए जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ था। शो के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफार्मर कक्ष में आग लग गई जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैल गई थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 से

अधिक लोगों की मौत हो गई, साथ ही 100 से अधिक घायल हो गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मशहूर साहित्यकार विलियम बटलर येट्स का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1865 में डबलिन में हुआ था। विलियम बटलर येट्स का नाम उन चुनिंदा साहित्यकारों में शामिल है जिन्हें साहित्य के शानदार योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी कविताओं का श्रोताओं पहला संग्रह वर्ष 1887 में प्रकाशित हुआ था। इनके नाटक आमतौर पर आयरिश लोक कथाओं पर आधारित होते थे। द काउंट कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, कैथलीन निहाओ लिहान, द किंग्स थ्रेशहोल्ड और डिएड्री विलियम बटलर की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और 200 वर्ष 2012 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का निधन हो गया था। मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के लूणा गांव में 18 जुलाई 1927 को हुआ था। वे कलावंत घराने के 16वीं पीढ़ी के संगीतकार थे। उनके पिता उस्ताद अजीम खान और चाचा उस्ताद इस्माइल खान ध्रुपद गायक थे। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान मेहंदी हसन पाकिस्तान चले गए थे। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने एक मैकेनिक के तौर पर पाकिस्तान में काम किया। इसके बाद 1957 में मेहंदी हसन ने रेडियो पाकिस्तान में ठुमरी गाकर अपने संगीत के करियर की शुरुआत की। अपने पूरे जीवनकाल में मेहंदी हसन अपने गज़लों के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुल की तरह बने रहे। उनकी शानदार गज़ल गायकी की वजह से उन्हें शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। उनकी सबसे लोकप्रिय गज़लों में रंजिश ही शही, गुलों में रंग भरे और बात करनी मुझे मुश्किल शामिल है। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार प्रेम धवन, जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1923 को अम्बाला में हुआ था। चंदा मामा दूर के, छोड़ो कल की बातें जैसे दिल को छू लेने वाले गीतों से प्रेम धवन साहब विश्व प्रसिद्ध गीतकार बने। वो न केवल गीतकार थे बल्कि इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, नृत्य के निर्देशन भी किया और अभिनय भी। भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रोताओं, ये तो थी आज की बात और अब कविता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 6:45 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण हमारे देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लीजिए सुनिए राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की भारतीय सैन्य अकादमी यात्रा भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का आंखों देखा हाल। कमेंटेटर हैं संकल्प मिश्रा और कंचन नेगी। तो आइए आपको लिए चलते हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून।
1: सैन्य परंपराओं, कठिन अनुशासन और सर्वोत्तम बलिदान का प्रतीक भारतीय सैन्य अकादमी का चैटवुड ड्रिल स्क्वायर आज एक बार फिर सच चुका है और उस गौरवमयी पल का साक्षी बनने जा रहा है जिसका इंतजार हर जेंटलमैन कैडेट को, उनके माता पिता को और साथ ही पूरे देश को इंतजार रहता है। और आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस समारोह का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मैं यानी संकल्प मिश्रा और मेरी साथी कमेंटेटर कंचन नेगी।
2: जो तूफानों में भी दीप जलाए रखते हैं, जो सीने पर गोलियां खाकर भी तिरंगे को झुकने नहीं देते, जो अपने सपनों से पहले राष्ट्र का सम्मान चुनते हैं, असल में वही भारत माँ के सच्चे सपूत कहलाते हैं। नमस्कार भारत, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, हिमालय की गोद से, गंगा की पावन धारा के आशीर्वाद के साथ आप सुन रहे हैं भारतीय सैन्य परंपरा के सबसे गौरवशाली, सबसे अनुशासित और सबसे भावुक समारोह इंडियन मिलिट्री अकादमी पासिंग आउट परेड 2026 का विशेष सीधा प्रसारण। श्रोताओं, आज की ये सुबह केवल एक सुबह नहीं है, ये उन हजारों सपनों की सुबह है जो वर्षों पहले किसी छोटे से गांव, किसी सैनिक परिवार, किसी माँ की दुआ और किसी पिता के विश्वास के साथ जन्मे थे। आज वही सपने चैटवुड भवन के सामने सितारों में बदलने जा रहे हैं और आज परेड ग्राउंड पर वो क्षण आने वाला है जब वर्षों के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, समर्पण और त्याग के बाद ये युवा कैडेट्स भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस समय हम देख पा रहे हैं चैटवुड भवन के सामने स्थित उस ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर को जहां हर कदम इतिहास लिखता है। श्रोताओं, सुबह की हल्की सुनहरी किरणें मसूरी की पहाड़ियों से उतरकर आयम में परिसर को रोशन कर रही हैं और ठंडी हवा में सैन्य बैंड की धुनें घुल चुकी हैं। पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति, गर्व और अनुशासन से सराबोर दिखाई दे रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे माता पिता की आंखों में उत्साह है, किसी माँ के हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं, किसी पिता की आंखों में वर्षों की मेहनत का सपना चमक रहा है और ड्रिल स्क्वायर पर खड़े हर जेंटलमैन कैडेट की आंखों में केवल एक ही संकल्प दिखाई दे रहा है, देश पहले, फिर साथी और सबसे अंत में स्वयं। श्रोताओं, अगर कोई पहली बार आईएमए की पासिंग आउट परेड देखे ना, तो शायद वो जीवन भर इस दृश्य को भूल ना पाए। यहां केवल परेड नहीं होती, यहां अनुशासन चलता है, यहां साहस कदम ताल करता है और यहां राष्ट्रभक्ति सांस लेती है। श्रोताओं, सन 1932 में स्थापित इंडियन मिलिट्री अकादमी केवल एक सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि वो तपोभूमि है जहां साधारण युवा असाधारण सैनिक बनता है। बताना चाहूंगी आप सभी को श्रोताओं कि यहीं से निकलकर देश को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे महान सेनानायक मिले, यहीं से निकलकर अनगिनत वीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं ने भारत की सीमाओं की रक्षा की, यहाँ की मिट्टी में अनुशासन है, यहाँ की हवाओं में बलिदान की सुगंध है और यहाँ की हर सुबह एक सैनिक के निर्माण की कहानी कहती है।
1: जी हाँ कंचन, आपने जो हमारी परंपरा है भारतीय सैन्य अकादमी की, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत ही सुंदर चित्रण दिया है और अब हम देख पा रहे हैं जो चैटवुड ड्रिल स्क्वायर है वहाँ पर लाल रंग से सजी हुई चैटवुड जो भवन है उसके ऊपर इस समय सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, बहुत से सैन्यकर्मी मौजूद हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं वो। हालांकि अभी परेड का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि लाल और ग्रे रंग से सजे हुए जो झंडे हैं, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी का प्रतीक हैं, उनसे इस समय पूरे चैटवुड ड्रिल स्क्वायर को सजाया गया है। और अब हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे परेड का आगमन हो रहा है चैटवुड ड्रिल स्क्वायर पर। और इसी के साथ आपको बताते चलें श्रोताओं कि 34 मित्र राष्ट्रों के जो कैडेट्स हैं वो आज यहाँ से सेना के कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे। और उनका अनुभव कैसा रहा है यहाँ पर, भूटान से आने वाले फॉरेन ऑफिसर कैडेट खिंडराब तेंजिंग यूसिल, जो आज अंतिम पग रखेंगे और एक सैन्य अधिकारी बन जाएंगे, उनका जो अनुभव है, उनका सफ़र है भारतीय सैन्य अकादमी का, वो कैसा रहा है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे।
3: Sunday, XIMA, in his currently serving as Lieutenant Colonel in Royal Bhutan. Kuvangpo, my name is Foreign Officer

0: end up the engine yourself, and I'm from Bhutan. To tell about how I turned up to join the army, my father is also in army. He's an ex-NDA, ex-IMA, and is currently serving as Lieutenant Colonel in Royal Bhutan Army. Being a second generation army kid, the military wasn't just a lifestyle I chose. It was the very fabric of my childhood. Growing up in an army cantonment, you don't just watch the army lifestyle, you breathe it. My training here, 3 years in NDA and 1 year in IMA, has been rigorous, intense, and deeply rewarding journey, which tested every limit of my physical endurance and mental fortitude. But what made experience here truly unforgettable was the environment. Getting trained alongside Indian instructors and course mates meant immersing myself into a culture of immense discipline, warmth, and mutual respect. And navigating the sheer grit of the regime together turned what could have been a lonely 4 years into an empowering chapter of my life. And now, as I'm about to get commissioned, I'd like to thank all the Indian instructors and course mates for not just making me a better trained, but also filling me up with deeply enriched memories. Thank you.
1: यहाँ भूटान से आने वाले खिनराब तेंजिंग ने अपना अनुभव बताया कि वो भारतीय सैन्य अकादमी में जो ट्रेनिंग मिलती है, उनका जो सफ़र रहा है, उन्होंने जो दोस्त बनाए, वो सफ़र कैसा रहा है, और वो खुद अपनी पीढ़ी के दूसरे सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं। इसी के साथ श्रोताओं, आपको बताएं कि सैन्य परंपराओं और विरासत की बात करें तो उस दृष्टि से आज कैडेट प्रणय छाबड़ा भी पास आउट होंगे, सैन्य अधिकारी बनेंगे, अपने परिवार में चौथी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। आज हम देख पा रहे हैं इस समय चैटवुड ड्रिल स्क्वायर में जहां दर्शक दीर्घा है, वहां पर उनके पिता मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा भी मौजूद हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और उनकी सैन्य वर्दी में जो अनुशासन दिख रहा है, उसके पीछे जो उनके चेहरे पर मुस्कान है, वो उनके बेटे प्रणय के प्रति जो उनकी प्रेम की पराकाष्ठा है, उसको उसकी झलकी दे रही है। कंचन, हम बात करें चैटवुड भवन की, भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास की,
2: बिल्कुल
1: उसके बारे में श्रोताओं को हमें क्या बताना चाहिए?
2: संकल्प, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि देहरादून की सुरम में दून घाटी में स्थित जो भारतीय सैन्य अकादमी है, इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी, और उस समय भारत में सैन्य नेतृत्व को भारतीय हाथों में सौंपने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। संकल्प, अकादमी के प्रथम बैच में केवल 40 कैडेट्स थे, जिन्हें पायनियर्स कहा जाता है, और आईएमए के जो पहले कमांडेंट थे वो थे ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस। और स्थापना के बाद से आज तक ये अकादमी हजारों सैन्य अधिकारियों को तैयार कर चुकी है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीरता, साहस और बलिदान के द्वितीय मिसालें प्रस्तुत की हैं। चैटवुड भवन के इतिहास के बारे में चर्चा करें संकल्प, तो आज जिस भव्य भवन की छाया में ये परेड आयोजित हो रही है, उसी को कहते हैं हम चैटवुड भवन। और इस भवन का नाम भारतीय सैन्य अकादमी के संस्थापक कमांडेंट फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड के सम्मान में रखा गया है। चैटवुड भवन केवल एक इमारत ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के गौरव, अनुशासन और मूल्यों का प्रतीक है। यहीं से वो प्रसिद्ध चैटवुड मंत्र दिया गया था संकल्प, जो भारतीय सेना के प्रत्येक अधिकारी के जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है, और वो है देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सर्वप्रथम, सदैव और हर समय। उसके बाद उन जवानों का सम्मान, कल्याण और सुविधा जिनका आप नेतृत्व करते हैं, और अंत में आपका स्वयं का आराम, सुविधा और सुरक्षा।
1: जी हां कंचन, इस समय हम देख पा रहे हैं चैटवुड ड्रिल स्क्वायर पर जो सेना के अधिकारी हैं, अब जो सेना के अधिकारी आज बन जाएंगे, इस समय जूनियर अंडर ऑफिसर हम उन्हें बोलते हैं, वो 16 कंपनियों में विभाजित होते हैं और 4 बटालियन में बटे हुए होते हैं। वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। आइए ले चलते हैं आपको सीधे जो वहाँ का इस समय हाल है वो सुनवाते हैं।

देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। निशान को परेड पर ला रहे हैं निशान अधिकारी सीनियर अंडर ऑफिसर आयुष दुबे, उनके दाहिने रक्षक हैं कंपनी साजन मेजर निकुल सिंह एवं उनके बाएं रक्षक हैं कंपनी साजन मेजर अमन वर्मा।

0: झंडे के रूप में, आईएमए का जो झंडा है जिसे परेड का निशान बोलते हैं वो इस समय परेड ड्रिल स्क्वायर पर लाया जा रहा है और निशान अधिकारी उसे लेकर के आ रहे हैं। स्टील ग्रे कलर का जो झंडा है और उसमें जो रेड यानी लाल रंग है वो दिखाता है बलिदान का प्रतीक और धैर्य और साहस का प्रतीक। जो इस समय इस निशान अपनी जो नियत जगह है वहाँ पर लाया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं जो सिविलियन लोग हैं इस समय वो खड़े हैं और सैन्य अधिकारी सल्यूट कर रहे हैं और चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने इसको लेकर के जाया जा रहा है और यहाँ पर बैंड भी बजाया जा रहा है जो हर साल नियमित तौर पर परंपराओं के अनुरूप बजाया जाता है।
1: मिशन रक्षा।

0: श्रोताओं इस समय विशाल ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल की गूंज सुनाई दे रही है। सभी जेंटलमैन कैडेट्स अपने अपने टुकड़ियों में पूर्ण अनुशासन और अद्भुत समन्वय के साथ परेड मैदान में पहुंच चुके हैं। उनकी वर्दी की चमक, कदमों की दृढ़ता और आंखों में देश सेवा का संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
1: परेड पर आने वाले पहले
0: प्रत्येक कैडेट ने कठिन शारीरिक प्रशिक्षण, सामरिक शिक्षा, नेतृत्व कौशल और मानसिक दृढ़ता की कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है। श्रोताओं, ये युवा अधिकारी अब केवल अपने परिवारों के सदस्य नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। भारत की ऊंची हिमालयी चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक, घने जंगलों से लेकर सीमावर्ती चौकियों तक, जहां कहीं भी देश पुकारेगा, ये अधिकारी अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तत्पर रहेंगे। संकल्प भारतीय सैन्य अकादमी ने देश को अनेक महान सैन्य नेता दिए हैं। यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक अधिकारियों ने 1947, 1962, 1965, 1971 तथा कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया है। और असंख्य अधिकारियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमरता प्राप्त की, और उनकी गौरव गाथाएं आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। जिनके इरादों में हिमालय जैसी ऊंचाई होती है, वही भारत मां की असली तरुणाई होती है।
2: जी हां कंचन, इस समय हम देख पा रहे हैं जो परेड है वो निशान लेकर के अपनी नियत जगह पर आ चुकी है। परेड की सलामी की अब तैयारी होगी। इस समय आगमन होगा डेप्यूटी कमांडेंट का, और कमांडेंट

0: समय जो भारतीय सैन्य अकादमी के हैं उनका आगमन होगा। इसके बाद आज की जो मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो आज की परेड की रिव्यूइंग ऑफिसर हैं। और ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले की बात करें तो देश के चार राष्ट्रपति इस समय रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में इस समारोह को अनुग्रहित कर चुके हैं। चौथी हमारी इस समय देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। इससे पहले 2006 में APJ अब्दुल कलाम इस परेड को रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर अनुग्रहित कर चुके हैं। 2011 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2021 में श्री रामनाथ कोविंद जी इस समारोह को अनुग्रहित कर चुके हैं। और कंचन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर खुद रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर इस समारोह को अनुग्रहित करे तो जितने भी जेंटलमैन कैडेट हैं उनका जो जोश है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल संकल्प, और वास्तव में आज की पासिंग आउट परेड कई मायनों में विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस साल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार करेंगे संकल्प।
0: और इस समय आगमन हो चुका है विशिष्ट अतिथियों का। आइए ले चलते हैं आपको सीधे समारोह स्थल पर।
2: देवियों और सज्जनों, मेजर जनरल सचिन मलिक युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक भारतीय सैन्य अकादमी।

0: परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी।
1: भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट जनरल
2: कंचन, इस समय उप समादेशक का आगमन तो हो चुका है, लेकिन अब भारतीय सैन्य अकादमी के जो समादेशक हैं, कमांडेंट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह, वो समारोह स्थल पर आने जा रहे हैं। समारोह स्थल पर हमेशा ही वो नियमित तौर पर पारंपरिक रूप से पहुंचते हैं और उनके बाद जो मुख्य अतिथि हैं उनका आगमन होता है, लेकिन कमांडेंट की जो भूमिका होती है भारतीय सैन्य,
3: बिल्कुल संकल्प, वो बहुत अहम होती है संकल्प। और बताना चाहूंगी कि किसी भी सैन्य अकादमी प्रशिक्षण संस्थान या संगठन में कमांडेंट का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला होता है संकल्प। कमांडेंट संस्थान का प्रमुख होता है, जो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, अनुशासन, समग्र विकास की देखरेख करता है। उसकी भूमिका केवल एक प्रशासक की नहीं होती, बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और नेतृत्वकर्ता की भी होती है। और पासिंग आउट परेड जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर कमांडेंट की भूमिका और भी विशेष हो जाती है। वो सुनिश्चित करता है कि कैडेट्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त हो, उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित हो। कमांडेंट प्रशिक्षण के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखता है संकल्प, और ये सुनिश्चित भी करता है कि कैडेट्स शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। कमांडेंट कैडेट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है संकल्प, और अपने अनुभव, मार्गदर्शन और नेतृत्व के माध्यम से वे सभी कैडेट्स में आत्मविश्वास, साहस और कर्तव्य निष्ठा का विकास करता है संकल्प।

0: इस बार हम देख रहे हैं परंपराओं में थोड़ा सा बदलाव है। पिछली बार कमांडेंट आते थे एक बग्घी में,
1: जी
0: इस बार हम देख रहे हैं जो उप समादेशक हैं और हमारे भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक हैं वो एक काले रंग की कार में अभी समारोह स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं। और हम बात करें ट्रेनिंग की, तो बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग होती है
1: बिल्कुल
0: भारतीय सैन्य अकादमी में। विश्व की सबसे प्रसिद्ध अकादमियों में से एक है भारतीय सैन्य अकादमी। जो अनुशासन हम देख पा रहे हैं इस समय जो कैडेट्स हैं उनकी चाल में, उनके खड़े होने के तौर तरीकों में साफ दिखाई दे रहा है। इस समय अपनी अर्धांगिनी के साथ उप समादेशक और समादेशक लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह का आगमन हो चुका है समारोह स्थल पर।
2: देवियों और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी।

0: लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जो कि समादेशक हैं भारतीय सैन्य अकादमी के, उनको सलामी देने के बाद सावधान मुद्रा से अब विश्राम मुद्रा में आ चुकी है पूरी परेड और अब इंतजार होगा आज की जो मुख्य अतिथि हैं परेड की रिव्यूइंग ऑफिसर हैं भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। और ऐतिहासिक रूप से देखें कंचन तो आज का पल बहुत ही गौरवमयी इसलिए भी है और इतिहास में भी दर्ज होगा क्योंकि 9 महिला सैन्य अधिकारी मिलेंगी भारतीय सेना को जिनको परमानेंट कमीशन मिलेगा। और भारतीय सैन्य अकादमी की बात करें तो ये महिला अधिकारियों का पहला बैच होगा।
1: बिल्कुल संकल्प, और इस साल तो कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार करेंगे और उनमें पास आउट होने वाले जांबाजों में 481 भारतीय कैडेट्स और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स शामिल हैं और साथ में नेपाल भूटान श्रीलंका और अन्य मित्र देशों के कैडेट्स भी आज इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा है संकल्प। और अकादमी के 94 वर्षों के इतिहास में पहली बार, बिल्कुल सही कहा संकल्प, कि महिला कैडेट्स का बैच एनडीए से जो प्रशिक्षित है पुरुष कैडेटों के साथ पास आउट होकर भारतीय सेना में स्थायी कमीशन अधिकारी बनेगा। और बताना चाहूंगी कि आज के जो हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर हैं मुख्य अतिथि हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और संकल्प, उनका जीवन स्वयं संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल रहा है। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा की कहानी है। संकल्प, उन्होंने जीवन में अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। और शायद संकल्प यही कारण है कि आज जब वे इन युवा कैडेट्स को सलामी देंगे ना तो वे केवल औपचारिक सम्मान नहीं होगा बल्कि संघर्ष, सेवा और राष्ट्रभक्ति को नमन होगा।
0: जी हाँ कंचन, आपने संघर्ष की बात की तो संघर्ष दिखाई देता है इन कैडेट्स की ट्रेनिंग में भी। बहुत से इस समय सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से भारतीय सेना युवाओं में जागरूकता लाने के लिए अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत बताती रहती है। इस समय बात करें तो ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग्स हो रही हैं जो कि पिछले दशक से इस 2026 में एक नया बदलाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें वहाँ पर सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि

0: युद्ध में अब बहुत बदलाव देखा जा रहा है, तो जितने भी अधिकारी हैं उन्हें बदलते परिवेश में कैसे नेतृत्व किया जाए युद्ध का, और कैसे सर्वोच्च बलिदान की भावना तो रहती ही है लेकिन साथ में दक्षता, वो कैसे आए। उस दक्षता के लिए भारतीय सैन्य अकादमी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और हम देख पा रहे हैं कि इस समय एक और विशिष्ट अतिथि का आगमन हो रहा है समारोह स्थल की ओर, और परेड जो है
1: बिल्कुल संकल्प परेड रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनको देखते हुए। और मैं तो कहूंगी कि कुछ चंद पंक्तियां साझा करना चाहूंगी अपने श्रोताओं के साथ कि ये वर्दियां यूं ही नहीं कंधों पर सजती हैं, इनके पीछे अनगिनत रातों की तपस्या होती है। कोई घर छोड़ता है, कोई माँ की गोद, कोई अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों में मिला देता है, तभी कहीं जाकर सीमा पर खड़ा एक सैनिक जन्म लेता है, जो तूफानों से टकरा जाए, जो मौत को भी चुनौती दे जाए, जो तिरंगे की आन के लिए अपनी हर सांस कुर्बान कर जाए, वो भारत का सैनिक कहलाता है।
0: इस समय अतिथियों का आगमन हो रहा है समारोह स्थल पर, आइए ले चलते हैं आपको समारोह स्थल पर।

0: इस समय परेड विश्राम की मुद्रा में है और कंचन हम देख पा रहे हैं कि जो चैटवुड ड्रिल स्क्वायर है जो लगभग काले रंग का है उसमें जमीन पर नमी दिखाई दे रही है। अभी दो दिन पहले कमांडेंट्स परेड में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन इस बात की बड़ी चर्चा रही कि जो हमारे भावी सैन्य अधिकारी हैं वो उसी मुस्तैदी के साथ उस परेड को उन्होंने पूरा किया और उसी मुस्तैदी के साथ पूरी मूसलाधार बारिश में वैसे ही खड़े रहे जैसे कि आज ये परेड चल रही है। आज भी हम देख पा रहे हैं तो मौसम न बहुत ज़्यादा गर्म है और न बहुत ज़्यादा ठंडा है, मौसम में नमी है, और लेकिन जितने भी वहाँ पर अभिभावक हैं उनके अंदर बड़ा जोश है, उस वजह से मौसम में एक अलग प्रकार की गर्मी है, जोश है। और आपने बात की संघर्ष की, लोग अपना घर छोड़ करके आते हैं, खासकर अगर बात की जाए तो वो युवा जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आईएमए में आते हैं, बहुत ही कम उम्र में अपने घर को छोड़ते हैं, एक बड़े एग्ज़ाम को दे करके उसको क्वालिफाई करके वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं और फिर भारतीय सैन्य अकादमी में आते हैं। आज वैसे युवा भी पास आउट होंगे इस परेड में।
1: और संकल्प, कई तो ऐसे जाबाज हैं, कैडेट्स हैं, साझा करना चाहूंगी जो कि फोर जनरेशन लेगेसी को पिरोए हुए हैं। बात
0: कंचन, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, इस समय आगमन हो चुका है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो कि आज की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परेड को अनुग्रहित करेंगे रिव्यूइंग ऑफिसर की के रूप में, और इस समय आगमन हो रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर नाउ अवेटिंग द अराइवल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, गवर्नर स्टेट ऑफ उत्तराखंड।
0: मुख्यमंत्री के बाद आगमन होगा गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का, वो भी आज इस समारोह को अनुग्रहित करेंगे और उसी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं हमारे जेंटलमैन कैडेट्स भी।
3: एकेडमी देहरादून, commissioned into the Assam Regiment, he served the nation with distinction for nearly four decades. During his illustrious career, he held several key appointments, including Deputy Chief of Army Staff, Adjutant General at Army Headquarters, and Corps Commander of the 15th Corps in Jammu and Kashmir. His service includes operational tenures along the line of actual control with China, the line of control with Pakistan, and multiple postings in Jammu and Kashmir. He superannuated in 2016 as the Deputy Chief of Army Staff. A scholar as well as a soldier, he holds two MPhil degrees and has been a research fellow at the Institute of Chinese Studies, Jawaharlal Nehru University. For his exceptional service, he has been honored with four presidential awards, the Param Vishish Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, and Vishish Seva Medal.

You are requested to rise when the band plays the tune of national anthem. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रगान की धुन पर आप सभी से अनुरोध है कि आप सब खड़े हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, गवर्नर स्टेट ऑफ उत्तराखंड।

0: उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के आगमन के बाद राष्ट्रगान हुआ है और सभी सावधान मुद्रा में खड़े हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो चैटवुड बिल्डिंग है, चैटवुड भवन के ऊपर 5 सैन्यकर्मी सफेद वर्दी में झंडे के बिल्कुल पीछे खड़े हैं
1: और बिल्कुल संकल्प सावधान की मुद्रा में खड़े ये कैडेट्स के चेहरे पे गर्व, अनुशासन और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। संकल्प उनकी आंखों में मातृभूमि के प्रति सम्मान और राष्ट्र सेवा का दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है। राष्ट्रगान की प्रत्येक पंक्ति मानो देश के वीरों के बलिदान, संघर्ष और गौरवशाली इतिहास की याद दिला रही है। संकल्प
0: जी कंचन, और इस समय अब आगमन होना है मुख्य अतिथि का, आज की परेड की जो रिव्यूइंग ऑफिसर हैं हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, और उसी इंतज़ार में हैं आज के जेंटलमैन कैडेट्स, जिन्हें आज अंतिम पक के बाद उन्हें सेना में एक युवा अधिकारी का पद मिलेगा, कमीशन्ड ऑफिसर बन जाएंगे। और पिपिंग सेरेमनी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है आज इस समारोह का, जहां पर अभिभावक इंतज़ार करते हैं कि कब वो अपने पुत्र या पुत्रियों के जो कंधे के सितारे हैं उन्हें देख पाएंगे, उन्हें अधिकारी के रूप में देख पाएंगे।
1: बिल्कुल संकल्प, और IMA में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, द डे यू वेयर स्टार्स योर लाइफ चेंजेस फॉर एवर। जिस दिन पासिंग आउट परेड होती है

0: चार घोड़ों वाली पटियाला कोच, जिसे पटियाला राज्य की धरोहर एक रूप में तत्कालीन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सैन्य अकादमी को उपहार में दिया था, पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर्स और अकादमी में आने वाले अतिथियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पटियाला कोच अपने आप में एक कला का एक बेहतरीन नमूना है और अब आप निरीक्षण अधिकारी को शौर्य मार्ग से पटियाला कोच में अपने बाएं तरफ से आते हुए देख सकते हैं।
1: भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन इस समय पटियाला कोच पर हो रहा है और चार घोड़ों वाली ये बग्गी इस समय समारोह स्थल की ओर पहुंच रही है। चार काले घोड़े हैं और साथ में हैं प्रेसिडेंट गार्ड्स, जो अपने आप में कंचन एक अलग रेजिमेंट ही है, जिसका मुख्यालय भी देहरादून में है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन देहरादून में हुआ है, वो राष्ट्रपति भवन में भी गई हैं, जो कि देहरादून में राष्ट्रपति का एक आधिकारिक आवास है। और नीले रंग के दरवाजे हैं इस बग्गी में और साथ में सैन्य वर्दी के अलावा सफारी में लाल रंग की पगड़ी पहने पीछे अधिकारी खड़े हैं, जो कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति को। सबसे आगे हैं प्रेसिडेंट गार्ड्स, जो कि लाल रंग की वर्दी में हैं और भूरे रंग के घोड़ों पर सवार हैं। और बग्गी के ठीक पीछे चार सैन्य अधिकारी हैं प्रेसिडेंट गार्ड्स के, जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे एक सिक्योरिटी व्हीकल है, सफ़ेद रंग की गाड़ी है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रपति के साथ चलती है।
2: बिल्कुल संकल्प, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताएं तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारे देश की और भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, समावेशिता और महिला सशक्तिकरण की माननीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रेरणादायक मिसाल हैं।
1: जी, और समारोह स्थल पर इस समय आगमन हो चुका है रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर राष्ट्रपति जी का। और इस समय जो द्वार है, मुख्य द्वार, वहां से राष्ट्रपति जी का आगमन होगा और जितने भी अधिकारी वहां मौजूद हैं वो एकदम सावधान की मुद्रा में आ चुके हैं। इंतजार है कि मुख्य अतिथि आज के इस परेड को अनुग्रहित करें।
0: और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।

इस समय राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि की का आगमन हो चुका है और परेड के जो कमांडर हैं वो मुख्य अतिथि की ओर बढ़ रहे हैं उनसे अनुमति लेने कि परेड का जो निरीक्षण है वो आकर के मुख्य अतिथि करें। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ये अनुमति ली जाएगी। इस समय ठीक सामने हैं परेड कमांडर अनुमति लेने के लिए। राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमति दी गई है और अब राष्ट्रपति द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा।

0: इस समय परेड निरीक्षण के लिए एक जिप्सी पर राष्ट्रपति महोदया सवार हो चुकी हैं और उनके साथ समादेशक सवार हो चुके हैं जो परेड के निरीक्षण में उनके साथ रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह इस समय राष्ट्रपति जी के साथ हैं और एक सीनियर अंडर ऑफिसर भी उनके साथ हैं। परेड का निरीक्षण इस समय किया जा रहा है। और कंचन, एक ज़रूरी बात है, जो भारतीय सैन्य अकादमी का जो निशान है, जो झंडा है, जिसे हम प्रतीक मानते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा चैटवुड भवन है। लाल रंग का चैटवुड भवन और उसकी छत स्टील ग्रे रंग की ही दिखाई देती है और वही झलक आपको परेड का, जो आज के परेड का निशान है, उसमें भी दिखाई देता है। और उसमें जो प्रतीक है लाल रंग, वो बलिदान का प्रतीक है और शौर्य और वीरता का प्रतीक है स्टील ग्रे कलर।
1: And wisdom. The colors of Indian Military Academy are steel gray and black.

निरीक्षण के दौरान सभी टुकड़ियों के नेतृत्वकर्ता सलामी दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को, और हम देख पा रहे हैं कि चैटवुड बिल्डिंग के ठीक पीछे, परेड के ठीक पीछे और चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने एक अधिकारी घोड़े पर सवार हैं, जो कि माननीय राष्ट्रपति की गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं उनकी निरीक्षण में, और उनका जो चेहरा है वो एकदम सावधान मुद्रा में राष्ट्रपति जी की ओर है। और इस तरीके से परेड का निरीक्षण अब लगभग समाप्ति की ओर है, और अंतिम पग जो भवन का हिस्सा है जहां पर अंतिम पग लिखा है वहां पर परेड पहुंच चुकी है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का जब निरीक्षण हुआ है वहां पर एक बड़ी सी दीवार पर विजडम और वैलर लिखा हुआ है, जो कि उन सभी देशवासियों के साथ जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये एक प्रतीक है कि भविष्य में आपको सेना का नेतृत्व कैसे करना है।

0: Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The Academy adjutant, astride his charger, is a symbol of authority and discipline. Rashtriya Indian Military College, Dehradun, wa Rashtriya Raksha Akademi Khadakwasla ke cadet reh chuke, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta, June 2011 mein, Bharatiya Sainya Akademi se President Silver Medal ke saath Gadwal Rifles mein commission hue. Young Officers Course mein, Best Student wa Defence Services Staff College Wellington mein Scudder Medal se sammanit, ve Indian Military Training Team, IMTRAT, Bhutan mein प्रशिक्षक भी रह चुके हैं. इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट की अगुवाई व विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है. बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस ग्रेड 1 के रूप में भी कार्यरत रहे हैं. 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारत सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया.
1: संकल्प चैटफुट भवन के ठीक सामने फैला हुआ है ये ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर, जहां इस समय जेंटलमैन कैडेट्स बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हुए हैं. यहीं पर पासिंग आउट परेड आयोजित होती है. श्रोताओं, अगर हम दिशाओं की

0: की बात करें तो चेटफुट भवन के ठीक सामने यानी उत्तर दिशा की ओर विशाल ड्रिल स्क्वायर दिखाई देता है और यहीं पे कैडेट्स अपनी अंतिम परेड देते हैं। ड्रिल स्क्वायर के सामने दर्शक दीर्घाएं बनाई गई हैं, जहां देश भर से आए माता पिता, परिवारजन और अतिथि बैठे हुए हैं। पूर्व दिशा की ओर हरियाली और अकादमी के प्रशासनिक परिसर दिखाई देते हैं, जबकि पश्चिम दिशा में आईएमए का विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र फैला हुआ है। दक्षिण की ओर मसूरी की पहाड़ियां इस पूरे परिसर को एक अद्भुत प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। श्रोताओं, चेटफुट भवन के भीतर ही एक प्रसिद्ध चेटफुट मोटो भी अंकित है, जो हर कैडेट के जीवन का मूल मंत्र बन जाता है। देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले, फिर उन जवानों का सम्मान और सुख जिनका नेतृत्व आप करते हैं, और सबसे अंत में आपका स्वयं का आराम और सुरक्षा। और शायद यही कारण है संकल्प की आयाम में केवल सैनिक नहीं बनाता, बल्कि ऐसे नेता तैयार करता है जो अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से।
1: जी हाँ कंचन, इस समय राष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है अपने नियत स्थान पर। परेड का निरीक्षण अब समाप्त हो चुका है और परेड कमांडर अपनी नियत जगह पर पहुंच चुके हैं, और अब शुरुआत होनी है उस पल की जब गौरव के साथ, अनुशासन के साथ परेड राष्ट्रपति जी के सामने से गुजरेगी।

0: आधिकारिक रूप से इस समय परेड का मार्च शुरू हो चुका है।
1: और इस समय श्रोताओं, परेड मैदान में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कैडेट्स की टुकड़ियां अपनी अपनी पोजीशन जो लिए हुए थे वो आगे की ओर मार्च पास कर रही हैं। उनकी एक जैसी चाल, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा आत्मविश्वास, ये दृश्य अनुशासन की सबसे सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है।
2: मार्च कर रही है
1: श्रोताओं, सफेद नौजवानों का जमाते जूते सन्नाटे आगे बढ़ते कैडेट्स बैंड की गूंज, पूरा वातावरण मानो कह रहा है सुरक्षित
2: प्रमाणित करता है।
1: जयपुर भवन के सामने स्थित
2: सुरक्षित है।
1: जेंटलमैन हॉरिस की टुकड़ियां शानदार तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की
2: तिरंगे का सर पूरे देहरादून ऊंचा रहेगा।
1: राष्ट्रभक्ति का संदेश
2: देने की आवाज में बता रहे
1: लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्या अद्भुत अनुशासन है ना संकल्प। हर कदम जैसा, हर चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ, हर आंख में बस एक ही सपना, भारत माता की सेवा। और जेंटलमैन के रिच की सदी हुई कदमदार से गूंज उठा है। उनके जाल में जो आत्मविश्वास है ना संकल्प, ये वर्षों की कठोर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की पहचान है। सुबह चार बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या, कठिन शारीरिक अभ्यास, हर परिस्थिति बनाए रखा,
3: आर्गुमेंट विद द स्काई एंड सम इन द अनचार्टेड स्पेस
1: दे रहा है संकल्प।
0: जी हाँ कंचन, इस समय 16 कंपनियों में बटी हुई ये परेड राष्ट्रपति महोदया के ठीक सामने से गुजरने वाली है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय सैन्य अकादमी के निशान के अलावा एक लाल रंग का निशान है जो कि परेड का निशान है, वो इस समय सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे चलने वाली टुकड़ी के साथ चल रहा है और राष्ट्रपति महोदया के ठीक सामने आ चुका है। और परेड कमांडर इस समय सधी हुई चाल के साथ राष्ट्रपति महोदया के सामने से गुजर रहे हैं। परेड अपनी नियत जगह पर रहे इसके रेखांकन के लिए लाल रंग के छोटे छोटे झंडे ड्रिल स्क्वायर पर लगाए गए हैं, ये हम देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ये ड्रिल स्क्वायर

0: पर जब परेड के कदम की थाप पड़ती है तो करोड़ों दिल जो इस परेड को देख रहे हैं, उनके दिल, भारतीयों के दिल, पूरे विश्व में जो भी भारतीय सेना से प्यार करते हैं, गर्व से धड़कने लगते हैं।
1: बिल्कुल संकल्प। और अब कैडेट्स की टुकड़ियां राष्ट्रपति मंच के सामने से गुजर रही हैं और उनकी निगाहें सीधी और कदम सदे हुए हैं और सलामी का अंदाज अत्यंत प्रभावशाली भी रहेगा। और ये केवल मार्च नहीं बल्कि भारतीय सेना की गरिमा और परंपरा का प्रदर्शन है। संकल्प
2: बाय सीनियर अंडर ऑफिसर अनुराग चौहान। The second contingent is being led by Senior Under Officer Shivansh. The third contingent is being led by Senior Under Officer Sanjay Singh. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colors, is being led by Senior Under Officer Ayush Dubey. And the escorts are Company Sergeant Major Nikul Singh and Company Sergeant Major Aman Verma. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshay Thakur. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Akshit Katoch. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Amandeep Singh. Leading the last contingent is Senior Under Officer Tejas Bhatt. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta.

परेड राष्ट्रपति महोदय के सामने से गुजर चुकी है और लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जो कि आरआईएमसी से पढ़े हुए हैं और इस समय गढ़वाल राइफल्स में इस समय कार्यरत हैं और वो इस समय भारतीय सैन्य अकादमी में एडजुटेंट भी हैं और इस समय सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हैं जो कि अपनी नियत स्थान पर इस समय परेड पहुंच रही है और लाल रंग का जो निशान है वो भी परेड के साथ चलता हुआ जा रहा है और इसके बाद सभी को इंतज़ार है आज क्या संबोधन देंगी रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

देवियों और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति काल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना भी करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता।

0: के दौरान ये ही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास, और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक।
1: श्रोताओं, वास्तव में आज का ये दिन सचमुच गौरव और खुशी का दिन है, केवल ऑफिसर कैडेट्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और अकादमी के प्रशिक्षकों के लिए भी ये गर्व का दिवस है, क्योंकि इस अवसर पर पूरा होता है एक संकल्प और शुरू होता है अगला उतना ही महान संकल्प, उतना ही दुर्गम लक्ष्य। समय ने करवट ली है और स्थितियां भी बदली हैं, पर आज भी एक व्यक्ति का अपनी सेना पर विश्वास पहले की तरह ही अटूट है। वो जानता है कि राष्ट्र के प्रहरी उस पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय सैन्य अकादमी का परम उद्देश्य है दिलेर और वीर अफसर तैयार करना, जो दुश्मन की गोलियों के बीच अपने जवानों का नेतृत्व कर सके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर सके। संकल्पायम में वास्तव में एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों के युवक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला व आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट सैन्य प्रशिक्षण हेतु प्रवेश करते हैं, और देश की रक्षा उसका सम्मान इनके लिए सर्वोपरि होता है, और हर कदम पर एक नए आयाम को छूने का सपना एक राष्ट्र का सम्मान निर्भर करता है। इनके चेहरे पर झलकता तेज, आंखों में भरा आत्मविश्वास और सामने युद्ध कौशल की धार देने वाले अपनी मातृ संस्था के प्रशिक्षकों के गर्व से उठे ये सिर हर एक ऑफिसर कैडेट्स के मन में कर्तव्य निष्ठा का भाव उजागर करते हैं। संकल्प।
2: जी हाँ कंचन, आपने जिस भाव से भारतीय सैन्य अकादमी की परंपराओं को वर्णित किया है, निश्चित ही हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे होंगे कि भारतीय सैन्य अकादमी में होने का अवसर, वहाँ से पास आउट होने का अवसर, ये कितना गौरवान्वित करता है। और इस समय हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता, जो कि एडजुटेंट हैं भारतीय सैन्य अकादमी के, वो परेड के पीछे से अपनी नियत जगह पर जा चुके हैं और अब आगे के लिए आपको ले चलते हैं समारोह स्थल पर।

अब से कुछ ही देर में परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और समीक्षा अधिकारी के संबोधन के लिए परेड समीक्षा क्रम में फिर से तैयार होकर आगे बढ़ेगी।

मार्च के बाद परेड अपने नियत स्थान पर लग चुकी है और ये जो प्रक्रिया होती है कंचन बैंड की धुन पर होती है, जिससे अनुशासन के साथ परेड अपने नियत स्थान पर आ जाए। इस समारोह में जो अगला पड़ाव होता है वो है पुरस्कार वितरण का, और सबसे अहम, जिसकी सबसे चर्चा रहती है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसको मिलेगा, और इसके अलावा कई मेडल्स भी दिए जाते हैं। ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस रहता है इंडियन मिलिट्री अकादमी में, उसके लिए भी पुरस्कृत किया जाता है। रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर और आज की मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा ये पुरस्कार आज वितरित किए जाएंगे, और अपने नियत स्थान पर इस समय खड़ी हो चुकी हैं माननीय राष्ट्रपति। वो तैयार हैं पुरस्कार वितरण समारोह को आगे ले जाने के लिए। इसके बाद उनका संबोधन होगा और बैंड की धुन से पूरा वातावरण गूंज रहा है समारोह स्थल का।

देवियों और सज्जनों, अब पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रस्तुति समारोह आयोजित किया जाएगा। स्प्रिंग टर्म 2026 के पुरस्कार विजेता हैं सोर्ड ऑफ ऑनर पासिंग आउट कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है और गोल्ड मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इन दोनों के विजेता है अकेडमी कैडेट एडजुटेंट विशाल कुमार। सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता है अकेडमी अंडर ऑफिसर प्रिंस राज। ब्रॉन्ज मेडल पासिंग आउट कोर्स के ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं सीनियर अंडर ऑफिसर तेजस भट्ट। टेक्निकल एंट्री स्कीम सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स की टेक्निकल एंट्री में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं विंग कैडेट कैप्टन करम पांडे। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिल्वर मेडल पासिंग आउट कोर्स के टेक्निकल ग्रेजुएट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं ऑफिसर कैडेट ऋषभ मिश्रा। पासिंग आउट कोर्स के स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्पेशल कमीशन ऑफिसर सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं ऑफिसर कैडेट बोधराज थापा। मित्र देशों के अफसर कैडेटों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ अफसर कैडेट को मेडल प्रदान किया जाता है। इसके विजेता हैं जूनियर अंडर ऑफिसर जैफ सदीद अलवी बांग्लादेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर स्प्रिंग टर्म 2026 के चैंपियन कंपनी को प्रदान किया जाएगा। इस सत्र के चैंपियन कंपनी है इंफाल कंपनी।

तो इस बार का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर दिया जा रहा है मानिकशॉ बटालियन से इम्फाल कंपनी को।

0: कंचन, बड़े गर्व की बात होती है जब आप इस अकादमी से पास आउट तो हो ही रहे हैं, अंतिम पग के बाद आप सेना में अधिकारी बन जाते हैं, इसके साथ
1: यदि आप अपना ध्यान अपनी बाई ओर ले जाते हैं किसी भी तो आप देखेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर अब जूनियर अंडर ऑफिसर देव प्रताप सिंह द्वारा अकादमी को वापस किया जा रहा है। इसे स्प्रिंग टर्म 2000

0: 26 की चैंपियन कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा।
1: पोस्टिंग कहीं भी होती है तो आपकी उपलब्धियों में उन मेडल्स को गिनाया जाता है और सबसे शुरुआती क्षणों में इस मेडल की चर्चा होती है।
2: बिल्कुल संकल्प, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने का एहसास पासिंग आउट परेड के भव्य गौरवशाली अवसर पर बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में, क्योंकि किसी भी कैडेट के लिए जीवन के सबसे यादगार और गौरवपूर्ण क्षणों में से ये एक होता है, क्योंकि ये केवल एक पुरस्कार नहीं, संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व, अनुशासन, समर्पण, साहस और बेहद परिश्रम का ये एक सर्वोच्च सम्मान है। श्रोताओं, जब परेड मैदान में विजेता का नाम पुकारा जाता है ना और उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है, तो उस क्षण उसके वर्षों के कठिन प्रशिक्षण, त्याग, संघर्ष और अनगिनत प्रयासों की यादें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। हृदय गर्व से भर उठता है और मन में ये संतोष होता है संकल्प की कितनी मेहनत उस कैडेट ने की होगी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए।
1: जी हाँ कंचन, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर हैं वहाँ से इम्फाल कंपनी से एक युवा अधिकारी आए और उन्होंने उस बैनर को रिसीव किया है। साथ में हम देख पा रहे हैं फॉर्मेशन में आ चुके हैं वो अधिकारी जिन्हें अब पुरस्कृत किया जाएगा राष्ट्रपति महोदया द्वारा। अधिकारियों ने अपनी पोजिशन ले ली है और इस समय वो सलामी दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति को। सलामी देने का तरीका भी बड़ा अनोखा है भारतीय सैन्य अकादमी में, जो आपकी तलवार है उसे चूम करके आप सलामी देते हैं जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर हैं उनको।

0: हर युवा का सपना होता है कंचन कि वो भारतीय सैन्य अकादमी में आए और ऑलिव ग्रीन कलर की जो वर्दी होती है उसे पहने। अपने आप में एक ब्रांड है इस समय ऑलिव ग्रीन कलर की जो वर्दी है, और इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर को प्राप्त करने के लिए युवा अधिकारी को फॉर्मेशन में लाया जा रहा है। उस बैनर को थामने के लिए उनको एक विशेष प्रकार का सफ़ेद पट्टा लगाया जाता है। वो प्रक्रिया इस समय चल रही है और प्रक्रिया अब ये समाप्त हो चुकी है और अब तैयारियां हो रही हैं कि वो क्षण आए जब राष्ट्रपति महोदय खुद अपने हाथों से पुरस्कृत करें युवा अधिकारियों को।
1: बिल्कुल संकल्प, आपने भी बात करी ऑलिव ग्रीन वर्दी की, तो आजकल के युवाओं का भी मैं कहूं कि बहुत अधिक रुझान हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन गर्व की बात है कि सैन्य भूमि और वीरों की भूमि के नाम से भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश को जाना जाता है। और जब कोई सैनिक या अधिकारी ऑलिव ग्रीन की वर्दी धारण करता है तो पूरे राष्ट्र के सम्मान और विश्वास का वो प्रतिनिधित्व करता है। और इस वर्दी में ना संकल्प, देश के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देने का जो संकल्प है और सीमाओं की रक्षा का दायित्व है और करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा का जो भरोसा होता है वो इस ऑलिव ग्रीन वर्दी में निहित होता है। और मैं कहूंगी कि जितने अनगिनत वीर गाथाएं हैं, शौर्यपूर्ण अभियान और सैनिकों के जो अदम्य साहस का ये जो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म है ये साक्षी रहा है। और ये वर्दी हमें उन वीर जवानों की याद दिलाती है श्रोताओं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटते।
0: इस समय राष्ट्रपति महोदया मंच से उतरकर उन युवा अधिकारियों के पास जा रही हैं जिन्हें इस समय पुरस्कृत किया जाना है। साथ में है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जो कि कमांडेंट हैं भारतीय सैन्य अकादमी के।
2: Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar.

0: युवा अधिकारियों को पुरस्कृत करने के बाद राष्ट्रपति महोदया अपने मंच की ओर वापस लौटती हुई, और अब वो क्षण है जहां पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा संबोधित किया जाएगा युवा अधिकारियों को। उनके कमीशन्ड होने से पहले, और ये औपचारिक रूप से प्रक्रिया अंतिम पक के बाद होती है, लेकिन अब उन्हें भावी पीढ़ी के युवा अधिकारी बनने के लिए क्या क्या भूमिकाएं निभानी होंगी, वो जो इंस्पिरेशन है वो इस संबोधन से निकल करके आता है, और ये हमेशा उन अधिकारियों के साथ रहता है कि जिस दिन वो कमीशन्ड हुए थे उस दिन जो उनके रिव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा था।
1: न केवल अफसर कैडेट अपितु उनके प्रशिक्षक और भारतीय सैन्य अकादमी का स्टाफ भी गौरव का अनुभव कर सकते हैं। इस सत्र के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर के विजेता हैं इम्फॉल कंपनी। इस कंपनी के अफसर कैडेट्स के लिए भी यह गौरवान्वित होने का अवसर है। यह बैनर इस कंपनी के अफसर कैडेट्स को अगले सत्र तक लेनियार्ड दाहिने कंधे पर लगाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
2: Ladies and gentlemen, the primary aim of this institution is to present to the nation strong and daring military leaders. Undoubtedly, the institution can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves and their alma mater on the battlefield time and again. The number of gallantry awards won by our alumni is ample testimony to this fact. Ladies and gentlemen, the reviewing officer will now address the parade.

0: राष्ट्रपति महोदय का संबोधन अब शुरू होने जा रहा है।
1: चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आर्मी कमांडर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र सिंह जी, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह जी, सीनियर ऑफिसर्स, प्राउड पेरेंट्स एंड ऑफिसर कैडेट्स ऑफ द पासिंग आउट कोर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: माननीय राष्ट्रपति का संबोधन अभी जेंटलमैन कैडेट्स को दिया गया और कंचन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही राष्ट्रपति महोदया ने कि इस समय ये तो गौरवान्वित करने वाली बात है ही कि 9 महिला सैन्य अधिकारी परमानेंट कमीशन लेकर के भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हो रही हैं आज. उसके साथ ही जो बदलता हुआ परिवेश है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है अब जो युद्ध की परिस्थितियों का, वो बड़ा ही चैलेंजिंग है और उसके अनुसार ढलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है. और इसके बाद अब परेड बढ़ेगी अंतिम पग की ओर, जहां से ये अब मान लिया जाएगा कि भारत को आज लगभग 500 से अधिक नए सैन्य अधिकारी मिले हैं जो कि आगे जाकर के भारतीय सेना की बागडोर संभालेंगे. इनमें से बहुत से लोग हो सकता है भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी भी बने.
1: बिल्कुल संकल्प, अभी आपने बात की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रेरणादायी उद्बोधन की, तो वास्तव में उनके विचारों ने न ही केवल आज पासिंग आउट परेड में सम्मिलित कैडेट्स का उत्साह वर्धन किया है, बल्कि राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा, नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति उनके संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाया है. उनके शब्दों में अनुभव की गहराई साफ देखने को मिलती है और साथ में मातृत्व जो स्नेह है और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट विश्वास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है संकल्प. और वाकई में आज के इस गौरवशाली अवसर पर उपस्थित प्रत्येक कैडेट स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि उसे भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति के प्रेरक विचारों को प्रत्यक्ष रूप से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है. और निसंदेह संकल्प, उनके ये प्रेरणास्पद शब्द कैडेट्स के जीवन में सदैव मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करेंगे. संकल्प,
0: भारतीय सैन्य अकादमी का निशान इस समय राष्ट्रपति की ओर गया और उनसे अनुमति ली गई कि अब परेड राष्ट्रपति जी से अब विदाई ले. और इसी के साथ जो निशान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर जो है, वो भी भारतीय सैन्य अकादमी के निशान के साथ अब वापस अपने नियत स्थान पर जा रहा है. और अब इसके बाद शुरुआत होगी परेड की. अब मार्च किया जाएगा अंतिम पग की ओर और उसके बाद जो इसके बाद का जो समारोह है उसमें औपचारिकताओं के साथ बहुत ही अनौपचारिकताएं भी होती हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय सैन्य अकादमी की परंपराओं के अनुसार कई लोग पुशअप्स करते हैं, कई अधिकारी. ये खुशी का पल होता है जो जताया जाता है. बहुत से दोस्त बनते हैं इस सैन्य अकादमी में और बहुत सी यादें रह जाती हैं उस खुशी को जताने के लिए. और आज एक कमीशन्ड अधिकारी बनने की खुशी को जताने के लिए, पिछली बार जो भारतीय सेना के जनरल थे जनरल द्विवेदी, उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी के जो ऑफिसर्स थे जो कमीशन्ड हुए थे उनके साथ पुशअप किए थे. और इस बार इसके बाद खेत्रपाल हॉल में पिपिंग सेरेमनी होगी, जहां पर जितने भी अभिभावक हैं वो अपने अपने बच्चों के कंधों पर वो सितारे सजाएंगे जिन सितारों को लेकर के उन्हें

0: भारतीय सेना का सपना पूरा करना है और इस देश का भी सपना पूरा करना है।
1: बिल्कुल संकल्प, और इस समारोह में जो अधिकारी के कंधों पर जो रैंक के सितारे लगाए जाते हैं, ये सब धातु के ही प्रतीक नहीं होते, बल्कि इनमें वर्षों का जो इनका स्ट्रगल है, जो डिसिप्लिन है और जो समर्पण है, त्याग है, ये सब उसमें समाहित होता है। और कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्राउड मोमेंट वो होता होगा जब माता पिता, गुरुजन और वरिष्ठ अधिकारी अपने हाथों से ये सितारे लगाते हैं और वो क्षण वास्तव में खुशी और भावनाओं से भर उठता है। पिपिंग केवल श्रोताओं एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक युवा कैडेट के अधिकारी बनने की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक होता है। इसके साथ ही उसके कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा की नई जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। और उस समय जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके आंखों में गर्व के आंसू, प्रशिक्षकों के चेहरे पर संतोष और नवनियुक्त अधिकारी के हृदय में देश सेवा का दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। संकल्प,
0: सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हैं राष्ट्रपति के संबोधन के बाद।

राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन अब होता नजर आ रहा है और इसके बाद परेड अंतिम पक्की ओर जाएगी और वहां से बहुत सी पारंपरिक जो प्रक्रियाएं हैं जो भारतीय सैन्य अकादमी की परंपराओं में आ चुकी हैं वो उसकी शुरुआत होगी और अभिभावक अपने अपने जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं बच्चे हैं उनके साथ बहुत सी फोटोज आज के अखबारों में आएंगी कंचन। और अब मैं देख पा रहा हूं कि परेड फॉर्मेशन ले रही है बैंड की धुन पर और परेड अब अंतिम पक की ओर बढ़ेगी। कंचन बात करें तो अब कई राजकीय जितने भी समारोह हैं उनमें हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम

0: उसको भी औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है राष्ट्रगान के ठीक पहले। उसी परंपरा अनुसार आज कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई और कार्यक्रम का औपचारिक समापन भी हुआ है।
1: बिल्कुल संकल्प और माननीय राष्ट्रपति के प्रेरणादायी उद्बोधन, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन और गर्वित अभिभावकों की उपस्थिति ने आज के समारोह को और भी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना दिया। श्रोताओं, आज इन युवा अधिकारियों ने केवल एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया बल्कि राष्ट्र सेवा, नेतृत्व, साहस और कर्तव्य निष्ठा के एक नए अध्याय में प्रवेश किया है। जैसे ही सूर्य की स्वर्णिम किरणें परेड मैदान पर बिखर रही थी, वैसे ही इन नव नियुक्त अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की आभा भी चारों ओर फैल रही थी। उनके कंधों पर सजे सितारे केवल पद के प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्र के विश्वास, सम्मान और अपेक्षाओं के प्रतीक हैं। आज परेड मैदान से निकले ये कदम केवल आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि इन्होंने भारत के स्वर्णिम भविष्य की ओर एक नया इतिहास रचने का संकल्प लिया है। और कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तलवार हो या पदक, ये केवल उपहार नहीं होते, इनके पीछे संघर्ष, समर्पण और अनगिनत इम्तिहान होते हैं। तो चलिए श्रोताओं, आप सीधा समारोह स्थल से अब चलते हैं आकाशवाणी स्टूडियो में, और जहां पे हमारे साथ मैं और संकल्प बस इस समापन करने जा रहे हैं। और चलते चलते ये कहना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है, आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। संकल्प की ओर से और मेरी ओर से आप सभी मुस्कुराते रहें, खुश रहें और गर्वान्वित महसूस करते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रही थी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की भारतीय सैन्य अकादमी यात्रा एवं भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का आंखों देखा हाल। कमेंटेटर थे संकल्प मिश्रा और कंचन नेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित। आपके साथ तबला संगत की है आनंदो चटर्जी ने और बांसुरी पर आपका साथ दे रहे हैं रूपक कुलकर्णी।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से भी लिखे जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को निर्धारित नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन को किसी भी तरह से प्रभावित करने या बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को समृद्ध परमाणु ऊर्जा सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूली माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान पाठ से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का मधुर सुरों की इस खूबसूरत महफिल में, जहां भावनाओं की धारा संगीत के रूप में बहती है। प्रस्तुत है आपका अपना प्रिय कार्यक्रम, जी हाँ, गीत निर्झर। जैसे निर्झर की कलकल ध्वनि मन को शीतलता और आनंद देती है, वैसे ही गीतों की मधुर लहरियाँ हमारे मन को सुकून, उमंग और नई ऊर्जा से भर देती हैं। संगीत केवल स्वरों का मेल नहीं दोस्तों, बल्कि यह हमारे जीवन के हर रंग, हर एहसास और हर याद से जुड़ी एक अनमोल अनुभूति है। तो चलिए चलते हैं इस प्यारे से सफ़र में।

तो कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था आप सभी की पसंद पर वीर फिल्म से। गीत को आवाज़ दी थी रेखा भारद्वाज, तोशी और शारिब ने। गीत लिखा था गुलजार ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र आप सभी के थे रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। लच्छनपुर

0: उड़गर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य, दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, हासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं इनको।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दिस जून मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल।
7: प्रेजेंटिंग द बोल्ट बलेनो, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी।
6: इक्विप्ड विद फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले एंड सेफ्टी थ्रू 6 एयरबैग्स।
7: द बलेनो कैन नाउ बी योर्स एट एन EMI स्टार्टिंग एट जस्ट ₹3,999 पर मंथ।
6: ऑल्सो गेट अमेजिंग बेनिफिट्स अप टू ₹50,000, वैलिड टिल 30th जून।
7: हरी ऑफर स्टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट योर newest Nexa showroom today. TNC apply. Next.
0: इस अंतराल के बाद आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में बिल्लू फिल्म का गीत सोहम आकृति कक्कड़ और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। गीत गुलजार का है और इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। सुनना चाहा है आप सभी ने। नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन बेगम इसरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरजी नदीम, शमीम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम रानी शर्मा, बच्चू शेख, चीना शेख, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, हुमरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, अमोल मानकर, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, सुनीता साहनी और संदीप मकूल। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से गुलाम साबिर राही, महराज जहां, ताज मोहम्मद अंसारी, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जसवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर बिल्लू फिल्म का गीत।

बिल्लू फिल्म के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुरों की इस महफिल में आप सभी की पसंद का ये गीत शामिल करते हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, उमरखेड़ पंजाब से अभिजीत ग्वाणकर, राही श्रीमती सरिता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाणकर, प्रणिता, अर्जुन और टुक टुक, नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित ग्वाणकर और ध्वनि ग्वाणकर और इनके परिवार के सभी सदस्य, बोरखेड़ा पीपरामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मूणत, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है तुलसी कुमार और केके की आवाज़ में रेडी फिल्म का गीत। गीत नीलेश मिश्रा का है और संगीत प्रीतम का। तो आइए कार्यक्रम में आनंद लेते हैं इस गीत का।

दोस्तों, इस प्यारे से अंतराल के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत। के और जयेश गांधी की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है हिमेश रेशमिया ने, संगीत दिया है, क्षमा कीजिएगा, इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, और सुनना चाहा है आप सभी ने अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी ग्वाया और बेबी सुच्चा। इसी गीत के लिए फरमाइश आप सभी की पुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फट फटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए भावपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन ने भी फरमाइश भेजी है। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के इस गीत के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को सुनवाते हैं अशोका फिल्म का गीत। शान और सुनीता राव की आवाजों में गीत गुलजार का है। इस गीत को सुरों में बांधा है अनु मलिक ने। सुनना चाहा है आप सभी ने। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर रमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, मोटका माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किशान श्रोता, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, ललित पटेल, मनीषा पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल। इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की। यादव मोहल्ला मध्य प्रदेश सनावत से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर।

0: smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद आप सभी को सुनवाते हैं बागबान फिल्म का गीत अलका याग्निक और अमिताभ बच्चन, हेमा सरदेसाई, आदेश श्रीवास्तव की आवाजों में। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकर नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर, रहट गांव अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेतान, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेता। इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की भोलेनाथ कॉलोनी इंदर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग मालती, गणेश दादा, कार्तिक भाव मराठा, संजना मराठा, परी मराठा और ललिता नारायणी।

श्रोताओं, बागवान फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्झर, जी हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की सातवीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए।

0: भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है आप सभी के लिए गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंग।

0: अभी आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम के आरंभ में आशा भोंसले को।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो

0: मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: इस अंतराल के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं सबरंग कार्यक्रम में चंदन दास की गाई ये गजल।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
2: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: इस अंतराल के बाद स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर से गीत और गजलों के कार्यक्रम सबरंग में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अब जगजीत सिंह को।

जगजीत सिंह की गई इसी गजल के साथ अब आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप अमित सुंदरिया से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड स्थित भारतीय सेना अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। आईएमए स्थित ऐतिहासिक चैडवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्र से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही, क्योंकि पहली बार अकादमी से पुरुष कैडेट्स के साथ साथ 9 महिलाएं कैडेट्स भी पास आउट हुईं। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कैडेट्स से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का आह्वान किया।
1: डियर कैडेट्स, योर जर्नी एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी हैज बीन वन ऑफ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस एंड परसिवरेंस। यू हैव लर्नड दैट मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट कमांड बट ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर, कंपैशन एंड कमिटमेंट। यू आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर नेशंस सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यू कैरी द सेक्रेट ट्रस्ट ऑफ ओवर 140 करोर सिटीजंस। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट सर्विस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजियस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
0: मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भूस्खलन जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन चक्र, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और आपदा प्रबंधन में नई तकनीकों के उपयोग पर विशेष चर्चा हुई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, शहरी बाढ़ और अन्य मानसून जनित आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तकनीकों और समन्वय तंत्र की जानकारी मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आपदा प्रभावित लोगों के लिए मनोसामाजिक सहायता, राहत प्रबंधन और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न आपदा परिदृश्यों

पर आधारित टेबल टॉप अभ्यास भी आयोजित किए गए, जिनमें विभागीय समन्वय, संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। देहरादून में नाबार्ड की कार्यशाला और क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं के कौशल विकास और पलायन की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। बैठक का विषय ग्रामीण उत्तराखंड में स्थानीय आजीविका के लिए कौशल अंतराल को कम करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और पलायन रोकने के लिए जिला स्तर पर रणनीतियां तैयार करना था। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही इससे लाभार्थियों तक योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। नाबार्ड ने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सकता है। साथ ही इससे लाभार्थियों तक योजनाओं का बेहतर लाभ पहुंचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। नाबार्ड ने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व और सप्ताह अंत के दौरान हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने विशेष यातायात योजना लागू की है। पुलिस के अनुसार आज से 15 जून तक यातायात का दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को जिले की सीमाओं पर ही रोका जाएगा। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों से बैरागी कैंप और अन्य निर्धारित पार्किंग स्थलों तक भेजा जाएगा। वहीं चीला मार्ग का उपयोग केवल वाहनों की निकासी के लिए किया जाएगा। देहरादून, ऋषिकेश, नजीबाबाद और अन्य क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। भीड़ बढ़ने की स्थिति में ऑटो और विक्रम सेवाओं पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा कुछ मार्गों पर इसका संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। कल सुबह 6 बजे से लेकर 15 जून को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व समाप्त होने तक शहर क्षेत्र में सभी भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम आधारित है एक ही कलाकार पर और हमारे आज के कलाकार हैं हिंदी सिनेमा के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार शम्मी कपूर। सभी श्रोताओं को कविता का प्रेम भरा नमस्कार। श्रोताओं, शम्मी कपूर जो रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वी राज कपूर के दूसरे बेटे थे। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को बंबई में हुआ था। दोस्तों, शम्मी कपूर साहब अपनी बेशुमार ऊर्जा और अनूठी भाव भंगिमाओं नृत्य चालों से अपने वक्त में कई दर्शकों के दिलों के राजा कहलाए। उनका असली नाम शमशेर राज कपूर था। पर्दे पर मस्त मौला अंदाज में अपने जीवन को जीने वाले शम्मी साहब को अभिनय विरासत में मिला था। साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म जीवन ज्योति से बतौर अभिनेता कपूर साहब ने बॉलीवुड में कदम रखा। वर्ष 1957 में ही फिल्म तुमसा नहीं देखा में अभिनेत्री अमिता के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। तो आइए हम भी सुनते हैं उनकी इस फिल्म का प्यारा सा गीत और बातें इनके बारे में आपसे इस गीत के बाद।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

दोस्तों, शम्मी कपूर साहब सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर या डांसर ही नहीं थे, वो वक्त से बहुत आगे चलने वाले इंसान थे। जब भारत में इंटरनेट नया नया आया था, तब वो देश के उन शुरुआती लोगों में से एक थे जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया और वो इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि शम्मी कपूर साहब की जब फिल्में थिएटर पर लगती थी, हिंदी सिनेमा की को उन्होंने सलीके से बैठना नहीं सिखाया बल्कि मस्ती में झूमना दिखाया। जब वो स्क्रीन पर आते थे तो थिएटर की सीटें अपने आप हिलने लगती थी। उनके चेहरे की शरारत, वो नीली आँखें, वो लहराती जुल्फों और हवा में उछलकर डांस करने का अनोखा अंदाज, जी हाँ, यही थे शम्मी कपूर साहब। आइए अब सुनते हैं उनकी फिल्म दिल दे के देखो का ये गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे प्यारे से गीतों के साथ शम्मी कपूर साहब के बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, लेकिन इस प्यारे संतराल के बाद।
1: The all new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris, drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
3: Canada desh to, aap jante hi honge. कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोता, 1969 में आई फिल्म दिल दे के देखो के बाद शम्मी कपूर साहब की लाइफ की सबसे बड़ी हिट और याद रखने वाली फिल्म आई। गीत सभी को याद होगा, जी हाँ, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद ही वो सभी प्रकार की फिल्मों में एक नृत्य कलाकार की छवि बनाने में कामयाब रहे। फिल्म का गीत याहू, जी हाँ, सभी को पसंद आया। तो आइए हम भी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों, शम्मी कपूर साहब ने मुख्य अभिनेता के रूप में 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और सहायक भूमिकाओं में 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी के लिए अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1950 से 1970 के दशक की शुरुआत तक वो हिंदी फिल्मों के एकमात्र ऐसे डांसिंग हीरो थे जो अपने स्टेप्स, जी हाँ, डांसिंग स्टेप्स खुद ही बनाते थे। इसी वजह से उन्हें भारत का एल्विस प्रेस्ली नाम दिया गया। दोस्तों, अपनी मृत्यु 14 अगस्त वर्ष 2011 से कुछ समय पहले

उन्होंने इम्तियाज़ अली की फिल्म रॉकस्टार में अपने पोते रणबीर कपूर के साथ अभिनय किया और ये एक यादगार पल था। एक लोकप्रिय हर दिल अजीज अभिनेता का इससे अच्छा अंत क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी इस फिल्म को भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत।

सुर बहार कार्यक्रम में शम्मी कपूर साहब के सफर में, जी हाँ बस इतना ही। कल ऐसे कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुनगुनाते रहिए और अपनी जिंदगी को शम्मी जी के अंदाज में जीते रहिए। लेकिन अपना रेडियो सेट छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि गीत संगीत का सफर यूं ही चलता रहेगा आकाशवाणी अल्मोड़ा से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आरंभ में अभी आप सुन रहे थे राजपूत फिल्म का गीत। महेंद्र कपूर, मनहर उदास, हेमलता और साथियों की आवाज़ों में। आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, आप सभी को सुनवाते हैं दिल जली फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत अनु मलिक का।
1: वो तो
2: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
2: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
3: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

चलते चलते फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ढाई अक्षर प्रेम की फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बलदेव राज वर्मा का मियाँ की तोड़ी में गाया ख्याल। बोल हैं बन के पंछी भाई बवराए। तबला संगत की है विजय कृष्णा ने।

0: पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल अभी आप सुन रहे थे। तबला संगतकर्ता थे विजय कृष्ण।
1: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
4: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNCR.
5: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
6: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
5: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
6: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
5: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
6: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
7: Nexa.
3: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
4: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
8: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
9: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और अब शास्त्रीय संगीत का समापन कर रहे हैं। पंडित निखिल बनर्जी की सितार पर बजाई एक रचना के साथ जो है ठुमरी खमाज। तबला संगत करता है प्रेम बल्लभ।

पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर अभी आपने उनसे एक रचना सुनी जो कि ठुमरी खमाज में निबद्ध थी। तबले पर आपका साथ दिया था प्रेम बल्लभ ने। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजु पांगती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में शोहरत पाना यूं तो आसान नहीं, लेकिन जो पूरी शिद्दत, मेहनत और पूरे जज्बे के साथ काम के प्रति समर्पित भाव से अपना काम बखूबी करते हैं, वो एक ना एक दिन शोहरत की बुलंदियों को छू ही लेते हैं। और ऐसी ही एक जानी मानी आज के यानी नए दौर की अभिनेत्री का नाम है दिशा पाटनी, जो कि बेहद मशहूर हैं, चर्चित हैं और अपनी स्टाइल, फिटनेस और फैशन के जरिए युवाओं के बीच बेहद मशहूर हैं। और आज हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से चंद नगमे आपके लिए पेश कर रहे हैं मेरी पसंद में, क्योंकि आज दिशा पाटनी का जन्मदिन है। तो उन्हें 13 जून उनके जन्मदिन की सबसे पहले हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज का सफ़र उन्हीं के नाम है, फिल्मी नगमों के साथ और कुछ उनके बारे में बातचीत के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं।

तो श्रोताओं, दिशा पाटनी का जन्म 13 जून साल 1992 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के टनकपुर से जुड़ा हुआ है। उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी पुलिस विभाग में अधिकारी रहे हैं, जबकि उनकी माँ स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहीं। बचपन से ही दिशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। उन्होंने कभी भी अभिनेत्री बनने का सपना तो देखा ही नहीं था। वो तो एयरफोर्स पायलट या फिर साइंटिस्ट बनना चाहती थीं। उन्होंने इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी की और कॉलेज के दिनों में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और उनकी एक सखी ने उन्हें मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की सलाह दी। साल 2013 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में वो उप विजेता भी रहीं और धीरे धीरे उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उन्हें कई ख़ास मौके भी मिले और विज्ञापन जगत में उनकी एक पहचान बन गई। उन्होंने कई जाने माने बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम किया और कैमरे के सामने एक्टिंग करने के इस अनुभव ने ही उन्हें फिल्मी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया।

श्रोताओं, दिशा पाटनी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मुंबई आई थी तो कम पैसों के साथ ही वो मुंबई में आई और उस समय उनके पास कोई ऐसा बड़ा सहारा भी नहीं था जो उन्हें आगे बढ़ाए, और उनका परिवार जो है फिल्मी दुनिया से तो बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखता था, और उन्होंने खुद अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना, काम मिलना कोई आसान बात नहीं, लेकिन दिशा ने हार नहीं मानी, खूब मेहनत की, मशक्क़त की, और फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑडिशन दिए, मॉडलिंग की और अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात वो जुटी रहीं, खूब मेहनत की, और यही संघर्ष, यही उनकी मेहनत उन्हें सफलता की ओर बढ़ाकर आगे ले गई, और यही मेहनत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, शक्ति बनी। और साल 2015 में दिशा को पहली बड़ी सफलता तेलुगु फिल्म लोफर से मिली। इस फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया, और इसके बाद साल 2016 आया जब उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिली MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के साथ, और इस फिल्म में उन्होंने जाने माने मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पहली प्रेमिका प्रियंका झा का किरदार निभाया था। भले ही इस फिल्म में उनका रोल छोटा सा था, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता, और इसके बाद दिशा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

तो इस फिल्म के बाद फिर आई साल 2018 में फिल्म बागी 2। भूमिका इसमें उनकी रही नेहा सालगांवकर किरदार के साथ। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में हीरो थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की और इस फिल्म के गाने भी बेहद मशहूर रहे, जैसा कि ये गाना।

साल 2019 में भारत फिल्म आई जिसमें सलमान खान उनके हीरो थे, राधा का किरदार उन्होंने निभाया। 2020 में मलंग में सारा के किरदार में वो नज़र आई। आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म में थे, ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। और इसके बाद दिया के किरदार के साथ राधे फिल्म में नज़र आईं। दिशा पाटनी सलमान खान के साथ ये उनकी दूसरी फिल्म थी। OTT और सिनेमाघरों में एक साथ ये फिल्म रिलीज़ हुई। एक विलन रिटर्न्स में रसिका की भूमिका में वो नज़र आई। ये भी एक अच्छी फिल्म थी जिसमें जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर थे। योद्धा फिल्म में लैला के किरदार में वो नज़र आई। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे। ये भी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस तरह एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया दिशा पाटनी ने और अभी कर भी रही हैं।

कल्की 2898 इस फिल्म में रॉक्सी की भूमिका में नजर आई थी दिशा पाटनी, प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन अभिनीत। ये फिल्म उनकी ज़िंदगी की एक ख़ास फिल्मों में शरीक है और साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में भी शामिल रही ये फिल्म। और उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ वो नज़र आएंगी। साल 2026 इसी साल अगस्त में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और इसके अलावा मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल में भी नज़र आएंगी दिशा पाटनी।

पुरस्कार और नामांकन की बात करें तो एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए दिशा को कई बेस्ट डेब्यू श्रेणी के नामांकन मिले। बागी 2 फिल्म के बाद वे बॉलीवुड की लोकप्रिय युवा अभिनेत्रियों में शरीक हुईं। फिटनेस, फैशन और सोशल मीडिया लोकप्रियता के लिए भी उन्हें कई सम्मान मिले हैं और एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बॉलीवुड में पहचान दिलाने वाली उनकी फिल्म रही। बागी 2 पहली बड़ी व्यावसायिक फिल्म बनी जिसको व्यावसायिक तौर पर सफलता मिली और भारत बड़े सितारों के साथ ये सफल फिल्म रही। मलंग अभिनय और ग्लैमर दोनों के लिए बेहद सराही गई और कल की 2898 AD उनके करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल फिल्म रही।

तो श्रोताओं, स्कूल डेज की बात करें तो दिशा का व्यक्तित्व बताती हैं कि आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। वो स्कूल के दिनों में बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और अक्सर क्लास की आखिरी बेंच पर बैठना पसंद करती थी। बहुत कम बोलती थी और अपनी ही दुनिया में वो खोई रहती थी। दिशा कहती हैं कि स्कूल में वो इतनी आकर्षक भी नहीं लगती थी जैसे कि वो आज है, और अपने फिटनेस को लेकर वो बहुत सीरियस रहती हैं। घंटों जिम में पसीना बहाने के अलावा जिमनास्ट के तौर पर भी हाथ आजमाती हैं, और उन्होंने अपने प्रैक्टिस के दौरान अपने एक साक्षात्कार में बताया, जब मैं किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही होती हूँ तो मैं ज़रूर जिमनास्ट में हाथ आजमाती हूँ। जिमनास्ट के लिए आपको नियमित रूप से खूब मेहनत की ज़रूरत होती है, और मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने में मुझे थोड़ा समय लगा है। आपको इसे हर दिन करना है। जब आप अपनी हड्डियों और घुटनों को तोड़ते हैं तब जाकर आप कहीं पहुँच पाते हैं। यानी उनका मतलब है कि मेहनत, संघर्षों का सामना करना, बाधाओं की परवाह किए बिना ही जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तभी सफलता भी हमारे कदम चूमती है। सच, मेहनत और संघर्षों के बाद जो कामयाबी ज़िंदगी में मिलती है उसकी बात ही निराली होती है। तो दिशा पाटनी को एक बार फिर हम आज उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने फिल्मी करियर में, फिटनेस में या फिर मॉडलिंग की दुनिया में हर क्षेत्र में आप आगे ही बढ़ती रहें और आपका सफल भविष्य हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आज मेरी पसंद का सफ़र अंजू पांगती के साथ भी यहीं तक। तो श्रोताओं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इश्क का

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

कार्यक्रम सुन्ने सबै सबैलाई प्रभा पाण्डे एक नमस्कार। तिजवाडियो खत्म भए आप और हम इंतजारी और हम पुज्या आज के कार्यक्रम एपन्डे थी। तो आपू सब स्वस्थ होनाला कुशल मंगल होनाला ने बस। तो हमें यही चाहन कि आपू सब स्वस्थ रहो कुशल मंगल रहो और इसी के आप सब नौ प्यार हमारे कार्यक्रम के मिलते रहो। किला की दिव्याणियों स्वास्थ्य इच्छु जो सबन है ठूल धन जो आज वक्त मिले यह विचार आज वक्त में सर्वोपरि हमन का धारण छे। पहल प्राथमिकता ही हमन का वो स्वास्थ्य दियन छे। यह विचार के अपन रोजाना जीवन शैली में शामिल करण बहुत जरूरी छे। दगड़ियों आधुनिक युग तकनीकी विकासक युग छे। भागदौड़ भरी यह जीवन में मनखक जीवन शैली में बहुत बदलाव आ रहे हैं। यह अस्वस्थ जीवन शैली कारण आज कतक प्रकार बीमारी ले पैदा होने लग रही। अस्वस्थ जीवन शैली मतलब यही कि हमार खान पीन सही भल आदत नहातन, हम उनर पालन नहीं करें, खान पीन हम बखत पर नहीं खान, न बखत पर उठन और न बखत पर सीटन। तो दिव्यणियों जैक सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ू और दगड़ में शारीरिक गतिविधि न करण, योग व्यायाम नहीं करण, जैक कारण कतक प्रकार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह जानी। आज की पीढ़ी कंप्यूटर मोबाइल फास्ट फूड देर रात तक जागण पर यू सब पर निर्भर रह गो और दगड़ियों यह सब गुण लाग रहो हमारी आधुनिकता बीच में और उमे हम सब ने ठूल जो बात अनदेखी करण लाग रही वो छू अपन स्वास्थ्य के। हम स्वास्थ्य के अनदेखी करण लाग रही और वो यह सब भूलते जाने कि स्वस्थ जीवन जीना के फैद हमन कह सकनी। क्योंकि आज जो अस्वस्थ जीवन शैली है उसमें कतक प्रकार कारक शामिल है सकते, जैसे कि हम बखत पर नहीं उठन और दिन भर आज बखत में जो हम काम करनो हम दिन भर बैठे बैठे करनो और उम्र के हों कि हम शारीरिक गतिविधि नहीं करें, जे एक सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ो और स्वास्थ्य पर पड़ना कारण भल स्वास्थ्य नियम नहीं होना कारण हम अस्वस्थ रहनो और बीमारियों का घर आपो शरीर का बढ़ा लेनो। देखो आपो सबनल शायद ध्यान दे होना कि हमारे घरों में जो लोग बुजुर्ग लोग होने ने वो यह जीवनक यह बात के हमेशा बतौनी और वो खान पीना बखत उनर उठन बैठन सेतन उनर जो शारीरिक गतिविधि होनी वो सब बातों को बहुत ध्यान देनी और जीवनक एक लंब बखत गुजार बटी आज ले स्वस्थ छ और निरोगी छ। तो यह एक पछिला दगड़ियो यही कारण छ क्यों अपन स्वास्थ्य के सबन है पहली धरनी और सबन है ठूल धन स्वास्थ्य के माननी और तब वो बीमारी है कष्टों है अपो शरीर के बचे व धरनी। तो दगड़ियो यह पछिला कारण हमन गले जान पड़ो और वो सब काम करन पड़ा जो हमार घरों में हमार बुजुर्ग लोग कर छी। दगड़ियो हालांकि कोयला अपन जीवन शैली जो हमार रोजाना आदत छे वो छोड़ तो मन मुश्किल होने छे। शुरुआत में हमन के दिक्कत लें लेकिन अगर हम मन में ठान लूँ या निर्णय ले लूँ कि हम अपन जीवन शैली में सुधारूँ तो जरूर यह फायदा हमन का मिले। हम देख लूँ हमारे घरों में नन्ना नानतीन ला फोन चलूँगी और हम दगड़ में ऐसा कर लूँ लेकिन अगर हम फिक्स अपन के तय कर दूँ जैसे हम आधे घंटे एक घंटे बाद खुद ही अपन मोबाइल ऑफ कर दूँ तो हमारे नानतीन ला सकर और माठू माठू के पाँच मिनट दस मिनट के हम अपन रोजाना आदत के कम कर तो हमारी

0: कंप्यूटर मोबाइल एक लत ले छूट जाले, और अगर हम बखत पर खुला तो बखत पर हम सेतुल ले और बखत पर उठुल ले। तो यह एक लगी रगड़ी छोट छोट बात छे, यू सब ना ध्यान हमन के धरण चैन और एक स्वस्थ जीवन शैली अपने बिल या बीमारी बढ़ोनी जो हमारे जीवन शैली छू इसे जरूर बदौन चैन। बातचीत आपको देखा है कार्यक्रम में और लवाल, लेकिन पहली हम आपको मनोरंजन करूँ, यह है पहली सुनू इन्हें बात।
1: Inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे

0: Amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: स्वागत है एक बार फिर आपको सबनक यह कार्यक्रम एफएम में। लेकिन आप कार्यक्रम में अखिल के वर्णों और स्वर्ण स्वास्थ्य का खजाना मौसमी पहाड़ी फल विषय पर श्रोताओं नगर करी गई यह हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत।
8: उत्तराखंड अपन प्राकृतिक सुंदरता ले जी दूर दूर देश विदेशों तक जानी जा। हमारे यहाँ हरियाली सब नगे आपको तरफ खींच ले। तेकार में यहाँ हिमालय दर्शन एक स्वाभाविक रूपल अपो तरफ खींच ले। पहाड़ राज्य होना दगाड़ दगाड़े उत्तराखंड हमारे यहाँ कृषि संपन्न धनी राज्य छे। खेत पाद फल फूल यह सब ने संपन्न हमारे उत्तराखंड छे। देश में विभिन्न जगह पर फल होने दगड़े, लेकिन हमारे पहाड़ों पर होने वाले फल स्वादिष्ट होना दगाड़ दगाड़े स्वास्थ्य के लिए जिले बहुत फायदेमंद होने। ये मौसमी फलन के दिन बनियो हमन के जरूर अपना खान में शामिल करन चाहिए। हमारे यहाँ बगीचों में होने वाली फल, जंगलों में होने वाले फल सब ने एक अलग स्वाद और स्वास्थ्य के लिए भी फैद चन। उसी के लिए हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र होना वजल हर एक वनस्पति, हर एक चीज, फिर चाहे घास फूस के लिए नहीं हो, जड़ बूटी कोई ना कोई रूप में जरूर उपयोगी छे। हमारे राज्य अपन सुंदरता दगाड़ में यहाँ रसील पहाड़ फल बहुत प्रसिद्ध छे। यू ताजगी भरी खट्ट मिठ यू फल स्वास्थ्यवर्धक तो छे। दगाड़ में यू आज आजीविका साधन लगन लाग रही। तो दीद बहनियों आज हम ले अपन कार्यक्रम में बातचीत करनू जैसे यू स्वाद है भरी यू पहाड़ फलों के बारे में। और कार्यक्रम में तो हम लोग जानू कि के हमारे पहाड़ी फल फूल छे और के इन्हर स्वास्थ्य लिए लाभ छे और किले हमन के इन्हन के अपन खाए पीण में शामिल करना चाहिए। जानकारी के दिनागर जी, आज हमन दगाड़ एक बहुत सयान महिला जोड़ रही जने नाम छो श्रीमती कमला पांडे, जो कि हमार यहाँ शहर बक्सर में रहनी। तो सबन है पहली तो कमला दी आपको बहुत बहुत स्वागत छे दीदी हमारे यह कार्यक्रम एपण में।
9: धन्यवाद
8: कमला दी। हम आपू थे यह पहाड़ फल फूलू है संबंधित बातचीत कर ले, लेकिन वह पहली थोड़ा यह कार्यक्रम माध्यम हम अपन बार में जान चाहे।
9: नमस्कार श्रोताओ, मेरा नाम श्रीमती कमला पांडे, बाकी सर मैं गैस सर्विस इंडियन ऑयल में कार्यरत छी।
8: आपूला देखने लग रहा है आजकल हमारे बाजारों पर खूब पहाड़ी फल दिखने लग रही
9: है,
8: तो आपको क्या कौन चला आप यह पहाड़ फलों बारे में?
9: हमारे पहाड़ी फल हमारे स्वास्थ्य लीजिए, अपना आय बढ़ोने लीजिए उपयोगी छो। हमारे यहाँ आड़ू, खुमानी, अलबखरा और काफल मौसमी फल हैं।
8: कमला दी आपको बात करने लग रहा था काफल है, तो सबन है पहली मैं आपको यही जान चाहूँ कि यह काफल यह फल को मौसम में हूँ के हूँ यह बार में थोड़ा आपको हमन के और हमारे सुनने वाले श्रोता।
9: काफल हमार अप्रैल बटे को लेवे जून जुलाई तक काफल है।

0: काफल हमें जंगल में ले मिला। एक काफल के पेड़ हम घर में ले लगे। काफल हमें जंगली तौर पर पाई जहाँ काफल विटामिन आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जहाँ ये काफल पेड़ छाल फल तथा पत्तियाँ हमारे दवाई रूप में काम करें। काफल हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ों अप्रैल बटे जून तक पाकें। जहाँ ज्यादा गर्मी है तब वहाँ अप्रैल में शुरू है जहाँ पाकें और जहाँ ठंड हो तरह देर में पाकें।
1: पहले वक़्त और आज वक़्त में के बदलाव आपको देखने लगा था? जब कुछ समय पहले हम बात को तो वो वक़्त लग आपको बाजारों में इतको बेची छो या आज वक़्त की महंगाई बढ़
0: लेकिन वो टाइम पर काफल भरपूर मात्रा पर मिल ची। लेकिन ये समय में आप वही आय साधन बढ़ गो ले लीजिए काफल जरा महंगे बीज को। पहले टाइम पर ऐसे थी कि हर कोई लोग अपन खाने लीजिए काफल उनका तोड़ भी लियो ची। आज टाइम पर ये सको कि हर कोई गांव बटे पलायन कर भी नहीं गो। ये नहीं कर सकन कि वो जंगल जाबे काफल तोड़ ले भी सकनी। तो कुछ कुछ लोग जब जंगल जाबे मेहनत कर भी काफल तोड़नी तो वो अपन आय साधन ले बढ़ोनी। ये लीजिए महंगे होना कारण है। काफल तोड़ने वाले दिन भर जंगलों में कांटन में जहाँ बाजार में लो भी बाजार में घाम में बैठ।
1: अब आजकल हम ये लोग देख रहे हमारे बाजारों पर खूब सारा फल हमारे बगीचों में बटी लग रहा आड़खुमानी का हम जो बात करने लग रहा तो के कौन चला आपो आड़ू खुमानी बारे में पहली लहुची दीदी आज आपो कोई तो फले देखे लग
0: आड़ू खुमानी पहली लहुची। लेकिन गांव घर में अपना अपना खांची। लेकिन एक तो उ टाइम पर की तू को बाजार नहीं ची कि बाजार जब बेच लेनो अपना आय साधन कर लेनो। वो टाइम पर ही तो जनता नहीं ची कि कोई खरीद सको और खरीद भी खाओ क्योंकि अपना अपना खाने लीजिए सपना हुई ची। आज इस समय में ये हो कि मतलब थोड़ा बहुत ले सा जनता ज्यादा है गए और ये लीजिए कि उन्हें बिक ले जाओ और आय साधन ले जाओ।
1: बिल्कुल तो आड़ू बात दी आपको करण ला रो तो आड़ू के फायदा मन के है सकनी खाने।
0: आड़ू एक ऐसा फल छो जो खाने में स्वाद तो छो लेकिन पेट लीजिए ले सही छो और भी रस लीजिए क्रीम बन जाने और साबुन बन जाना और ये कोई औषधि बढ़ने ही बहुत कुछ फायदा होनी है।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात दिया फूल का है।
0: खुमानी अगर हम बात कर लो जब तो खुमानी ठंडे इलाके में ज्यादा है। अलमाड़ में नैनीताल में मुक्तेश्वर में ये जागो में बहुत खुमानी है। लेकिन खुमानी स्वाद ले वो अलग अलग जागो अलग अलग है।
1: बिल्कुल
0: जहाँ पे जरा गर्मी जो है धूप जो है वहाँ थोड़ा सही है थोड़ा खट्टे मीठे जो स्वाद हुई। लेकिन कहीं पे खट्टले है। खुमानी दो प्रकार है होनी। एक तो बादामी खुमानी है वो लीजिए हम घुटालन का जो होनी हुई भितेरा का घुटालन का फोड़ भी बादाम जाग में खानो। एक घुटल अगर फोड़ भी खाओ जब तो कड़वा पनो। लेकिन हम जो नो अधिकतर बादामी खुमानी का पसंद ज्यादा करनी लेकिन कड़वा वाले सही है।
1: यो पहाड़ फलों तगड़ियो आज हम कार्यक्रम में बातचीत करने लग रहे हैं की सेहत खजान स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद छे हमारे पहाड़ी फल। तो ये मौसमी फल उसी तो जो मौसम में जो फल हमारे यहाँ हूँ वो अपन खान पीन में हमन का जरूर शामिल करना चाहिए। और यही सब बातचीत करना के लिए हमन नगर कार्यक्रम में आज कमला दी जुड़ रही। तो इन्हों हम ये जानो की अड़खुमानी तो हमारे बात कर ली थी
0: हमारे यहाँ जंगली फल तो खैर बहुत किस्म है लेकिन आजकल वो फल बहुत कम देखी नहीं। पहली बेटे हिसालू हो ची किरमोड़ी हो ची और तिमली ची बेड़ू हो ची और आजकल बहुत कम देखी नहीं लेकिन गांव घरों में हमें मिल जानी फिर।
1: दगड़ फल फूलों की हम बात करने लग रही तो यही विषय पर हम बात हमूल करी आज कार्यक्रम में कमला दी दगड़। तो दीदी मैं आपको यो जान चाहूँ आड़ को चाहे खुमान को जय के हम बात करने लग रही। आज हम देखने को बाजारों पर बहुत देखने लग रहा और ये आज समय हमारे आय मुख्य साधन लगे हो तो क्या आपको कौन सा लगे एक बार में पहले बखत में और आज बखत में।
0: पहली वही हो कि अगर आड़ू खुमानी मतलब कोई ले फल गांव घरों में हो जी जितना खाए तो खाए नहीं खाए तो सड़ जा समय में ये लीजिए सड़ ची कि वहाँ लूणा साधन नहीं हो ची कुछ तो रस्त में बर्बाद हो जाए ची ये लीजिए मतलब कि उन आय साधन नहीं हो ची। आजकल जो जब घर घर में रोड पहुंच गए ये लीजिए अब बाजार है गई बाजार में बेची जा। आज समय में बगीच बढ़ोने बात बतूनू जब तो बगीच बड़े बेर हम थोड़ी बहुत मेहनत करनो हमार मेहनत और फल जब वो फल दिन बैठ जा तो हमार मेहनत को जो तू लाग रहो मैं वो तो हम वसूली कर सकनो आजीविका भली का हम निभा सकनो। ये लीजिए आजकल रोजगार ले चांसा जब तो अपने बगीच बड़े बेर ले तुम अपना रोजगार कर सकते।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात दीदी आप बोल कहे बात में मन मचो और मेरा कार्यक्रम माध्यम है सको हमारे जो और दीदी बनी थी उन्हें हो मैं आपको जान चाहन की जो पहले भी हमारे घरों पर पुरान बुढ़बाड़ हो जब पुलम या खुमान गल जा छी तो हूँ के तरीके संरक्षित कर छी ताकि अखिल का हमारे दोबारा काम आ जाओ। आज हालांकि मशीनों का बखत आएगा लेकिन पहली बार लोग संरक्षित कर छी फलों तो कुछ एक चीज आपको हमने के कार्यक्रम माध्यम में बताऊं चले।
0: पहली बेटे संरक्षण करना लीजिए कोई साधन नहीं जी तो वो टाइम पर वो अपने दिमाग के लिए सोची की मतलब ये फल फूल बेमौसम मन के नहीं मिलो ये लीजिए वो अगर वो फल फूल झड़ जा तो ओके वो इकट्ठे कर बेर ओके सूखा दीजिए और वो सूखे बेर वो बाद में बेमौसम में उसको यूज कर ली। वे टाइम पर पुलम बहुत ज्यादा है जहाँ झड़ जा तो कस कर ची मैं उसको उबाल ली थी उबाल भी छिकल निकाल भी गुठल निकाल भी टीन में पाथरों में तेल लगवे थोड़ी मतलब उनको नन्ना रोडजा बढ़े दी थी उनको खूब सूखे दी थी बाद में बेमौसम में वो यूज है जी थी उनका फिर वो जैसे टाइम पर फल नहीं हो वो टाइम पर वो मतलब वो खाने लीजिए काम है जी।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात दिया फूल बताया। ये हमारे घर में जो लोग पुराने लोग थे बहुत सारे लोग छे जो आज लयस करनी
0: खुमानी बात हम करनो जब तो खुमानी कले अगर जब जब पागवेर वो झड़न बैठ जाए तो वी भीतेरा घुटियाल निकल बेर वो कह हम सूखे दिन सूखे बेर फिर वो बाद में जब खुमानी नहीं है वो मौसम में वो काम है जाए। प्रभा जी आजकल ध्यान धरो नॉल पहली बार मैं इस तो घर में सुखू छी आजकल बाजारों में भी बिक्री होने है और सुखाई सेव खनी मेवा खनी वो सब मतलब पहली बटे का बुजुर्गों ने बड़ाई चीज चीची आज वो बाजार में बेची है। आज वक्त अगर हम बात करनो जब इंसानों का अगर टाइम न है धूप रहे बारिश रहे वो मशीनों में बिदेर जूस बना लेनी अपन फलों उपयोग कर लेनी आजकल सुकोनी लीजिए मशीन रहे बारिश में ले लोग भीतर बैठ बेर उखे काम कर बेर सूखे बेर अपन आयो साधन कर लेनी।
1: बहुत बढ़िया बात कमला दी अपुल कहे
0: खेतपाती तरफ हमन का जरूर ध्यान ले दिन चा और अपन खेतपाती तरफ ऊन ले चा।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात दीदी अपुल यह कार्यक्रम माध्यम हमन के बताए और तो सुंदर जानकारी कमला दी अपुल हमन के दे यह लीजिए कमला दी अपुल बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको ले बहुत बहुत धन्यवाद छो।
1: दगड़ियों हम बात करने लग रहे हैं मौसमी फलों बारे में और आप हमन दगर कार्यक्रम में एक और श्रोता जोड़े हम जानो इन्होंने नाम और जो कहा।
2: मेरा नाम छू राजीव त्योगेचंद पांडे और मैं रामगढ़ जिले में पाली नामक एक जैक छू बसगांव ग्राम सभा वहाँ ग्रोणी छू और यो नैनीताल जिले विदेर हूँ।
1: पांडे जी आपको बता कि आपको नैनीताल जिले में रोचा तो आजकल हम देखने लग रहे की हमारे सारे बाजार मौसमी फलों सजी हुई छू चाहे पुलम खुबानी को आड़ को यो सब हमारे बाजारों में बहुत देखने लग रही तो अपू नैनीताल जिला अपूल बगीच खेत पर आपू पास ले छे।
2: बिल्कुल हमूल बगीच कर रहा और हमारे पास ले आड़ छे खुवैन छे नाशपैत छे और नाशपैत मतलब दो चार तरह का फल होनी जनु के चुस्की ल कोनी जांगरील ल कोनी और भी दगड़ दगड़ पुलम ल छे शो ल छे जो पार मई बटी लिबेर अगस्त तने सदाबहार चलने रोनी एक खत्म हो से दोहर चीज आ जाए बाजार में
1: तो इतु फल फूल आपू पास बाजार का यह तय कर रहे का आपू अपन यह बगीचा फल फूलों को बेचा।
2: हमार बगीचा फल फूल रामगढ़ ब्लॉक में सब लोग कोई दिल्ली लगो कोई हल्द्वान लगो कोई बॉम्बे भेजनी जस्ट हिसाबल फल हॉल वी ग्रेट करनु ठुलदाना अलग नंदाना अलग तो अलग अलग मंडियों में भेजनु और ज्यादातर जो फल छु हमारे यहाँ वो हल्द्वानी मंडी में जाऊँ।
1: हल्द्वान मंडी में पांडे जी अपन यहाँ फल जाए तो ये व्यवस्था अपन कैसे कर रखी
2: फल फूल भेजने की व्यवस्था हम सब गाँव वाले आपस में मिलनू फिर एक आध ट्रक वाला थे बात कर ली उन्हों थको के रेट ले ले कश ले ले और वी हिसाबल जग जग जय जय घर में जति जति माल धर रो वो माल को उठे बे मंडी पुजोनी और फिर मंडी बटी वो बेचे जा।
1: लगभग लगभग कदू एकड़ में आपको पास खेत पास छे बगीचे
2: हमारे पास दो एक एकड़ में हुनोल बगीच
1: तो आप मार्केटिंग अगला आप बात करके बाजार व्यवस्था ला आप मिल बेर गाँव पड़ोस मिल बेर तय कर रखी तो अगर हम कुछ वक्त पहले बात करो फल फूले तो वो वक्त अगर आज वक्त में के बदलाव आपको देख जा
2: आबटी बहुत टाइम पहली रोडों विकास निहर छी रोड नती फल फूल तो छी उतु मात्रा में नती कम कम में छी वो टाइम में घोड़ा में लिबे पाँच पाँच छः छः किलोमीटर जहाँ फना रोड हो छी वहाँ फना लीजे छी आप घर के गाड़े जाए बस आप माल तोड़ बे तैयार कर बे रोड में धर दिया गाड़ी वायो पाँव और ऊपर उठे बे मंडी जहाँ मंडी में लगे रहा वहाँ पूजे दीनी
1: तो पहले वक्त और आज वक्त मोल भाव में कतु अंतर छे
2: मोल भाव में ले अंतर छु पहली थोड़ा कम में भी जा छी अब थोड़ा थोड़ा रेट ले ठीक बिचाना लेकिन जिस हिसाब महंगाई छु वही हिसाब फल फूल ले रहो
1: तो यह कार्यक्रम माध्यम के कौन चला आप हमारे श्रोता
2: मैं तो यही कौन चाहू जो लोगों पास पहाड़ में जमीन छु यह जमीन का बंजर निकरा इन में अबेर फल फूल लगवा पेड़ लगवा 10-20 हजार तो आप लोगों के ब्याह ले मिलनी यहाँ भल कर ला तो वीक दुगुण मिलल यस तो हम अपन सामने देखेला
1: तो सुंदर जानकारी पांडे जी अपूर्य कार्यक्रम माध्यम हमन के दे, तो यह कह लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: स्वास्थ्य का खजाना पहाड़ी फल।

0: बहने अभी सुन रही थी कार्यक्रम ऐप पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की तैयारियां तेज। हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन। और देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की पहल की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सैन्य बैंड की गूंज, अनुशासित कदम ताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और गौरवपूर्ण बना दिया। इस वर्ष की परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो महिला नेतृत्व वाले विकास और सशक्त भारत की अवधारणा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। एक रिपोर्ट।
1: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 16 मित्र राष्ट्रों के 34 कैडेट हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार अकादमी से पुरुष कैडेट्स के साथ 9 महिला कैडेट्स भी पास आउट हुई। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान, साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। उन्होंने पहली बार पास आउट हो रही महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे देश में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम बताया। श्रीमती मुर्मू ने अधिकारी कैडेट्स से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का आह्वान किया।
2: डियर कैडेट्स, योर जर्नी एट द इंडियन मिलिट्री अकेडमी हैज बीन वन ऑफ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस एंड पर्सिवरेंस। You have learned that military leadership is not only about command, but also about character, compassion and commitment. You are the protectors of our nation's sovereignty, unity and integrity. You carry the sacred trust of over 140 crore citizens. You should always remember that service is the highest duty. In an era of rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने यात्रा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से यात्रा संचालन और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। बैठक में यात्रा रूट प्लान, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की भी समीक्षा की गई। मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने राहत व बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों पर संवेदनशील स्थलों पर मशीनरी की अग्रिम रूप से तैनाती की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। नैनीताल के कैची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले बाबा नीब करोरी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा दिवस मेले को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था 16 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर शटल सेवा के माध्यम से ही कैची धाम पहुंचना होगा। प्रशासन के अनुसार 14 और 15 जून को दोपहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं आज से 16 जून तक भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े वाहनों को निर्धारित समय से ही अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालु

0: की सुविधा के लिए भवाली, भीमताल, नैनीताल, खैरना, काठ गोदाम और हल्द्वानी सहित विभिन्न स्थानों पर पार्किंग और शटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में हल्द्वानी के ग्वालापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल संरचना, पाठ्यक्रम और स्टाफ तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर के खेल अधिकारी, कोच और खेल जगत से जुड़े दिग्गज शामिल हुए। शासन की योजना के अनुसार जुलाई माह से ही ग्वालापार स्टेडियम परिसर में खेल विश्वविद्यालय का पहला सत्र शुरू करने की तैयारी है। खेल सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति अमित सिन्हा ने बताया कि बैठक में विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: पहली चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, इसकी बहुत बाहर डिमांड है। इसके लिए जॉब के बहुत अच्छे स्कोप है। हम लोग ये चाह रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे जो आसपास के जो भी वो यहाँ पे आए, यहाँ पढ़े। स्पोर्ट्स कोचिंग में भी यहाँ पे जो गेम्स की कोचिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है, जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक उसको प्रचार प्रसार करके हम लोगों को ला सके। बिकॉज हम जो क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सारी तैयारियां इन सब से चर्चा हुई।
0: खेल निदेशक दीप्ति सिंह ने बताया कि शीघ्र ही खेल विश्वविद्यालय को विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को नई दिशा मिलेगी।
3: उत्तराखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर आज बैठक थी, तो उसमें माननीय हमारे जो वीसी हैं सर, उनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, क्या फी स्ट्रक्चर होगा, तो उस पर लेकर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। जल्दी हम आने वाले कुछ माह में इसको लागू भी करना चाह रहे हैं और फंक्शनल करना चाह रहे हैं, तभी हम फिर इसमें कुछ फर्दर बता पाएंगे।
0: देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरू की है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऐसे बच्चों के चिन्हीकरण और उपचार की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों और किशोरों के चिन्हीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें समयबद्ध उपचार प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि चिन्हित बच्चों का उपचार केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन गंभीर बीमारियों का उपचार इस कार्यक्रम के तहत संभव नहीं होगा, उनके उपचार के लिए अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और राइफल फंड का उपयोग किया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। देहरादून में आयोजित नाबार्ड कार्यशाला और क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं के कौशल विकास और पलायन की समस्या के समाधान पर मंथन किया गया। नाबार्ड ने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की तैयारियां तेज। हल्द्वानी के ग्वालापार स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन। और देहरादून जिला प्रशासन ने गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की पहल की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। और न जाने कितनी खूबसूरत गजलें मेहदी हसन साहब की आवाज़ में हमने सुनी हैं, उनकी आवाज़ कानों में मिठास घोलती है, ध्रुपद दादरा ठुमरी और ख्याल में भी महारत हासिल थी। जाने माने गज़ल सम्राट शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को। और आज मेहदी हसन साहब की पुण्यतिथि है, तो उन्हें नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हीं की आवाज़ में चंद गज़लें पेश है आगाज़ कर रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ की इसी गज़ल के साथ, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार सजे।

गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। फैज अहमद फैज की गज़ल मेहदी हसन साहब की आवाज़ में आपने सुनी, और अब अहमद फराज का कलाम पेश है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मेहदी हसन।

श्रोताओं, शहनशाही गज़ल मेहदी हसन साहब अपनी बेहतरीन गज़लों के ज़रिए आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धा नमन कर रहे हैं और सुगम संगीत के आखिर में पेश कर रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में एक और गज़ल। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शायर हैं मसरूर अनवर।

जी हाँ, गज़लों की दुनिया के महान शख्सियत शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उनकी बेशकीमती, उनकी मखमली आवाज़ के ज़रिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सुगम संगीत संपन्न हुआ, हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं।

हनीमून आज प्रस्तुत है श्री शंकर की इस बांग्ला कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतर श्री सुरेश चतुर्वेदी ने किया है। तो सुनिए नाटक हनीमून।

0: आवेरी। क्या हाल चाल है?
1: ठीक है श्वेता, तू अपनी कह।
0: अरे कहना तो बहुत कुछ है, तू कहीं आकर मिल लेना।
1: तू ही चली आना। अच्छा बता, बोल कहाँ से रही है?
0: एस्प्लेनेड के बूथ से, मगर घर पर बात नहीं हो सकेगी।
1: अच्छा ठीक है, बता कहाँ मिलूं?
0: हाँ विक्टोरिया मेमोरियल आ जाना, मैं भी यहीं से ट्रैम पकड़े लेती हूँ। ठीक है?
1: हाँ ठीक है, मैं भी बस अभी चल देती हूँ।
0: ओके सी यू।

0: नहीं भाभी,
1: ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा तुझे?
0: नहीं नहीं, मैं भी अभी ही पहुंची हूँ।
1: अच्छा चल, जरा कहीं बैठ जाए।
0: चल,
1: दाद पिएगी?
0: नहीं नहीं, कुछ भी खाने पीने को जी नहीं कर रहा, चिंता से दिमाग परेशान है।
1: देख श्वेता, परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन तू अपने को इतना हल्काम क्यों कर रही है?
0: अरे मामला बहुत आगे बढ़ चुका है।
1: भौरा ज्यादा गुनगुनाने लग गया है क्या?
0: नहीं रे, घर पर मुसीबत आ गई है। उस दिन कौन तो देखने आए थे ना।
1: तू उनके सामने गई क्यों, ना जाती?
0: चाहती तो यही थी, मगर जाना ही पड़ा। सोचा था पसंद नहीं आऊंगी तो बला टल जाएगी, मगर
1: मगर बला टली नहीं, लड़की पसंद कर ली गई। अच्छा तो ये बता, अब

0: मुंह कब मीठा कराएगी।
1: मजाक छोड़ना। मगर तुझे कैसे पता चला?
0: घायल की गति घायल जाने, मैं भी तो अपने भौरे को लेकर परेशान हूं ना।
1: अच्छा अच्छा सुन, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई राह खोज निकाले।
0: तू तो मुझसे भी ज्यादा घबराई दिख रही है। हाँ। माथे पर पसीना आ रहा है। अरे श्वेता, डरती क्यों है? देख, कुछ ना कुछ राह जरूर निकल आएगी।
1: हाय राम, न जाने क्यों मैंने इस रास्ते पे पांव रखा। हो गया मेरा भौरा कुछ कर बेटा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी।
0: अरे प्रेम पथ पर कोई जानबूझकर जाता है क्या? सब भाग्य का चक्कर है। प्रेम तो बस अपने आप हो जाता है, अपने आप।
1: अरे लड़कों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए।
0: हाँ
1: हाँ, माँ कहती हैं ज्यादातर लड़कियाँ जो खराब होती हैं ना, वही होती हैं जो अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं।
0: अरे श्वेता, तेरी माँ को कुछ जोर तो नहीं लग गई है? मेरा मतलब है, कहीं तेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो उनके हाथ नहीं लग गई?
1: अरे नहीं, चिट्ठियाँ तो मैं हमेशा अपनी पेटी में कपड़ों के नीचे रखती हूँ।
0: सच?
1: और ताला बंद करके रखती हूँ। ताली ये देख, हर वक्त मेरे गले में रहती है।
0: अच्छा ये बता, तेरा भौरा कैसा है?
1: कहता तो है कि अच्छी हैसियत वाला है, मगर ये तो उसकी बात है ना। सुन कावेरी, हमारे मोहल्ले की एक लड़की के संग ऐसा ही हुआ था। लड़के ने बताया कि वो बैंक में अफसर है, मगर बाद में पता चला कि वो चपरासी था। हाय, कैसी सुंदर लड़की थी वो। कोरा चिट्टा रंग, अच्छा नाक नक्श, बिल्कुल तेरे जैसी।
0: अच्छा ये बता, लड़का कैसा है, तूने देखा है?
1: सिर्फ तस्वीर देखी है। माँ बताती है कि खूब पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी पर है और घर के लोग भी भले हैं। पर तू अपनी तो बता।
0: अपना भी यही हाल है। फोटो माँ ने मेज पर रखवा दिया था, पर मैं कुछ भी तय नहीं कर पा रही हूँ।
1: तेरा भमरा कुछ आफत तो नहीं उठा रहा ना?
0: कुछ मत पूछ सखी, कहती हूँ ऐसी जल्दी क्या, मगर सुनता ही

0: पर तू अपनी तो बता।
1: अपना भी यही हाल है। फोटो माँ ने मेज पर रखवा दिया था, पर मैं कुछ भी तय नहीं कर पा रही हूँ।
2: तेरा भमरा कुछ आफत तो नहीं उठा रहा ना?
1: कुछ मत पूछ सखी, कहती हूँ ऐसी जल्दी क्या, मगर सुनता ही नहीं। अच्छा, तेरे वाले हैं कैसे?
2: हाँ, फोटो में तो भंवरे से खराब नहीं लगते हैं, और तेरे?
1: भंवरे से तो सुंदर ही है।
2: सुन कावेरी, हम लोग अपने माँ बाप की बात क्यों ना मान लें?
1: हाँ, माँ बाप की अवज्ञा करना अच्छा नहीं लगता। अब देखना, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, और अब भी जो करेंगे हमारे फायदे के लिए ही ना।
2: हाँ, तू ठीक कहती है। कहीं पढ़ा है कि लड़कों के प्यार में देह शक्ति ज्यादा होती है।
1: अब समझ में आया, इसीलिए भावरा मेरे रूप की हर वक्त तारीफ किया करता था। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि मैं कोई परी नहीं हूँ?
2: हाय कावेरी, तो क्या प्रेम का कोई भी मूल्य नहीं होता?
1: होता होगा, मगर उसके लिए हम लोग मुसीबत क्यों मोल लें?
2: ठीक कह रही है तू, बिल्कुल ठीक। आज शाम को उसने मेट्रो के सामने आने को कहा था, अब नहीं जाऊंगी, खड़ा खड़ा लौट जाएगा।
1: मुझे तो आज कैथेड्रल ले जाने को कह रहा था, मैं भी नहीं जाऊंगी। स्टेशन पर इंतजार करता रहे और चला जाए, मुझे सब में नहीं पड़ना है। हाँ
2: बिल्कुल ठीक।

0: हेलो कावेरी।
1: हाँ?
0: मैं श्वेता बोल रही हूँ।
1: अरे श्वेता, अरे बता तो, कल कुछ झंझट तो नहीं हुआ?
0: नहीं, कुछ खास नहीं। मेट्रो के सामने खड़ा रहा, फिर वहीं से मुझे फोन किया।
1: अरे बड़ा दुष्ट है।
0: मैंने तो खूब डांट दिया और कहा अब मुझे कभी फोन ना करे, और फिर लाइन काट दी।
1: शाबाश। और मैं बताऊँ, मेरे साथ भी यही हुआ। हावड़ा स्टेशन से फोन किया था उसने, मैंने भी फटकार दिया, कहा इस तरह का चलन मेरे माँ बाप पसंद नहीं करते, आइंदा मुझे फोन वन ना करे।
0: वेल डन कावेरी, वेल डन। हम दोनों ही बाल बाल बच गए। ये लड़के तो सचमुच जैसे आदम खोर बाघ होते हैं।
1: श्वेता, मुझे मुझे देखने को आ जा रहे हैं।
0: Really? हाय, चाहती तो मैं भी यही थी कि इस शुभ घड़ी में मैं तेरे साथ रहती, मगर वो मौसी है ना, उन्होंने चाय पर बुलाया है। और जानती है वहाँ कौन आ रहे हैं?
1: कौन?
0: वो मेरे होने वाले। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक।
1: ओके, थैंक यू टू यू आल्सो।
0: थैंक्स।
1: ओके, बाय
0: बाय बाय।

मेरी शुभ कामनाएं कावेरी। एक बार पढ़ लूं। प्रिय श्वेता, हनीमून पर रानी खेत आए हैं हम लोग। अच्छा, क्या तुझे मालूम है हनीमून का आविष्कार किसने किया है? कुछ भी हो, है अच्छी चीज। मेरे वो तो ऐसे दुष्ट हैं कि बस पूछ मत। अमृतसर मेल से हम लोग लखनऊ चले थे। हजरत ने 5 रुपए देकर कूपे की व्यवस्था करा ली। और अब क्या कहूं, लखनऊ में चिड़ियाघर देखने गए। वहां तो बाघ पिंजरे में घूमते हैं ना, पर हम लोग तो खुले छूटे हुए बाघों के पल्ले पड़ गए हैं। तो अब डरना क्या। लखनऊ से काठगोदाम तक की यात्रा हमेशा याद रहेगी, इसलिए नहीं कि यहां भी कूपे मिल गया था। खुले मैदान, चांदनी रात का सन्नाटा, और फिर नई जगह देखने का चाव। जानती है इन्होंने क्या किया? सिद्ध करने लगे मैं कोई गीत गाऊं। फिर अपना गला जैसा है सो तुझे तो पता ही है, मगर गाना ही पड़ा। यहां पर भी हमें अच्छी कॉटेज मिल गई है।

देवदार, चीड़ और परूस के पेड़ों से घिरे बिल्कुल एकांत में न मालूम कितनी तरह के फूलियां खिलते हैं। दूर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां कभी रुपहली, कभी सुनहरी दिखाई देती हैं, कभी कोहरे में ढक जाती हैं। चारों तरफ प्रकृति का विपुल वैभव बिखरा रहता है। सच, तेरी बहुत याद आती है। पता नहीं दिन किस तरह पल पल उड़े जा रहे हैं। अभी तक सास को सिर्फ एक कार्ड लिखा है, वक्त ही नहीं मिल पाता। अब तुझे लिख रही हूं, अपने हाल चाल देना, लिखेगी ना। मेरी शुभकामनाएं, कावेरी। ठीक है, अब इसे पोस्ट कर दिया जाए।

0: अरे श्वेता, तू यहाँ? कावेरी, अरे तू? हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि ये तू है।
1: सच में?
0: हाय कावेरी, तू कितनी सुंदर लग रही है रे।
1: और तू?
0: तेरा तो रूप जैसे फटा पड़ रहा है।
1: अरे ये सिंदूर तूने किस तरह मांग में भरा है? सारे कपाल पर फैल गया।
0: आदत नहीं है ना, अरे कपाल पर ही क्या, सारे चेहरे पर बिखर जाता है। उनकी बनियान, चादर, गिलाफ, तौलिए क्या क्या लाल नहीं हो जाते। भाई हमें तो बड़ी शर्म आती है कभी कभी।
1: ठहर जा तू, तेरी ये सारी बेहाई मेरी सास को लिखना।
0: अरे उन्हें मत लिखना बाबा।
1: क्यों
0: क्यों? अरे सासों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता।
1: जब तेरे बेटे का ब्याह होगा ना तो तुझे भी ये सब नहीं अच्छा लगेगा।
0: भाई कुछ भी कह, मगर ये हनीमून है गजब की चीज
1: है ना।
0: हमारे यहाँ तो लोग इसके नाम पर नाक भौं सुकेड़ लेते हैं।
1: हाँ, वो तो तुझे देखकर ही समझ रही हूँ। तभी ना तुझे मेरी याद भी नहीं आई। तू अगर एक मिनट और नहीं आती तो ये चिट्ठी मैंने पोस्ट कर दी होती।
0: किसे?
1: तुझे और किसे? हाँ? ये देख।
0: हाय रे, देख तो जरा संयोग, मैं भी तेरे लिए चिट्ठी डालने आई थी।
1: सच?
0: ये देख। है ना तेरे कलकत्ते का पता।
1: तबला, दे मेरी चिट्ठी।
0: पहले तू मेरी चिट्ठी दे।
1: अच्छा बाबा, देती हूँ। ले
0: ले, तू भी ले।
1: देख श्वेता, एक प्रॉमिस कर, ये चिट्ठी यहाँ नहीं पढ़ना। हाँ, सब कुछ लिख मारा तुझे।
0: मैंने भी तो यही किया है रे। और खुद तुझे ना लिखती तो और किसे लिखती है?
1: चल श्वेता, पहले जरा थोड़ी देर बैठकर कहीं बतिया ले।
0: अब तू मिल गई है तो क्या यूं ही छोड़ दूंगी?
1: तो चला ना, चल। अच्छा ये बता, तू हनीमून पर कैसे आ पाई?
0: सब कुछ चिट्ठी में लिख दिया है।
1: हाय राम, तेरा ये हार तो बहुत भारी है।
0: ये उन्होंने दिया है।
1: अच्छा, तोहफे में भी कुछ मिला था क्या?
0: ये अंगूठी देख।
1: दिखा।
0: देख। पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा नाप ले लिया, बिल्कुल फिट आई है उंगली में।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अब दिखा ये चूड़ियां तो दिखा। हाट हाट है ना?
1: हाँ, सांस दे दी है। एक सेट और भी है, मगर लाई एक ही हूँ।
0: क्यों?
1: उन्होंने कहा परदेश में ज्यादा जेवर ले जाकर क्या करोगी।
0: हाँ ठीक ही तो कहा। अच्छा चल, इस पेड़ के नीचे बैठकर हम अपनी चिट्ठियां पढ़ लेते हैं।
1: चला चल।
2: प्रिय कावेरी, शादी के बाद
0: ये एक तरह जबरदस्ती ही रानी खेत लाए हैं। याद है शादी के पहले हम लोग पति नाम से कितना डरते थे, मगर देख लिया ये सारा डर बेकार था। अब तुझसे क्या शर्त भाई, हमें तो ये बहुत पसंद आए। कुछ दिनों पहले भी अगर शादी हो जाती ना तो भी बुरा नहीं था। सास नहीं चाहती थी कि बहू बेटा इतनी जल्दी कहीं जाए। न जाने कितनी तरह के तो पूजन कराने थे, ये तो बहुत गुस्सा होते थे। खुद तो कुछ कहते नहीं थे, अकेले में मुझसे लड़ते थे। अब तू ही बता मैं क्या कर सकती थी। आखिर जेठानी जी ने हम लोग का उद्धार किया। वो डॉक्टर है और स्वभाव की बहुत ही परिहास प्रिय। उन्होंने सास से कहकर हमारा प्रबंध कराया, लेकिन बोली ठीक है हनीमून पर जाते हो तो जरूर जाओ, मगर रहना जरा संभल कर, ये ना हो

0: जल्दी ही मेरी मदद की जरूरत पड़े। मुझे तो इतनी शर्म आई, इतनी शर्म।
1: श्वेता तू भी बस।
0: तो भाई हनीमून क्या होता है ये हर कोई नहीं समझ सकता। हाँ तू जरूर समझ जाएगी। अर्जुन पता है कैसे आदमी है, रोज जिद करके अपने नाम एक चिट्ठी लिखवाते हैं और फिर कहते हैं पढ़कर सुनाओ। हाँ हम लोग मिसेस पीटरसन के बोर्डिंग में ठहरे हैं। बुढ़िया बड़ी रसिक है, खोद खोद कर हाल पूछती है। कहती है हनीमून पर आए हो तो सोच लो, दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, जी चाहे तो स्लीपिंग बैग लेकर जंगल में निकल जाया करो। पर भाई हमें तो बहुत अटपटा लगता है। कावेरी अपने हाल चाल लिखना। मैं तो सोचती हूँ कि भगवान की बड़ी दया हुई जो हम दोनों उस गलती से बच गए। फमरे का और इनका भला क्या मुकाबला। अच्छा ढेर सा प्यार।
1: तेरी ही महाश्वेता।
2: सुन तूने ये तेरी ही महाश्वेता क्यों लिखा है?
0: क्यों
2: तू अब मेरी रही ही कहाँ है, किसी और की जो हो गई है।
0: सर्वाधिकार तो तेरा भी सुरक्षित हो गया है ना।
2: तो क्या मेरे सर्वाधिकार को एक बार देखेगी भी नहीं?
0: देखूंगी, जरूर देखूंगी।
2: देख श्वेता भाग्य से हम दोनों हनीमून पर आ मिले हैं, ये कैसी बढ़िया बात है ना।
0: हाँ, पर मैं जिसकी अपनी हूँ उससे नहीं मिलेगी क्या?
2: अरे वाह क्यों नहीं मिलूंगी, जिसने मेरी सखी के गोत्र का नाश किया है उससे तो जरूर मिलूंगी।
0: अच्छा सुन तेरा दूल्हा नाराज तो नहीं हो जाएगा ना?
2: क्यों
0: क्रोच मिथुन के कुंजवन में व्याध का प्रवेश कहीं श्राप ना दे बैठे। मान निषाद प्रतिष्ठान त्वम
2: गमाशास। बकवास बंद कर अपनी।
0: ये कहना कि तू खुद अपना कुंजवन नहीं छोड़ना चाहती।
2: और तू
0: सच बिल्कुल कावेरी, कल तो बिल्कुल नहीं सोने दिया मैंने।
2: अच्छा।
0: बातें बातें न जाने कितनी बातें हुई और अब खुद पड़े पड़े खराटे ले रहे हैं।
2: अरे वाह।
0: सच इसी में मौका हाथ लगा, सुखत लिखा और अब डालने चली आई। अगर जाग गए तो बहुत नाराज होंगे।
2: अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अकेले ना मिलकर जोड़ी से मिलना ही ठीक होगा, है ना? अच्छा ऐसा करो, पहले तुम लोग हमारे यहाँ चाय पर आओ, फिर हम लोग आएंगे। रही पक्की? अच्छा तो अब मैं चलूं।
0: बहुत उतावली हो रही है क्या?
2: चंडाल कहीं की।

0: अजीब उठो ना, कब तक सोते रहोगे? उठो,
1: सोने दो ना।
0: तुम्हें न जाने इतनी नींद क्यों आती है, उठो ना। देखो देखो, तुम्हारे लिए मैं शाल के फूल लाई हूँ।
1: फूल तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनो, मैंने अभी सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो।
0: भागी तो गई थी, अभी अभी लौटी हूँ।
1: कहाँ भाग गई थी? अभी तो मैं ठीक करता
0: हूँ। देखो देखो, दरवाजा खुला हुआ है।
1: रुक जा। अब बताओ कहाँ गई थी?
0: गई थी अपनी एक सहेली को चिट्ठी डालने। और जानते हो क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो भी मुझे चिट्ठी पोस्ट करने डाकखाने आई थी। अचानक हम दोनों टकरा गए।
1: वो यहाँ क्यों आई?
0: अपने साथ उसका भी विवाह हुआ था। वो भी अपने पति के साथ हनीमून पर आई हुई है।
1: Oh, I see.
0: हम दोनों ने अपनी अपनी चिट्ठियाँ बदल ली। कुछ देर बोले बतियाए, फिर वो उधर चली गई और मैं लौट आई। ये देखो उसकी चिट्ठी।
1: लिफाफों तो बहुत भारी लग रहा है, मगर ये बड़ी अजीब बात है कि वो तुम्हारा पीछा करती हुई यहाँ भी आ गई।
0: वो लोग भी तो हमारे बारे में ऐसे ही सोच सकते हैं। जानते हो, तुम्हें छोड़कर मैंने किसी और को इतना प्यार नहीं किया जितना उसे।
1: तो फिर शादी भी उसी से कर ली होती।
0: शी, कैसी बातें करते हो? मेरी सहेली है वो, उसके बारे में तुम्हें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए।
1: अरे उससे मीठी बातें करे उसका पति, मुझे क्या लेना देना?
0: शादी से पहले मीठी बातें करके उसे लुभाने की कोशिश की थी किसी ने।
1: कौन था वो बेवकूफ?
0: अगर यही पता होता तो उसके मुंह पर

0: ना कालिक पोत देती। अच्छा चिट्ठी पढ़ोगे?
1: तुम्हारी चिट्ठी मैं क्यों पढूं?
0: हम दोनों क्या अलग हैं? बोलो।
1: नहीं
0: मगर जब उससे मिलो ना तो उससे ये सब ना बता देना, नहीं तो वो मुझसे बहुत लड़ाई करेगी।
1: अच्छा भाई नहीं बताएंगे बस।
2: नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं।

0: श्वेता, ये तो मैं हूँ, मैं कावेरी। क्या कह रही है ये सब, किससे कह रही है?
1: ओह माय गॉड, कावेरी तू है? माफ करना डियर, अभी अभी एक मुसीबत आ खड़ी हुई है।
0: क्या हुआ?
1: वो लफंगा था ना।
0: अरे कौन?
1: वही शादी से पहले जिसे
0: तेरा भौरा,
1: वो भौरा कहने चाहे घुबरेला, उसका फोन आया था।
0: हैरान, तेरे पास भी कलकत्ते से ना?
1: नहीं रे, यहीं से। लगता है वो भी यहाँ आ मरा है, ब्लैकमेल करना चाहता है शायद।
0: रुपए मांग रहा था क्या?
1: रुपए तो अभी नहीं मांगे, बाद में मांगे। अभी तो चिट्ठिया मांग रहा था, अगर नहीं दूंगी तो शायद इन्हें दिखा देने की धमकी देकर रुपए भी मांगेगा। हम दोनों को ये क्या हो रहा है?
0: ओह श्वेता, एक साथ दोनों इस झंझट में कैसे फंस गई हैं हम। अरे तू रो रही है?
1: रोने तो क्या करूं, गाँव अगर इन्हें पता चल गया तो तलाक दिया बिना नहीं मानेंगे।
0: देख श्वेता, रो मत प्लीज। अच्छा सुन, कहीं आकर मिल ले, वहीं सारी बातें करेंगे।
1: ये ठीक रहेगा,
0: ठीक है ना? ओके देन।

0: हेलो
1: हेलो, कौन कावेरी?
0: हाँ श्वेता, मैं सुन, मैं नीलांबर चौधरी से मिलाई हूँ। आदमी तो काम का है, बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी और फिर आश्वस्त भी कर दिया उसने कि कुछ नहीं होगा। मेरी राय है तू भी जाके मिल ले।
1: कावेरी, अगर इन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो क्या होगा? बदनामी तो होगी ही, माँ बाप भी न जाने क्या करे।
0: देख श्वेता, प्लीज प्लीज हिम्मत से काम ले। देख, चौधरी के यहाँ एक बार हो तो आ।
1: वो रहते कहाँ हैं?
0: वो मंदिर के सामने होकर जो रास्ता उतर गया है ना, उसी जगह उनकी कॉटेज है। हिल क्वैक नाम है।
1: अच्छा जी, हो आऊंगी। लगता है इन्हें बहुत शक हो गया है। आजकल ठीक से बातें भी नहीं करते मुझसे।
0: हमारे भी आजकल कुछ खींचे खींचे से रहने लगे हैं। सारा प्यार जैसे चुप गया है, ऐसा मजाक करते हैं कि बस। खैर, तू उनसे मिला तब बात करेंगे।
1: हाँ, ये ठीक है।
0: चौधरी से मिली?
2: हाँ।
0: क्या कहा बुढ़े ने?
2: यही कि अदालत में सब संभाल लेंगे।
0: तभी उनकी पत्नी आ गई, बोली,
2: क्या बेहुदा बात करते हो जी, कुल वधू और अदालत में जाएगी।
0: फिर मुझसे बोली, बेटी उस नालायक से मिलकर उसे समझा बुझा ले, यही ठीक रहेगा। मैं जब गई थी वो वहां नहीं थी, वरना मुझे भी यही राय देती। खैर श्वेता, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर सवाल ये है कि वो लोग सामना करने को राजी भी होंगे कि नहीं।
2: अरे उन्हें तो सिर्फ चिट्ठियां ही वापस चाहिए ना, मिलेंगे क्यों नहीं।
0: मगर श्वेता, मेरे पास तो चिट्ठियां हैं ही नहीं। सुन, ऐसा क्यों ना करें कि दोनों को हम लोग कहीं एक साथ ही बुला लें। एक से दो अच्छे होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम एक दूसरे की बात संभाल लेंगे।
2: हाँ ये ठीक है। कल शाम को बुला लें।
0: हाँ,
2: वो जो चर्च के पीछे रास्ता नीचे उतरता है ना।
0: हाँ हाँ,
2: उसके चौथे मोड़ पर दाहिनी तरफ एक झुरमुट है, वहीं हम लोग मिलते हैं 4 बजे, ठीक रहेगा ना?
0: हाँ
2: हाँ, उसका फोन है तो तू उसे समझा देना, मैं भी अपने वाले को बता दूंगी। अच्छा कावेरी, मेरे ख्याल में तुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है।
0: हाँ अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई।

0: ठीक बताया था ना?
1: हाँ हाँ, मैंने तो अच्छी तरह समझा दिया था।
0: सुन, ज्यादा खुशामद तो नहीं करनी पड़ी थी ना?
1: अरे नहीं रे, आखिर उसकी भी तो अटकी है ना।
0: आज कुछ गर्मी ज्यादा नहीं है? देख, बार बार मेरे माथे पे पसीना आ रहा है।
1: गर्मी नहीं है, तू घबराई हुई है।
0: अब तो
1: सुन, तेरा वाला भी आसानी से मान गया था क्या?
0: 5 बजे आने को कह रहा था, मगर उस वक्त तो घूमने वालों की इतनी भीड़ हो जाती है ना, इसलिए मैंने कह दिया आना है तो 4 बजे आओ। हाँ अच्छा, तू निकल कैसे पाई?
1: इनके कोई अफसर आए हुए हैं, उन्हें घुमाने फिराने गए हैं।
0: अच्छा,
1: दोपहर में खाने पर भी नहीं आए थे, फोन कर दिया कि खाना वहीं होगा। मैंने डांट कर कह दिया शाम 5 बजे तक जरूर आ जाएं।
0: ओ, वैसे इनके कॉलेज के भी कोई बड़े प्रोफेसर आए हुए हैं, वो चाहें तो इन्हें विदेश भिजवा सकते हैं। उन्हीं की खुशामद में लगे हुए कई दिनों से।
1: अकेले या दोनों को?
0: अरे अकेले कौन जाने देगा, भला मर्दों का कोई ठिकाना होता है? इधर इस मामले के कारण जरा दबी हुई हूँ, वरना तो। आई राम, क्या हुआ? क्या हुआ? चुप, मुझे ऐसा लगा जैसे उधर ऊपर से मेरे पति इधर आ रहे हैं।
1: मगर वो तो प्रोफेसर साहब से मिलने गए थे।
0: कहाँ है वो? देख, वो वो जो नीले सूट में है ना, वो
1: लेकिन वो तो मेरा भौरा आ रहा है।
0: तेरा भौरा? क्या नाम है उसका?
1: विमल लाड़ी
0: है? पर ये तो मेरे पति का नाम है।
1: क्या? अरे बाप रे, सर्वनाश हो गया। इधर नीचे से वो देख, वो मेरे पति आ रहे हैं।
0: मगर वो तो अपने अफसर से मिलने गए थे ना।
1: हाँ, लेकिन वो ही है। वो देख, देख।
0: वो तो मेरा भावरा आ रहा है। क्या तेरे पति का नाम रॉबिन बागची है?
1: हाँ हाँ।
0: तो ये मामला है।
2: अच्छा सुन, तू जरा चुप कर बैठ जा।
1: अच्छा,
2: जरा इन लोगों को पास आने दे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे बाप रे,
1: खबरदार जो भागे तुम। हा? चलो इधर लौट कर आओ। चलो
3: नो।
1: भागे क्यों जा रहे हो महाराज, इधर चलो, लौटो। हाँ हाँ, आ जाओ।
3: अरे तुम?
1: जी।
3: और आप भी? आप? और साथ में तुम भी उश्विता?
1: जी हाँ।
3: हे राम, कहाँ फंसे आकर? ओह माय गॉड,
1: इधर आइए, इधर आइए। चुपचाप कावेरी की चिट्ठियाँ उसे लौटा दीजिए, समझे? चिट्ठियाँ
4: ये लो।
1: लो कावेरी, अपनी चिट्ठियां लो।
5: थैंक्स जनाब। अब आप श्वेता की चिट्ठियां वापस कीजिए।
3: चिट्ठियां?
5: जी हाँ, दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए।
3: ये लो चिट्ठियां, चिट्ठियां
5: ये ले श्वेता, अपनी चिट्ठियां।
1: थैंक यू।
5: हाँ तो क्यों हजरत, इसी को अफसर से मिलना कहते हैं ना?
1: विदेश भिजवाने वाले तुम्हारे वो प्रोफेसर साहब कहाँ रह गए जी? हे भगवान, कितने घुटे हुए हो तुम। खबरदार जो आइंदा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा।
3: ना ना ना ना, क्यों भाई साहब?
4: यस मी टू।
3: श्वेता जी, आप कहीं चलकर चाय तो पिलवा दीजिए ना,
4: चाय
3: गला सूख रहा है ना जी।
1: जी

हनीमून। अभी आपने श्री शंकर की बांग्ला कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतरकार थे श्री सुरेश चतुर्वेदी। इसके निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। कावेरी श्रीमती सुचित्रा गुप्ता, श्वेता श्रीमती रश्मि दर, रुबीन श्री कमल वर्मा और विमल श्री अश्विनी कुमार। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं राजीव बहुगुणा।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उत्तराखंड के लोग एक कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं एक और गढ़वाली लोकगीत से। कलाकार हैं विजय सिंह सैलानी।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

0: भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners,

0: courageous decision makers and ethical leaders.
1: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया. ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे. प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है.
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का. तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है. और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है.
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया. रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए. बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा. केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है. इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे. डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है. एक रिपोर्ट.
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई. जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे. इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए. समाचार कक्ष से मेघना शर्मा.
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए. नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है. लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है. अप्रैल में ये 3.48% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही. भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ. विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई. वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती. हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं.

0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है स्वस्थ मृदा हेतु जैविक खादों की उपयोगिता। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री नवीन चंद्र बेलवाल।
3: किसान भाइयों व बहनों, मृदा अथवा मिट्टी कृषि का मूल आधार है। किसी भी भूभाग की सुख समृद्धि उस स्थान की जलवायु, मिट्टी के गुणों व मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। खेती से अधिक उपज लेने के लिए खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए

रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम दीर्घ समय तक एक टिकाऊ खेती कर सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारी खेतों की मिट्टी उपजाऊ व स्वस्थ बनी रहे। किसान भाइयों, आज हम खेतों की मिट्टी को स्वस्थ व उपजाऊ बनाए रखने के लिए जैविक अथवा जीवांश खादों की उपयोगिता पर बात करेंगे। जैसा कि वर्तमान में रासायनिक खादों, कीट और रोगनाशी रसायनों का खेती में लगातार प्रयोग बढ़ने से ये रसायन खेती के लिए घातक होने के साथ साथ इनसे पर्यावरण, पानी व वातावरण को भी दूषित करने में बहुत भूमिका निभा रहे हैं। खेती में इन रसायनों के अधिक प्रयोग होने से उत्पादित जो खाद्य सामग्री भी है वो प्रदूषित हो जा रही है, जिसको खाने से आज मानव में अनेक तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। सर्वप्रथम खेती के लिए खेत की मिट्टी का उपजाऊ व स्वस्थ होना आवश्यक है। फसल के पौधों की वृद्धि पर मिट्टी की दशा का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसमें मिट्टी के कणों का गठन व संरचना, उसकी बातीय दशा, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों व हानिकारक तत्वों की मात्रा आदि का पौधों के पोषण और वृद्धि से सीधा संबंध है। इसके साथ ही मिट्टी के भौतिक गुणों में मिट्टी का वयन, विन्यास, घनत्व, रंध्रावकाश, जल धारण शक्ति आदि का फसल के पौधों की बढ़वार पर सीधा असर पड़ता है। मिट्टी का गठन एकदम रेत जैसा और न ही एकदम मटियार किस्म जैसा होना चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वायु का समुचित संचार हो सके। मिट्टी में जल धारण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे फसल में बार बार सिंचाई की आवश्यकता न पड़े। बहुत सी मिट्टियों में लवणों व क्षारों की अधिकता होने पर मिट्टी ऊसर बन जाती है। अम्लीय या क्षारीय पीएच मान वाली मिट्टी को सुधार कर उन्हें फसल उगाने लायक बनाया जा सकता है। जिन मिट्टियों में जीवांश पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं वह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जीवांश पदार्थ से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में भी सुधार होता है, जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व फसल को आसानी से प्राप्त होने लगते हैं। मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो उपलब्ध जीवांश पदार्थों को ह्यूमस में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। लगातार खेतों से फसलों का उत्पादन लेने के लिए खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी आवश्यक हो जाता है। इन पोषक तत्वों में मुख्य रूप से जो पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश तत्व हैं। इसके साथ ही कुछ सूक्ष्म व कुछ अति सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता फसलों को होती है। कुछ तत्वों के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर पाते। इन तत्वों की कमी होने पर फसल में इन तत्वों की कमी के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं। समय से इन तत्वों की पूर्ति न होने से फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। इन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जैविक खादें ये महत्वपूर्ण हैं। जैविक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, केचुआ खाद आदि खादों के साथ ही जैव उर्वरकों का खेती में प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जैविक खादों के खेती में प्रयोग करने से मिट्टी की जो जीवंतता है वो बनी रहती है, जिससे पौधों को पोषण कराने की प्रक्रिया को गति मिलती है। मृदा में रहने वाले जीवों व सूक्ष्म जीवाणुओं के पोषण व ऊर्जा के स्रोत जैविक खादें ही हैं, जिससे मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या व कार्य क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में जीवांश की पर्याप्त मात्रा मिट्टी की रासायनिक व भौतिक गुणों में सुधार करने का भी कार्य करती हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचार, नमी का लंबे समय तक बने रहना तथा मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जैविक खादों में कार्बन की समुचित मात्रा होने से मिट्टी में जीवाणु की संख्या में वृद्धि के साथ ही फसलों में कीट व रोग भी कम लगते हैं। रासायनिक खादों का खेती में लगातार प्रयोग होने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता बनाए रखने में जैविक खादों का खेती में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैविक खादों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के साथ ही खेत से हम दीर्घकाल तक उत्पादन लेने में भी सफल रहते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैविक खादों में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मुख्य खादें हैं। इस खाद को पालतू जानवरों के गोबर, मूत्र एवं बचे खुचे चारे व उपयुक्त विशाली से बनाया जाता है। उचित आकार के गड्ढों में डालकर इस खाद का निर्माण करने से
इसके पोषक तत्वों में वृद्धि के साथ ही जल्दी खाद बनकर तैयार हो जाती है। जैविक खादों में आज केंचुए की खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट भी

कहा जाता है का निर्माण हमारे किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस खाद का निर्माण कैंचों द्वारा होता है। कैंचुआ खाद निर्माण के लिए गड्ढों की गहराई 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कैंचों को है उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस खाद को बनाने के लिए आसानी से गलने सड़ने वाले पदार्थों को गोबर के साथ मिलाकर इन गड्ढों में भरा जाता है। गड्ढे के आकार के अनुसार इन गड्ढों में कैंचों की मात्रा डाली जाती है। कैंचुआ खाद लगभग 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हो जाती है और तैयार खाद को छानकर कैंचों को खाद से अलग कर फिर से खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है।

0: आवश्यक एंजाइम व हार्मोन भी इस खाद द्वारा खेत में प्राप्त होते हैं। जैविक खादों में जो अब खाद आती है वह है हरी खाद। हरी खाद का कृषि में विशेष महत्व है। हरी खाद वह खाद है जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के बीजों की बुवाई कर फसल की निश्चित जब बढ़वार हो जाती है या फूल आने पर हरी खाद की फसल को उसी खेत में पलटा कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। 10 से 15 दिन में यह जो पौधे पलटाए गए हैं वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। हरी खादों में जो मुख्य खादें हैं उनमें सनई, ढेंचा, मूंग, उर्द, ग्वार, लोबिया, बरसीम व मटर की फसलें हैं। इन हरी खाद की फसलों के जड़ों में वायुमंडल की नाइट्रोजन इकट्ठा करने की क्षमता होती है। इन फसलों की पलटाई करने से इन हरी खादों के पौधों में उपस्थित जो भी पोषक तत्व होते हैं वे खेत की मिट्टी में मिलकर खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कंपोस्ट व हरी खादों के साथ ही सूक्ष्म जैव उर्वरकों का कृषि में आजकल बहुत बड़ा योगदान है। सूक्ष्म जैव उर्वरक सस्ते व प्रयोग करने में भी बहुत आसान होते हैं। इन सूक्ष्म जैव उर्वरकों में नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरकों में राइजोबियम उर्वरक, एजेटोबैक्टर उर्वरक व एजोस्पाइरेलियम जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस तत्व के लिए फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इन जैव उर्वरकों को फसलों के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जैव उर्वरक अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होते हैं। सामान्यतः बोए जाने वाले बीजों में जैव उर्वरक की परत लगाकर बुआई बीजों की जाती है। 1 किलोग्राम बीज में जैव उर्वरक की मात्र 20 से 40 ग्राम मात्रा ही लगती है। रोपाई की जाने वाली फसल के पौधों की जड़ों को रोपाई से पहले इस उर्वरक के घोल में 5 से 7 मिनट डुबाकर उसके बाद उन पौधों की रोपाई खेत में कर दी जाती है। खेती से विभिन्न जैविक खादों के प्रयोग से खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखते हुए किसान भाई बहन वर्तमान समय में खेतों से खाद्य पदार्थों का अच्छा उत्पादन कर भविष्य के लिए भी खेतों की मिट्टी को समृद्ध व स्वस्थ रखकर सतत कृषि उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: मृदा स्वस्थ मृदा हेतु जैविक खादों की उपयोगिता इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री नवीन चंद्र बेलवाल से जानकारी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री U.S. प्रसाद का कर्नाटक शैली में सैक्सोफोन वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर। ये दोनों ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा नवीन बिष्ट और साथियों से कुमाऊनी लोकगीत। युवा साथी युवावाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा समय है अनमोल, खेल जगत और आज का इतिहास भी युवा साथी सुन सकेंगे। शाम 5:45 पर होगा उत्तरायण कार्यक्रम जिसमें चर्चा होगी विश्व एल्बिनिज्म दिवस पर और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा सुनिएगा। शाम 6:41 पर भक्त संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा जिसमें आज सुनिएगा सुरेश वाडकर और कुमार केशव के गाए भक्ति वंदन। संध्या 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें आज की बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षाकालीन चारा प्रबंधन विषय पर। खेती बचाव अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम प्रसारित होगा और चर्चा सुनिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में मसाला फसलों की खेती कर लाभ कमाएं और सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मोटे अनाज

0: अनाज और सब्जी उत्पादन से आय इस विषय पर भूपेंद्र सिंह से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। संगीत के कार्यक्रमों में फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। सुगम संगीत हम लेकर आएंगे सबरस में रात 8:00। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं और श्रोता इस समय सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अभिनेता की जिन्होंने छोटी सी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और शोहरत पाई। जलाल आगा के नाम से हम उन्हें जानते हैं, जिनको लोग मिस्टर हसमुख के नाम से भी जाना करते थे। जलाल आगा को आप याद करें तो शोले फिल्म का गीत ये वाला जो हम आपको सुनवा रहे हैं ज़रूर आपके जहन में आएगा।

जलालुद्दीन साहब का जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ। इनके पिता आगा खुद एक मशहूर कलाकार रहे थे, अपने दौर के चर्चित कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। जलाल आगा फिल्मी दुनिया से क्योंकि ताल्लुक़ रखते थे, उनके पिता फिल्म से ही वाबस्ता थे, इसलिए वो एक्टिंग की ओर झुकाव उनका बचपन से हुआ। लेकिन पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, फिर बाद में जो चाहे करें, इसलिए जलाल को छोटे जब वो थे तभी बोर्डिंग में भेज दिया गया। और जब उन्होंने पढ़ाई की तो होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। जलाल आगा ने सिंधिया स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद एक्टिंग का कोर्स FTII पुणे से किया और शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र।

खुशरो जलाल आगा साहब ने लगभग 80 फिल्मों में काम किया। इनमें बॉम्बे टॉकी, गांधी, डिसीवर्स, सरीखी, विदेशी फिल्में भी शामिल हैं। हिंदी फिल्मों की बात करें तो सारा आकाश, हम तुम और वो, कर्ज, हनीमून, यादों की बारात, दो चोर, मान जाइए, गरम हवा, जूली, घरौंदा, गमन, जुनून, थोड़ी सी बेवफाई, दिल आखिर दिल है, कथा जैसी कई चर्चित फिल्मों में वो बतौर चरित्र अभिनेता नजर आए और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की। जलाल आगा साहब ने निर्देशन में भी खुद को आजमाया। निर्वाण, जो कि साल 1983 में आई फिल्म, ये उनके निर्देशन में बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमोल पालेकर, सारिका टीनू आनंद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। बाद में उन्होंने जूही चावला और कुमार गौरव और बिंजू अली को लेकर एक फिल्म बनाई साल 1989 में। फिल्म का नाम था गूंज और दोनों ही फिल्में लीक से हटकर रहीं पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई।

और 5 मार्च 1995 में जलाल आगा साहब एक जाने माने मशहूर कलाकार इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उनकी अदायगी से सजी फिल्में या फिर उनके निर्देश

एक ही फनकार में आज के फनकार थे मशहूर अभिनेता जलाल आगा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3 और लेकर हम आए हैं सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांती का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, यूं तो हमने फिल्मी दुनिया में कई कलाकार देखे हैं जो या तो गीतकार हैं या संगीतकार या अभिनेता या गायक या फिर नृत्य निर्देशक, यानी किसी न किसी एक क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार हमने देखे हैं, सुने हैं। लेकिन श्रोताओं, ऐसे भी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार हुए हैं, ऐसी शख्सियत हुई है जिन्होंने फिल्मी दुनिया में गीतकार, संगीतकार, नर्तक, नृत्य निर्देशक, अभिनेता, गायक, इन सभी रूपों में

काम किया है और वो जानी मानी शख्सियत हैं प्रेम धवन। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी इस महान कलाकार की आज जन्म जयंती है। उन्हें नमन करते हुए उनके कार्यक्षेत्र के विविध पहलुओं से रूबरू होंगे उनके खूबसूरत नगमों के जरिए। तो आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं, 13 जून 1923 को अम्बाला पंजाब में जन्म हुआ इस हरफन मौला कलाकार का। उनके पिता लाहौर जेल में वार्डन थे, तो बचपन लाहौर की गलियों में गुजरा और जेल में राजनीतिक कैदियों से उनकी मुलाकातें होती रहती थी और इन्हीं मुलाकातों ने उनके युवा जहन में भी सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धता जगाई। वो कॉलेज यूनियन का हिस्सा भी रहे। इसी दौर में उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जुनून जागा, साथ ही लेखन भी शुरू हुआ। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की और आज़ादी की

लड़ाई में पूरी सक्रियता से प्रतिभाग किया। और वो दौर ऐसा था जब उन्होंने बहुत सारे एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गीत लिखे, जिन गीतों ने लोगों के बीच अलख जगाई।

रुदों पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेम धवन जी मुंबई चले गए। मुंबई में जब वो इप्टा के संपर्क में आए तो उन्हें एक ऐसा मंच मिला जहां वो गीत नृत्य और लेखन के जरिए अपने क्रांतिकारी विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते थे। इसी दौरान पंडित रविशंकर से उनकी मुलाकात हुई और प्रेम धवन जी ने उनसे संगीत की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया। इसके अलावा पंडित उदय शंकर और शांति रॉय वर्धन से उन्होंने नृत्य की बारीकियां सीखी। इस तरह लेखन के साथ साथ संगीत और नृत्य में भी पारंगत हो गए प्रेम धवन। उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तो सबसे पहले संगीतकार खुर्शीद अनवर की सहायक के तौर पर काम की शुरुआत की।

तो श्रोताओ, गीतकार के रूप में उनकी शुरुआत की बात करें तो उनकी पहचान बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म, जो कि साल 1948 में प्रदर्शित हुई फिल्म ज़िद्दी से हुई, और उसके बाद आरजू, तराना, हमदर्द, वचन, एक साल, गेस्ट हाउस, सावन, हम हिंदुस्तानी, प्यार का सागर, जबक, काबुलीवाला, 10 लाख, एक फूल दो माली जैसी कितनी ही खूबसूरत फिल्में रहीं जिसमें उन्होंने अपने बेहतरीन गीतों से उन फिल्मों को और भी खास बना दिया।

गीतकार के रूप में तो कामयाबी का परचम उन्होंने लहराया, फिर संगीतकार के रूप में बात करें तो साल 1965 में आई मनोज कुमार की बेहद चर्चित फिल्म शहीद, जिसमें प्रेम धवन ने संगीत दिया और इस संगीत को देने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार जी को ही जाता है। उन्होंने प्रेम धवन की म्यूज़िक के प्रति जो उनकी उनका समर्पण था और उनकी जो नॉलेज थी उसको देखते हुए फिल्म के निर्माता और अपने अच्छे दोस्त केवल कश्यप के आगे ये शर्त रखी कि इस फिल्म में अगर कोई संगीत देगा तो वो होंगे प्रेम धवन। हालांकि प्रेम धवन खुद उनके इस ऑफर पर चौंक गए थे और सोचने के लिए उन्होंने कुछ वक्त भी मांगा, लेकिन मनोज कुमार जी ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अगर वो संगीत देंगे तभी ये फिल्म बनेगी। आखिरकार प्रेम धवन जी को उनकी बात माननी पड़ी और शहीद फिल्म के जो देशभक्ति से ओत प्रोत गाने थे वो इतने खूबसूरत हैं, इतने आप कह सकते हैं कि आज़ादी की बात अगर हम करते हैं तो उस दौर में उन्होंने जो गाने लिखे वो आज़ादी की अलख जगाने के लिए लोगों के दिलों में एक तरह से जोश भर देते थे, ऊर्जा भर देते थे। इसी तरह शहीद फिल्म के जो गाने हैं वो भी हम आज भी सुनते हैं तो देशभक्ति के जज्बे से हर किसी को भर देते हैं।

प्रेम धवन जी ने संगीत के विविध आयाम अपने फिल्मों में दिखाए, और हम बात करें तो जिंदगी के हर रंग उनके संगीत में या उनके गीत में समाहित रहे। पवित्र पापी फिल्म में भी प्रेम धवन का संगीत था जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा, और अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बात हो या फिर शास्त्रीय संगीत की बात हो या फिर सुगम संगीत की, हर तरह के संगीत की उन्हें इतनी अच्छी नॉलेज थी कि हम उनके गानों में उनका अक्स देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।

एक संगीतकार के रूप में रात के अंधेरे में सवा लाख से एक लड़ाऊं, भगत, धन्ना जट, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद, नानक दुखिया सब संसार, पवित्र पापी, शहीद वीर अभिमन्यु, आधी रात के बाद, हिंदुस्तान हमारा, भारत के शहीद, जैसे कई फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज में उन्होंने अपना बेहतरीन संगीत दिया। और उनके एक अलग आयाम की बात करें और वो है नृत्य से जुड़ा हुआ, तो नया दौर फिल्म का सुपरहिट सदाबहार गाना आपको ज़रूर याद होगा, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। इस गाने में जो डांस स्टेप्स और जो अदाएं दिखाई गई थी उनकी दीवानगी आज भी बरकरार है, और इस गाने की कोरियोग्राफी की प्रेम धवन ने। इसके अलावा दो बीघा जमीन का गाना हरियाला सावन ढोल बजाता आया हो, या फिर 1950 की फिल्म आरजू, या धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई और वक्त जैसी फिल्मों में भी उनके नृत्य निर्देशन का जलवा नजर आया।

साल 1970 में भारत सरकार ने प्रेम धवन जी को पद्मश्री से सम्मानित किया। साल 1971 में फिल्म नानक दुखिया सब संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला था।

0: तो श्रोताओं, बोले पपी है बोल रे आरजू फिल्म का गाना हो, तराना फिल्म का सीने में सुलगते हैं अरमा, वचन चंदा मामा दूर के, दिन हो या रात हम हैं तेरे साथ मिस बॉम्बे, जिंदगी भर गम जुदाई का मिस बॉम्बे, छोड़ो कल की बातें हम हिंदुस्तानी, बड़ा आदमी अखियन संग अखियाँ लागी, ऐ मेरे प्यारे वतन काबली वाला, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, जबक महलों ने छीन लिया बचपन, जबक फिल्म, ऐ वतन शहीद, मेरा रंग दे बसंती चोला, जैसे कई गाने हैं जो उनके द्वारा, चाहे वो संगीतबद्ध किए हो चाहे वो लिखे गए हों, वो गाने हमेशा हमें, आज भी हम सुनते हैं तो तरोताज़ा कर देते हैं। ये हरफन मौला कलाकार 7 मई 2001 को इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गया और छोड़ गए अपने ढेर सारी उपलब्धियों के वो विरासत को, जिन्हें याद कर हम हमेशा इस महान शख्सियत के आगे सजदा करते रहेंगे।
1: तू कौन है? परी। बोल कहां से आई है?
2: आसमान से।
1: दिल का हाल बताएगी?
2: बताऊंगी।
1: जादू जरा दिखाएगी?
2: दिखाऊंगी।
1: तो बता क्या कहती शहजादे की तकदीर?
2: अरे वाह वाह वाह वाह, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल।

श्रोता भी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति

0: के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने छठे ओवर में एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शेल्फर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नवीन बिस्ट और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

शैलेश्वर का लिखा मिश्र तो आज आप सुन रहे थे। नवीन बिष्ट व साथी वगैरह ये कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से, हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात्रि 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती रिले किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम है सायं 6:41 पर कलाकार होंगे सुरेश पाटेकर और कुमार केशव। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी आज सायं 7 बजे, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सरकार के 12 वर्ष मोटे अनाज व सब्जी उत्पादन से आय विषय पर भूपेंद्र सिंह से की गई भेंटवार्ता। फिल्म संगीत आप सुनेंगे आज सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 6:50 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ। लोकमंजरी कार्यक्रम में कल प्रातः 7:30 पर कलाकार होंगे कल्याण बोरा। बच्चे अपने कार्यक्रम सुनेंगे बाल वाटिका कल प्रातः 8:30 पर, जिसमें कल चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, महारानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस 17 जून, मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने का विश्व दिवस 15 जून। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्देश का समय रहेगा कल प्रातः 9:05। सबरंग कार्यक्रम में कल प्रातः 10:05 पर कलाकार होंगे मेहंदी हसन, चंदन दास और आशा भोसले। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 11 बजे। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 11:30 पर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर संसार कल दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर कलाकार होंगे मिताली सिंह, चंदन दास, शान, सागरिका और अभिजीत। एक अनमोल हिमरत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व पर आधारित प्रफुल्ल जोशी का लिखा ये रूपक हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2 बजे। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें कल दोपहर 2:30 पर। एक ही फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:45 पर। और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 3 बजे। हमारी सायंकालीन सभा में कल सायं 5:05 पर शैलेश्वर कार्यक्रम में कलाकार होंगे कल्याण बोरा। युवा साथियों कार्यक्रम होगा युवा वाणी कल सायं 5:15। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा कल सायं 5:45। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल सायं 6:41 पर कलाकार होंगे दीपन नारायण और मुकेश। कृषि समृद्धि किसान भाई सुनकर ये कार्यक्रम कल सायं 7:15 पर। कल की जानकारी का विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों का प्रबंधन। जानकारी देंगे श्री मनोज भट्ट और संचालन करेंगी श्रीमती रेणु सनवाल। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा कल रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में कल रात्रि 9:15 पर।
सुगम संगीत आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर और रविवासी संगीत सभा कल रात 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा की शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र पवन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, नई नई बातें और कुछ खास पेशकश। तो साथियों, आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम आज की बात में बातचीत करेंगे समय है अनमोल विषय पर। साथ ही इस विषय पर आप सुनेंगे पीएचडी स्कॉलर नेहा पंतोला के साथ हमारी भेंट वार्ता। उसके बाद अंक विशेष के अंतर्गत खेल जगत और अंत में इतिहास के पन्नों से आप जानेंगे आज का इतिहास। और दोस्तों, बातचीत व जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी चलता रहेगा, जहां हम आपको सुनवाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु की बात की जाए तो वह है समय। धन, पद और प्रतिष्ठा तो खो जाने के बाद पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय को जीवन की सबसे अनमोल पूंजी कहा गया है। साथियों, समय एक ऐसा शिक्षक है जो हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है। यह न किसी के लिए रुकता है और न ही किसी का इंतजार करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान कर

0: करना सीख लेता है, सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। वहीं जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवा देता है, वह अक्सर अवसरों से भी वंचित रह जाता है। दोस्तों, आज का समय प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती तकनीक का समय है। ऐसे समय में समय का सदुपयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विशेष रूप से युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने समय का सही नियोजन करें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें, क्योंकि युवावस्था में किया गया परिश्रम और समय का सही निवेश ही भविष्य की मजबूत नींव तैयार करता है। साथियों, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। कई बार हम केवल कुछ मिनटों के लिए ही मोबाइल उठाते हैं और देखते ही देखते काफ़ी समय बीत जाता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक का उपयोग अपने विकास और ज्ञानवर्धन के लिए करें, न कि उसे अपने समय पर हावी होने दें। तो साथियों, बातचीत के इसी क्रम में आज का हमारा युवा वर्ग समय को लेकर अपने क्या विचार रखता है और कैसे अपने समय का प्रबंधन करता है, इसे जानने समझने के लिए आइए सुनते हैं हमारी युवा श्रोता नेहा पंतोला के साथ हमारी ये खास बातचीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से वनस्पति विज्ञान विभाग की रिसर्च स्कॉलर नेहा पंतोला जी। तो नेहा जी, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में।
0: जी नेहा जी, कार्यक्रम में आज हम आपसे समय के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि समय बहुत अनमोल है, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि समय को इतना अनमोल क्यों माना गया है?
1: मेरा मानना यह है कि समय को इसलिए अनमोल माना गया है क्योंकि उसे खरीदा नहीं जा सकता, ना ही हम उसका कोई मोल भाव कर सकते हैं। और जिस चीज का आप मोल भाव नहीं कर सकते, जिस चीज को आप तोल नहीं सकते हैं, उस चीज को आप हमेशा अनमोल ही कहेंगे। समय की कीमत हमारे लिए सबसे ज्यादा अमूल्य है, तो इसलिए समय को अनमोल माना गया है।
0: जी बिल्कुल नेहा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और वास्तव में समय एक ऐसी चीज है जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आज के तेजी से बदलते दौर में समय का सदुपयोग बहुत जरूरी हो गया है, तो आपके अनुसार समय का सदुपयोग किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है?
1: हमें अपने आप को व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर सफलता हासिल करनी है, अगर हमें बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है, नामचीन जितने भी लोग आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि इस लिस्ट में रतन टाटा हैं, अंबानी जी हैं, आज वो सब इतने बड़े इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने टाइम की कीमत को समझा है, एक प्रॉपर टाइम टेबल से वो लोग चले हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर तभी आप उसे ला पाएंगे जब आप उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे।
0: जी बिल्कुल नेहा जी, बहुत ही उपयोगी बात आपने हमारे साथ साझा की है। तो नेहा जी, अगर हम बात करें हमारे युवाओं की, तो युवा वर्ग के संदर्भ में समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब उनके सामने पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी अनेक चुनौतियां होती हैं।
1: कल सबसे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि युवा वर्ग इस चीज को समझने तो लग गया है टाइम मैनेजमेंट को, कि टाइम मैनेजमेंट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि युवा वर्ग टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से वो जान रहा है और उसका प्रबंधन भी कर रहा है। कोई यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर देते, बहुत कम एज में उन्हें रियलाइज हो जाता है कि हमने किस फील्ड में जाना है, और उस फील्ड में जाने के लिए वो लोग उसी तरीके से अपने को ढालना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से वो अपना टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब एक इंसान में ये सारी चीजों का साहस आ जाता है कि मुझे ये सारी चीजें ऑन टाइम करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही समय पर अपनी पढ़ाई या उसका जो करियर है, जिसको भी व्यक्तिगत जीवन है, वो उसको सुधार ले।
0: जी तो नेहा जी, अगर हम इसके दूसरे पहलू की तरफ चलें, तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने जहां अनेक अवसर प्रदान किए हैं, वहीं समय की बर्बादी की समस्या भी कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो इस स्थिति को आप किस प्रकार से देखती हैं?
1: आई थिंक जो लोग उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका तो टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। जो वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी सारे प्रदान किए गए हैं, वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग उसे बहुत अच्छे एक्सपेक्ट में यूज कर रहे हैं, बट उन लोगों के लिए खराब है जो उसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे।
0: तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज है, अगर हम सोशल मीडिया की

0: बात करें तो उसके फायदे भी हैं और अपने आप में उसके नुकसान भी हैं, बशर्ते इंसान को उसका फायदा और नुकसान पता रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो नेहा जी, एक शोधार्थी के रूप में आपने अपने जीवन में समय प्रबंधन को किस प्रकार से अपनाया है?
1: मेरा ये मानना है कि जो मेरी एकेडमिक लाइफ है उस पे मैं पूरा नियंत्रण करके रखती हूँ कि मुझे कब कौन सी चीज करनी है, क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ इस चीज में कि मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने टाइम को आप सही समय पर अगर पहचान ले कि कब आपने कौन सी चीज में एंटर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी लोगों को सही समय पर पहचान लेना चाहिए कि आपको कौन सी चीज कब लेनी चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद आपके पास बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, आपके अंदर बहुत सी चीजों का करने के लिए वो ज़ील, वो जो पावर और जो एंथुसियाज्म होता है वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो मुझे लगता है कि समय रहते अगर आप उस चीज को कर लें तो आपके अंदर जोश भी बरकरार रहेगा और आपकी तिथि जो है वो भी नियंत्रित हो जाएगी।
0: निश्चित रूप से नेहा जी, जैसे कि आपने बताया कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और कहीं ना कहीं ये हर इंसान के लिए भी जरूरी है कि वह अपने काम को लेकर, अपने टाइम को लेकर हमेशा पंक्चुअल रहे, तभी वह लगातार उन्नति की ओर जा सकता है। तो नेहा जी, अंत में हमारे कार्यक्रम के माध्यम से समय है अनमोल विषय के संदर्भ में आप हमारे युवा श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं अपने युवा श्रोता को यही कहना चाहूंगी, समय को जब आप अपने जीवन पर उतारेंगे और आप उसका सही तरीके से नियंत्रण करना जानेंगे तो तब वो चीज आपके लिए खुद ब खुद अनमोल हो जाएगी और आप उसका खुद से मूल्यांकन करना शुरू करेंगे कि आप कहाँ पर अच्छे हैं और कहाँ पर गलत है।
0: जी बिल्कुल, आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं और निश्चित रूप से आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है। तो नेहा जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समय है अनमोल विषय पर युवा श्रोता नेहा पंतोला के साथ हमारी भेंटवार्ता। और कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत और गीत के उस पार खेल जगत।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में। कार्यक्रम में अंक विशेष के अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं खेल जगत की, जिसमें आप जानेंगे बीते सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरों के बारे में। साथियों, हाल ही में भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में 4 एशियाई खेल स्वर्ण पदक और 15 राष्ट्रमंडल खेल पदक जीते हैं। उन्हें वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथियों, हाल ही में 11 जून को वार्षिक अपडेट के बाद भारत ने 118 अंकों के साथ आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, बेंगलुरु की सृष्टि किरण लगातार 5 ITF जूनियर टाइटल जीतने और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 ग्वाटेमाला में उप विजेता रहने के बाद दुनिया की नंबर 1 अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। अगली खबर की बात करें तो भारतीय एथलीट शैली सिंह ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिला लंबी कूद स्पर्धा में 6.24 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, हाल ही में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने इटली के फ्लेवियो कुबोली को फाइनल में हराकर रोलेंड गैरोस में फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता है। इससे पहले वह 2020 में यूएस ओपन, 2024 में फ्रेंच ओपन और 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में उपविजेता रहे थे। तो दोस्तों, खेल जगत में आज के लिए इतना ही और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे लेकर आज का इतिहास।
1: देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण
3: के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
4: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
5: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी अपने रेडियो मित्र पवन के साथ। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज यानी 13 जून का इतिहास। साथियों, 13 जून सन 1420 में आज ही के दिन खिलजी प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसके साथ ही गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ था। साल 1940 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई। 13 जून सन 1943 में इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे थे, और साल 1993 में आज ही का वो दिन था जब किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। दोस्तों इसी के साथ इतिहास में आज के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ था। आइए जानते हैं। 13 मई वर्ष 2016 में भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का निधन हुआ था। और 13 मई सन 2012 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गजल गायक मेहदी हसन का निधन हुआ था। अब एक नज़र आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर प्रसिद्धि हासिल की। साल 1994 में 13 जून के दिन भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का जन्म हुआ था। और 13 जून सन 1923 को आज ही के दिन हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये थी देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बारी होगी आज के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले ये खासम खास गीत आप सबके लिए।

0: वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज के प्रश्न का। जी हाँ साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम से जुड़ा आज का प्रश्न। लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और सही उत्तर बताने वाले श्रोता साथियों के नाम हम साझा कर रहे हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 जून को। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें भेजा है वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल, सुषमा और मायरा सुरोशे ने। गुजरात गांधीग्राम से हमें उत्तर भेजा है प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा ने। ग्राम नागर कोहरा से बबलू, जामुन और बेबी आराध्या ने। गुमला झारखंड से एसएम जावेद ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निघत और उनके अन्य साथियों ने। दोस्तों, इसी के साथ अब प्रस्तुत है हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, दिवंगत भारतीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक जसपाल राणा का संबंध किस खेल से था? प्रश्न एक बार फिर से, दिवंगत भारतीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक जसपाल राणा का संबंध किस खेल से था? इस प्रश्न का सही उत्तर हम अपने कल के संस्करण में आपको बताएंगे। तब तक आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर हमें ज़रूर भेजें हमारे कार्यक्रम के व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। और श्रोताओं, इसी के साथ अब

समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। अभी अपने दोस्त पवन को दीजिए अनुमति, कल फिर आपसे होगी मुलाकात युववाणी कार्यक्रम के एक और नए संस्करण के साथ। और चलते चलते आप सभी से कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी और साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभी श्रोता लोगन के नारायण दत्त पाठक है नमस्कार। श्रोताओं दुनिया में अनेक प्रकार के रंग प्रकृति हमन के दी राखी और भगवान ने सृष्टि में बहुत सारे जो त्वचा होनी उना रंग ले हुई जानवर नख हो अन्य जीव जंतु हो पक्षी हो सब ने पास एक त्वचा हो और वही त्वचा अलग अलग रंग हुई। अगर हम मनखिने की बात कर लूँ तो मनखिना त्वचा द्वारा उनर अनेक प्रकारक जो ऐतिहासिक विवरण से उगेले लोग प्राप्त कर लेनी त्वचा रंगेल बहुत कुछ जानकारी हासिल ले सकें। ये सके त्वचा जहाँ मन की खूबसूरती का बढ़ूँ वह त्वचा में जब कति कोई गड़बड़ी आ जाए कोई रोगग्रस्त त्वचा है जाए तो मन की खूबसूरती के बिगाड़ ले दी। लेकिन दुनिया में हर रंग अपन अपन एक महत्व हों और हर रंग अपन जाग में एक सुंदरता के लिए हों। हमारे समाज में हमारे मन की जो जीवन छे उसमें कुछ लोग के एल्बिजिने नामक एक रोग है सकें जो कि आनुवंशिक में नहीं जा सके हम रंगहीनता को नूँ। एल्बिनिज में जो ग्रसित लोग होनी वो एक दुर्लभ गैर संक्रामक और आनुवंशिक स्थिति मानी जाए जो जन्म बटी कह जाए। ये कारण शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंट कमी है जाए जै कारण बाव सफ़ेद होनी और त्वचा का रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद हों आँखना का रंग बहुत हल्क या पिंगो अनेक प्रकार देखने ते मिलें जै कारण वो समाज में और लोग हबेर कुछ हेडबेर देखेंगे। ये जो सामाजिक जो भेदभाव कति कति उनार दगाड़ है जहाँ त्वचा के रंग ना कारण वो भेदभाव के मिटोना के लीजिए बहुत भल एक शुरुआत करी ये मानवाधिकार आयोग ने तरफ बटी और आज के दिन के पूरे दुनिया में विश्व रंगहीनता दिवस मनोना एक शुरुआत करी ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर सन 2014 के एक प्रस्ताव पारित करी गो जय आधार पर 13 जून के यो दिवस मनोने घोषणा करी गई। यो दिवस मनोना का मुख्य उद्देश्य छ कि जो रंगहीनताल जो पीड़ित व्यक्ति होनी उनार प्रति सामाजिक भेदभाव और रूढ़िवादिता बटी उनके मुक्त धरी जाओ और

समाज में एक सम्मानजनक जीवन वो सब पीड़ित लोग ले जी सकूँ, किले की जीवन अमूल्य हो और हर व्यक्ति अपूर्ण शरीर दगड़ अपूर्ण त्वचा दगड़ प्रेम हो, तो हर व्यक्ति के जब जीवन जीना का अधिकार छे तो सपना के प्रति समान भाव धारण हर मन की कर्तव्य ले बने। कार्यक्रम में हम अपन तक गिल के बातचीत करते रहन एल आपके सुन लग रहे हैं शंकर उप्रीतिक सर में एक कुमावनी लोगी।

0: श्रोताओं को शरणागराचार्य शंकर उप्रेत ईश्वर में कुमावनी लोकगीत।
1: चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपन सुनला एक गढ़वाल लोकगीत। गायक कलाकार छन नरेंद्र सिंह नेगी और अनीता कंडारी।

श्रोताओं, आपने सुना नरेंद्र सिंह नेगी और अनीता कंडारिक स्वर में गढ़वाल लोकगीत। श्रोता, कोयले देशक विकास उद्देशक सरकार पर निर्भर करें। अगर सरकार स्थिर हो, स्थायी रूप में लगिल कर बढ़े, तो निश्चित तौर पर देशक दिन पर दिन विकास बढ़ते रहें। अगर सरकार कुछ वर्षनाक बाद बदई तेरों, तो सरकार जो प्रतिनिधित्व व पार्टी होनी उनर काम करना जो ढंग हो, वही कारण कति न कति विकास में कुछ बाधा आ जाए। हमारे भारत देश में ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 26 मई 2026 के देशक सेवा 12 गौरवशाली वर्ष पूर कर रखी। यू 12 वर्षों में भारत बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण जैक अंतर्गत जनधन, शौचालय, आवास शामिल छन, और वी के अलावा वैश्विक स्तर पर भारतक छवि के एक बहुत भल रूप में स्थापित करण में मददगार रही छन। यूँ सब बदलाव यूँ 12 वर्षन में देखने के लिए मिली हुई छन। अगर हम यूँ 12 वर्षन के उपलब्धिन के देखनो, तो यनन में कुछ ऐतिहासिक या फैसले ले रही जनन के देश के बहुत सालन बेटी इंतजार ले छी। संविधानक अनुच्छेद 370 के समाप्त कर वीर व एक चुनी हुई सरकार बनी हुई छे, और 3 तलाक उन्मूलन और GST के लागूकरण, गरीब कल्याण के अंतर्गत 12 करोड़ है ज़्यादा शौचालय नग निर्माण, जनधन खाता और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा प्रदान करण, अवसंरचना विकास अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, एक्सप्रेस वे और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नग निर्माण शामिल छन। युवा सशक्तिकरण क्षेत्र में यूँ 12 सालन में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम युवाओं के सक्रिय भागीदारी निर्धारित करी जा रहे। वैश्विक शाख में बढ़ोतरी करना लीजिए 140 करोड़ भारतीय ने सेवा के वैश्विक पटल पर भारत एक यश चित्र प्रस्तुत करी जा रहा, जैमें कि भारत तक बदलती हुई तस्वीर दिखी जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ बहुत

शहीद गेल कार्रवाई यो 12 वर्षों में करी गई। जेल भारत जो विकासक दर छी, विकासक जो रफ्तार छी, वो ले गिल के अपू आप बढ़ते जान लग रहे, और दगाड़ में जो आर्थिक विकास वो ले अगिल के बढ़ते जान लग रहे। अगर हम खास तौर पर यूँ 12 सालनक भीतर भारत में ही बदलावन के विशेष तौर पर देखना चाहूँ, उनके गिनना चाहूँ, तो वो छन अनुच्छेद 370 समापन, महिलाओं के 33% आरक्षण, नोटबंदी फैसले, जीएसटी जैक अंतर्गत एक देश एक टैक्स प्राविधान, 3 तलाक बटी मुक्ति लीजिए कानून, अग्निपथ योजना जैमें सेना में अग्निवीर भर्ती मॉडल के बढ़ाई गो, भव्य राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, डिजिटल इंडिया जनधन खाता के माध्यम लोगन के सिद्ध बैंकिंग दगे जोड़न, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम आतंकवाद और विदेशी जो दुश्मन से उन्हन पर प्रहार, सवर्णों के आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण प्राविधान, नई शिक्षा नीति और नई कानून, शिक्षा और कानून व्यवस्था में बहुत ठुल बदलाव, और ये के अलावा कुछ जो पुराण बहुत पहली बटी अंग्रेज ना बखत बटी चली हुई कानून बनी हुई थी, नियम बनी हुई थी, जनर आपको औचित्य नहीं रह गई थी, उनर कोई प्रयोग नहीं होने लग रहा थी, वो सब कानून उनके बधाई खत्म करण और उनार जाग पर एक भल कानून ने व्यवस्था करण। तो ये प्रकार सरकार द्वारा ली गई जो फैसले 12 साल में आई, उनार माध्यम भारतक जो विकासक गति थी वो बेहतर आज देखने में होने लग रहे, और उम्मीद करी जान से कि अगर ये सक विकास होते रहो तो हमारे देश निश्चित तौर पर एक दिन विकसित राष्ट्र रूप में पूरी दुनिया में जानी जाल। कार्यक्रम में हम अपन दगे गिल का बातचीत करते रहूँ, एल आपको सुन लग रहा एक कुमावनी लोकगीत गायक कलाकार छन शेर सिंह रावत।

0: श्रोताओं आपने सुनना ग्राचा कुमावनी लोकगीत शेर सिंह रावत अक्षर में।
1: शिक्षा का सपना रह गया अधूरा तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: श्रोताओ आप कार्यक्रम में हम आपको सुन लग रहे हैं एक गढ़वाल लोकगीत, गायक कलाकार छन अनिल भारती।

0: छम बजनी बोली, छम छम बजनी बोली, छम छम बजनी बोली।
1: श्रोताओ आपू सुन लागरा छे अगड़वेल लोकगीत, गायक कलाकार छी अनिल भारती।
2: देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: श्रोताओ मनखीक जो सामाजिक स्थिति छे उसमें एक भल जीवन यापन करना लीजिए मनखीक है मूलभूत आवश्यकता जो होनी ओछन रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा अगर मनखीक अति बेटी जुटा ले ली तो कहें अपन खर ढकना लीजिए मकान एक जरूरत पड़े। बहुत सारे लोग हमारे देश में आज ले युग स्थिति में जीवन यापन करने लग रही जिन्हें पास अपन खर ढकना लीजिए पक्का मकान नहीं। यूं सब लोगों के ध्यान में धरवीर कि लगी हमारे देश में जो चयनित सरकार हुई यो जिम्मेदारी बने कि अपन देशक नागरिक ने एक मूलभूत आवश्यकताओं पूर्ति लीजिए वो काम करो। तो यूं सब लोगों के जिन्हें पास अपन घर नहीं है या जिन्हें पास अपन पक्क घर नहीं है उन लोगों के मकान देना लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करिए। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वि प्रकार से, एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हम बात करनो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अखबार में। यो भारत सरकार एक बहुत भल कल्याणकारी योजना छे जैक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रोने वाले परिवारों के बुनियादी सुविधाओं युक्त पक्क घर उपलब्ध कराना है। ये एक तहत लाभार्थियों के घर बनाने लीजिए वित्तीय और अन्य सहायता दी जाए। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मैदानी इलाकन में घर बनाने लीजिए 1,20,000 रुपये और पर्वती जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ घर बनाना लीजिए 1,30,000 एक वित्तीय सहायता यो योजना तहत दी जाए। यो राशि सिद्ध लाभार्थी बैंक खाते में किस्तन में ट्रांसफर करी जाए। ये के अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण लीजिए 12,000 एक अतिरिक्त धनराशि ले लाभार्थी के प्रदान करी जाए। और दगाड़ में रोजगार सहायता ग्रुप में मनरेगा के तहत लाभार्थी के घर निर्माण के लिए 90/95 दिनों अकुशल मजदूरी के लाभ ले अलग बटी दी जा। ये के अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन के लिए सुविधा प्रदान करी जाए। योजना लीजिए लाभार्थी के चयन वर्ष 2011 सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना बटी प्राप्त डाटा का आधार पर करी जा। जो परिवार ने पास पक्का घर नहीं हों जो बेघर छन वो एक पात्र होनी और परिवारक सदस्य कोई ले अगर नौकरी नहीं करें तो उनके यो घर प्रदान करी जाएंगे। तो कार्यक्रम में अब हम जने जने आपको को सुन लग रही हैं एक कुमाऊनी लोकगीत, गायिका छे वीना तिवारी।
2: वियतनाम देश

श्रोता बीना तिवारी गाई यो कुमाऊनी लोकगीत अगर हमारा आजक उत्तरायण कार्यक्रम आप संपन्न हो भो आप के फिर भेंट हुई तत्पकागली जी नारायण दत्त पाठक के आज्ञा दियो नमस्कार। थोड़ी देर में आप सुनला हमारे देहरादून केंद्र बटी उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को मिले 481 युवा अधिकारी, पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी हुए शामिल। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत देहरादून में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सैन्य बैंड की गूंज, अनुशासित कदम ताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और गौरवपूर्ण बना दिया। इस वर्ष की परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैडेटों का सफलतापूर्वक पास आउट होना रहा। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो महिला नेतृत्व वाले विकास और सशक्त भारत की अवधारणा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। एक रिपोर्ट।
1: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 16 मित्र राष्ट्रों के 34 कैडेट हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार अकादमी से पुरुष कैडेट्स के साथ 9 महिला कैडेट्स भी पास आउट हुई। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान, साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। उन्होंने पहली बार पास आउट हो रही महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए इसे देश में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम बताया। श्रीमती मुर्मू ने अधिकारी कैडेट्स से बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन सीखने, साहसिक निर्णय लेने और नैतिक नेतृत्व का परिचय देने का आह्वान किया। पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: कैबिनेट मंत्री और पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने पौड़ी में आपदा प्रबंधन कार्यों, आगामी मानसून की तैयारियों और नीलकंठ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले में आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अलर्ट मोड में रहते हुए आपदा पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी भी आपात की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
2: आज मैंने पौड़ी जिले की आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक की है जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपदा की दृष्टि से, आपदा से पहले हमें उनकी तैयारी करनी है, उस पर भी मैंने विस्तृत चर्चा की है और उन सारी जगह भी डीएम को निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल आपदा से पहले वहाँ क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है उसको करिए। तो मैं समझता हूँ कि पौड़ी में आज सारे जिले को लेकर जो बैठक की है, निश्चित रूप से सभी अधिकारी समन्वय के साथ ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आपदा की दृष्टि से पूरी एकदम मेहनत के साथ, जनता के साथ, जब कोई घटना घटती है उसके साथ खड़े रहें, ऐसा सबको आह्वान किया।
0: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर के कंडार कुआं मंडल के अंतर्गत सुनियाकोट मटीला मोटर मार्ग से ओरिया गांव तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबे मार्ग निर्माण कार्य का

0: शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि औलिया गांव के लिए मोटर मार्ग निर्माण ग्रामीणों का कई दशकों पुराना सपना था, जो आज साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क स्थानीय मातृशक्ति और ग्रामीणों के जीवन को सरल बनाने के साथ साथ क्षेत्र के विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत आज देहरादून में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होंने मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को SIR अभियान की जानकारी देंगे तथा पात्र नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रेरित करेंगे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. चौहान ने जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 6,60,000 से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, साथ ही गणना प्रपत्रों के संकलन और डिजिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से जारी है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने BLO को सहयोग करने की अपील की, ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण और अद्यतन कार्य समय से पूरा किया जा सके।
2: जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है, और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है, और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है, तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें।
0: कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने आज जखोली में आयोजित जनकल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित जनकल्याण शिविर में उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। श्री जोशी ने कहा कि जन कल्याण शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है, जिससे आमजन को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने और पात्र व्यक्तियों को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
3: हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं, और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया, अभी 10 बाकी हैं। और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने यहाँ पर जवाब दिए, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निर्णय ना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से करती है।
0: शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। हरिद्वार जिले में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि इस प्रशिक्षण में आपदा मित्रों और ग्रामीण स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, खोज व बचाव, बाढ़ प्रबंधन, जल जनित आपदाओं से निपटने और वाटर रेस्क्यू की सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों की क्षमता का विकास करना है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वे प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को मिले 481 युवा अधिकारी, पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी हुए शामिल। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत देहरादून में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं सुरेश वाडेकर का गाया ये भजन।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अभियान लगातार जारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सैन्य बैंड की गूंज, अनुशासित कदम ताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोह पूरा वातावरण ते भावनात्मक और गौरवपूर्ण बने। ये साल परेड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 9 महिला कैंडिडेट्स को सफलतापूर्वक पास आउट होने रहे। भारतीय सैन्य अकादमिक इतिहास में यू एक ऐतिहासिक पड़ाव च महिला नेतृत्व वाला विकास और सशक्त भारत को अवधारणा नई ऊर्जा प्रदान कर दू। एक रिपोर्ट।
2: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्सन अंतिम पग पार कैरी सेना अधिकारी बनने को गौरव प्राप्त कैरी। ये मां 16 मित्र राष्ट्रों का 34 कैडेट छन जो अपना अपना देशों की सेनाओं में शामिल होला। परेड को निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में कैरी। ये अवसर पर राष्ट्रपति ने बोली कि भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान साहस और राष्ट्र सेवा को प्रतीक छे। उन पहली बार पास आउट होनी महिला कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी का इतिहास को महत्वपूर्ण पड़ाव बताउंदी। ये ते देश में महिला नेतृत्व वाला विकास की दिशा एक प्रेरक कदम बताए। श्रीमती मुर्मू ने अधिकारी कैडेट से बदलती सुरक्षा चुनौतियों का बीच आजीवन सीखन, साहसिक निर्णय लेन और नैतिक नेतृत्व को परिचय देने को आह्वान कैरी। पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि का दौरान समग्र उत्कृष्टता खुणी प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान करे गए। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविन्द्र सिंह।
1: कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिला का प्रभारी मंत्री गणेश जोशी आज जोखोली में आयोजित जन कल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में गांव वालों की समस्याएं सुनी। केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूर्ण होने का अवसर पर आयोजित जन कल्याण शिविर उन क्षेत्रीय जनता दगड़ी सीधा संवाद करी। उन बोली कि केंद्र और राज्य सरकार को उद्देश्य अंतिम व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति तक विकास योजनाओं को लाभ पहुँचाउण च। श्री जोशी बोली कि जन कल्याण शिविरों को माध्यम से सरकार जनता का द्वार पहुंची की उनकी समस्याओं को समाधान करनी च जहाँ से आम जन को विभिन्न कार्यालयों को चक्कर नहीं लगाउन पड़लो। उन अधिकारियों ते जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता का दगड़ी निस्तारण कर और पात्र व्यक्तियों ते सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिनी।
3: हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया, अभी 10 बाकी हैं। और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने यहाँ पर जवाब दिए, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निर्णय ना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही
1: है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन आज अल्मोड़ा जिला में सोमेश्वर का कंडारा कुआं मंडल के अंतर्गत सुनायक कोट मटीला मोटर मार्ग बटिन ओलिया गांव तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबी मार्ग निर्माण कार्य को शुभारंभ करी। ये मौका पर कैबिनेट मंत्री ने बोली कि ओलिया गांव का वास्ता मोटर मार्ग निर्माण गांव वालों की कई दशकों पुरानी सपनी छो जो आज सरकार साकार होने जाणु छ। उन बोली कि 77 लाख रुपये की लागतन बनाने वाले यू सड़क स्थानीय मात्र शक्ति और ग्रामीणों को जीवन ते सरल बनाने का दगड़ा दगड़ी क्षेत्र को विकास ते भी नई गति प्रदान करेली। उन बोली कि प्रदेश सरकार प्रदेश का अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधा पहुंचाना ते प्रतिबद्ध। ये अवसर पर बड़ी

0: खेमा स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताई।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: देहरादून जिला प्रशासन गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चों ते निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल करी च। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान इन बच्चों ते चिन्हीकरण और उपचार की प्रक्रिया ते प्राथमिकता का आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया छन। उन बाल विकास विभाग का जिला कार्यक्रम अधिकारी ते 6 वर्ष तक की आयु का बच्चा और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ते 6 से 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा और किशोरों को चिन्हीकरण करने का वास्ता विशेष अभियान चलाना को निर्देश दिया छन। जिलाधिकारी ने बोली कि जिला में कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव का कारण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन संबंधित अधिकारियों ते निर्देशित करी कि इन बच्चों की पहचान कनक उनकी जानकारी शीघ्र उपलब्ध करे जो ताकि उते समयबद्ध उपचार प्रदान करे जा सकूँ। जिलाधिकारी ने बताई कि चिन्हित बच्चों को उपचार केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का तहत निःशुल्क करे जालू। यहाँ का अलावा जो गंभीर बीमारियों को उपचार ये कार्यक्रम का तहत संभव नहीं होलू उनका उपचार का वास्ता अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और राइफल फंड का उपयोग करे जालू जैसे बच्चों ते बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जा सकू। पौड़ी जिला में अतिक्रमण का खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी च। ये क्रम में यमकेश्वर तहसील का तहत गरुड़चट्टी बटे लक्ष्मण झूला तक जिला प्रशासन और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम को संयुक्त दलन विशेष अभियान चलेगी। सार्वजनिक भूमि और मार्ग क्षेत्र के गिन 13 अस्थायी अतिक्रमण हटाई। वकील लंसडाउन तहसील का ग्राम सुरड़ स्थित गमूर तोक मां राजकीय भूमि पर करेंगे द्वि अवैध कब्जों ते हटेंगे। यहाँ का अलावा कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में भी 12 चिन्हित अस्थायी अतिक्रमण ते हटेंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बोली कि सरकारी भूमि जनहित की संपत्ति च और यहाँ का संरक्षण का वास्ता प्रशासन पूरी गंभीरता का दगड़ी काम करनी च।
2: हम लोगों ने बैठक भी करी थी सभी SDMs के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में और सभी जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे NHPWD आदि सबके साथ में। तो उसमें यही निर्देशित किया गया था कि पूरी तैयारी के साथ में जो चिन्हित अतिक्रमण है उसको भी हटाएं और जो नए अतिक्रमण इस बीच हो गए हैं उसको भी चिन्हीकरण तथा हटाने की कार्रवाई की जाए। तो उसके क्रम में अभी लगातार पूरे जिले भर में अभियान जारी है और इसमें कोटद्वार में काफी अतिक्रमण हटाए गए हैं, साथ में रिखणी खाल में भी काफी सारे अतिक्रमण मुक्त किए गए हैं। साथ में हम लोगों की जो श्रीनगर वाला एरिया है या लांसडाउन आदि के बस वहाँ पे भी ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसके साथ भू कानून के उल्लंघन के जो मामले थे जो कोर्ट में हमारे निस्तारित होते हैं उसके क्रम में भी धुमाकोट में 27.5 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है और उसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है। तो ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा।
0: राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को संचालन को लेकर तैयारियां तेज होगी न। ये क्रम में हल्द्वानी को गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला को आयोजन किए गए। ये दौरान खेल संरचना का पाठ्यक्रम और स्टाफ तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुए। सम्मेलन में प्रदेश भर का खेल अधिकारी, कोच और खेल जगत से जुड़िया दिग्गज शामिल हुए। खेल सचिव और विश्वविद्यालय का कुलपति अमित सिन्हा ने बताई कि बैठक में विश्वविद्यालय का संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना छन।
3: पहली चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, इसकी बहुत बाहर डिमांड है। इसके लिए इसके जॉब के बहुत अच्छे स्कोप है। हम लोग ये चाह रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे जो आसपास के जो भी वो यहाँ पे आए, यहाँ पढ़े। स्पोर्ट्स कोचिंग में भी यहाँ पे जो गेम्स की कोचिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है, जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, उन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक उसको प्रचार प्रसार करके हम लोगों को ला सके। बिकॉज हम जो क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सारी तैयारियाँ इन सब से चर्चा हुई।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का बाद भारतीय सेना ते मिलनी 481 युवा अधिकारी। ऐतिहासिक परेड में 9 महिला कैंडिडेट्स भी वेन पास आउट। रुद्रप्रयाग जिला का प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जोखली में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ते प्राथमिकता का आधार पर समस्याओं को निस्तारण करने का निर्देश दिनी। देहरादून जिला प्रशासन का संवेदनशील पहल, बीमारियों से जूझा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बच्चों ते मिलो निःशुल्क उपचार। और पौड़ी जिला में अतिक्रमण का खिलाफ प्रशासन को अभियान लगातार जारी। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सर्व श्रोतान के अभुदड़ी मनी साग नमस्कार। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक छीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। देवड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के दौरान पशुओं के लिए हरी चरक उपलब्धता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा वर्षा माटक कटाव और चरक संरक्षण में समस्या ले सामने हूँ और यह लीजिए वर्षाकालीन चरक प्रबंधन विशेष महत्व बढ़ जाए, क्योंकि ज़्यादातर चरक फसल दी पर निर्भर रहे और पहाड़ी इलाकन में ढलानों माटक स्थिरता और जल निकासी जांच कारण खाद्यान्न धारण पड़ू। खेती के समय सारणी मौसम पर निर्भर यह अगलीजी चरक विशेष ध्यान धरते हुए सही भगत पर कटाई भंडारण और विविधता वाल चार चुनाव जरूरी छू। जब मैं साइलेज बनूँ उद्योग मौसम में जब ज़्यादा हरी चार उपलब्ध हूँ तो उनके साइलो उच्च स्थान पर बनी पक खंडियों में एयर टाइट यानी हाव रहित कर भी संरक्षित कर लेना चाहिए। यह सर्दियों और बारिशक संकट काल में पौष्टिक चरक सबने भी बेहतरीन विकल्प मानी जा। दगड़ियों पेड़ वाल चार में पर्वतीय क्षेत्रों में भू क्षरण के रोकण और बारिश में आसानी वे चार प्राप्त करण लगी खेतन में मेड़ों पर भीमल खरकू सहतूत और बबूल जात चार दिन वाल पेड़ लगाऊ चाहिए। घाकें सुगुण जब दियो रुकण पर घाम निकों तो अतिरिक्त घा जसिक नेपियर या किनीस के काटवेर भल के सुखल लड़ चें। येल नमी ले बचौड़क लीजिए उच्च जागन पर टोली या भारी चीजल दबेर धर लड़ चें। जैलू सड़ोना दवड़ी संतुलित आहार में मौसम में हरी घा में पानी की मात्रा ज़्यादा और पोषक तत्व कम होने येल जानवरों का लगभग 60% हरी चार और 40% सूख चार मिले भी देने चाहिए। जैल पशुओं के लगातार पर्याप्त चार मिल सको। जैल पशुओं के पोषण मिले स्थिरता हो और दुग्ध उत्पादन ले बेहतर बनी रहो। चारक विताल मटक सेहत ले सही बनी रहो। जैल कृषि चक्र और मजबूत है जहाँ और सबसे बड़े मौसम पर निर्भर ये करूँ कि जैल उलम्ब वक्त तले आर्थिक रूप बटी ले स्थिर होनी। तो कुल मिला वे पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षाकालीन चार प्रबंधन का उद्देश्य ये चूंकि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित और सतत उपयोग करे जा सके ताकि हर साल बारिश का मौसम मिले चार कमी नहीं हो। जानवर के भरपूर पोषण मिलो दगड़े किसानों का आजीविका भलो हो और वो सुरक्षित बनी रहो। अगर आप पशुओं के दाना देना लाग रहा तो दान में फंगस हूँ उनके सुख भी देना चाहिए। जैल जो हमारे पशु छीन वो स्वस्थ रहो।

0: और देखो यो ये तो ची बातचीत। और अखिल आपको सुनानू खेती बचाओ अभियान न का अंतर्गत मरता स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर जनपति हेल्थ सोसाइटी कोश का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री प्रशांत भटजी देकर करेंगे क्षेत्र संकृत भेंट वार्ता और इन दो का भेंट करने लग रही मनीष शाह। श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं हिमालयन संस्था हेल्प सोसाइटी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री प्रशांत भटजी से। आज हम इनसे जानेंगे खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। तो भटजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आप हमें ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
1: एक तो मिट्टी कटाव रोकने के उचित प्रबंधन होने चाहिए
0: जी,
1: जिसमें मिट्टी कटाव रोकने के लिए उचित तरीके का एकीकरण होना चाहिए
0: जी,
1: जैसे फसलों के बीच में मल्टी क्रॉप लगानी चाहिए और कुछ पेड़ों का रखरखाव रखना चाहिए उसके अगल बगल। फसलों में अपनाई जाने वाली क्रियाओं में भूमि एवं जल प्रदूषण का खतरा होता है, जिस कारण पेड़ जो होते हैं मृदा संरक्षण हेतु मिट्टी की स्वास्थ्य एवं जल संरक्षण की प्रक्रियाएं इसके थ्रू हो जाती हैं। इसमें फसलों के अवशेषों को जलाना ना जलाना एक इसका सीजन होता है, जिसमें फसलों के अवशेषों को ना जलाने से भी मिट्टी का कटाव रोकने में बहुत ज्यादा फायदा होता है।
0: अच्छा, मिट्टी के जो शेष है उसको कैसे सुधारी जा सकती है?
1: का कंपोस्टिंग होता है, डीकम्पोस्ट।
0: और दूसरा जैसे कि
1: फसलों के अवशेष बच जाते हैं, जैसे गेहूं बचता है उसके बाद जो फसलों का अवशेष बच जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, उसको जलाने के बजाय उसे कंपोस्टिंग के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए
0: जी,
1: जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनका रख रखाव हो जाता है और बचत हो जाती है उनसे।
0: अच्छा, इसमें कौन से जैविक उपाय होते हैं जो मिट्टी के पोषक तत्व को बढ़ाते हैं?
1: इसमें जैविक उपाय वर्मी कंपोस्टिंग हो गया
0: जी,
1: और जैविक हरी घात हो गया
0: जी,
1: और जो पशु पालन पशु धन से मिलने वाली जो भी अवयव है, जीवामृत बीजामृत हो गया, नीम ऑयल हो गया, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता ज्यादा बढ़ती है और जैविक खेती में इसका पूरी तरीके से वो हो जाता है, इनका पालन हो जाता है।
0: और दूसरा, जैसे हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपने खेत में जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको नियमित रूप से कैसे माप सकते हैं?
1: जी, इसको मापने के लिए एक तो आपने पहले मिट्टी की जाँच करवानी है, सोयल हेल्थ किस प्रकार से है
0: जी,
1: और इसमें आप फसलों का चक्र किस तरीके से अपनाते हैं
0: जी,
1: और हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, जैसे कि जो उनका फसलों के अवशेष बच जाते हैं
0: जी जी,
1: उसका किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, और जो आपका कंपोस्टिंग का होता है गोबर खाद हो गई, ये सारी चीजें आप किस तरीके से डिकम्पोस्ट करते हैं।
0: और दूसरा सर, इसमें जैसे किसान इसको मतलब नियमित जाँच और सुधार इसमें कितने टाइम पर करना चाहिए उसको?
1: हर फसलों में करना चाहिए, जैसे पहाड़ों में दो फसलें होते हैं रबी और खरीफ की, एक तो बुआई के टाइम पे होनी चाहिए मिट्टी की जांच
0: जी,
1: और एक बुआई से पहले, और दोनों सीजन में इनकी चार बार जांचें होना बहुत अनिवार्य है।
0: और सर, जैसे 1 जून से 30 जून तक हमारा एक खेती बचाओ अभियान चल रहा है, इसके अंदर हमारा जो मृदा स्वास्थ्य का है और प्राकृतिक खेती का है, मृदा परीक्षण का है, तो इसको किसानों को इसमें कितना लाभ मिलेगा?
1: मैं जैसे कि उत्तराखंड के अंतर्गत चलने वाली परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसमें 1 हेक्टेयर के अंतर्गत किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, जिसमें वो अपने फसलों का और मिट्टी का जांच करवा सकते हैं, और 3 साल की योजना के अंतर्गत उन्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं 1 हेक्टेयर के अंतर्गत, जो किसानों के सहयोग के लिए दिए जाते हैं। इस तरीके से
2: ऑर्गेनिक जो फसलें होती हैं वो केमिकल के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगी दिखती है, ठीक है, इसमें मतलब कोई बीमारियां होती नहीं होती
0: जी। और सर, जैसे जो हमारी किसान भाई बहनों की जो खेत में मिट्टी है उसकी सेहत का पता हम कैसे लगा सकते हैं?
1: मिट्टी की जांच के उपरांत ही पता लगता है सर, ये सारी चीजें ना, कि किस तरीके की फसलें यहाँ उपयोग में लाई जा सकती हैं और किस तरीके की फसलें यहाँ हो सकती हैं, जिनसे उन्हें नकदी भी आ जाए और जैविक तरीके से भी।
0: अच्छा, जैसे हमारा कोई किसान भाई है जो अगर उसने अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी तो कैसे करेगा? एक ही जगह से मिट्टी लेगा या फिर मिट्टी के जो खेत है उसके चारों कोने से अलग अलग मिट्टी लेगा?
1: ये अलग अलग कोनों से ली जाती है सर ना।
0: अच्छा, तो इसके लिए किसान भाई को कोई शुल्क भी देना पड़ता है? निःशुल्क ये होती है,
1: विभाग से लिखित होने के बाद उनका निःशुल्क हो सकता है, अन्यथा उनका शुल्क पड़ता है।
0: अच्छा, तो इन्हें जो कौन से विभाग में जाना पड़ेगा जिससे कि वहाँ से इनको मिट्टी की जांच इतनी निःशुल्क हो सके?
1: जी, मृदा प्रशिक्षण केंद्र है हवाल बाग में और कोटी में प्रयोगशाला में
0: सलम, जो विभाग लिखेगा उसके बाद ये इनकी मिट्टी की जांच निःशुल्क हो जाएगी?
1: निःशुल्क हो जाएगी।
0: और अन्यथा अगर इनके पास कोई अगर वैसे अगर डायरेक्टर सीधे विभाग में वहाँ जाते हैं प्रशिक्षण केंद्र में तो वहाँ पर इनको चार्ज पड़ेगा?
1: शुल्क है सर।
0: और जैसे आप लोग मिट्टी की जांच करवाते हैं उसमें

0: कितना खर्चा आता है लगभग?
1: ये सर निःशुल्क होता है संस्था के माध्यम से जी।
0: अच्छा। और सर जैसे कि आजकल देखने में आ रहा कि हमारे सारे गांवों से पलायन हो गया, बहुत सारे खेती जो हमारी है वो बंजर हो चुकी है, तो ये खेती को बढ़ावा देने के लिए आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिससे मतलब खेती बचाओ अभियान हमारा चल ही रहा है तो हमारे खेत भी
1: सर,
0: बचें और हमारी फसल भी अच्छी हो?
1: अभी अधिकतर लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। वो इसलिए पलायन कर चुके हैं क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि खेतों में जंगली जानवर बंदर सुअरों का आतंक ज्यादा हो गया करके ना।
0: जी
1: तो इससे पहले क्या होता था, आज हम परंपरागत कृषि विकास योजना इसीलिए लागू की गई है कि जो गांव का लोग है वो बाहर ना जाए,
0: जी
1: है ना। दूसरा देखो, पहले से हमारे पहाड़ में क्या होता था कि दूर दूर तक लोगों की खेती हुआ करती थी,
0: जी जी
1: ठीक है। आज तो उस टाइम पे जैसे बंदर सुअर वो तब भी होते थे, आज भी हैं,
0: जी
1: है ना। लेकिन उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि आपका खेत, मेरा खेत, दूसरे का खेत, तीसरा खेत, तो बंदर सुअर हल्का फुल्का नुकसान हर किसी में करते थे।
0: जी जी
1: तो जब दूर दूर तक लोगों की खेतियां हुआ करती थी उसमें अंदाजा नहीं आता आदमी नुकसान हो रहा करके, ठीक है। आज की डेट में जो लोग खेती कर रहे हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, है ना। वो लिमिटेड लोग खेती कर रहे हैं तो उस खेती से ये हो रहा है कि जिस जो प्रॉपर आदमी खेती कर रहा है उसी का नुकसान हो जा रहा है, बाकी तो कोई कर ही नहीं, इसलिए खेत बंजर पड़ गए हैं
0: जी।
1: इसके लिए सरकार द्वारा ना अभी एक योजना चलाई गई है तार घेरवाल वाली, है ना। तो उसमें ये है कि एक समूह के माध्यम से आपने जो ग्राम पंचायत है उसके माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को लेटर जाएगा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के लिए,
0: जी
1: ठीक है। उसमें वो चीजें हैं कि 1 मीटर से लेके 1000 मीटर तक आप तार वाले ले सकते हैं
0: जी।
1: वो तार सेट में जो है उसमें एंगल और जो जाली है वो विभाग प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसको जो असेंबल करना है और गड्ढे वड्ढे खोदने हैं वो सारा किसान करेगा भी।
0: बिल्कुल जी,
1: हाँ जी
0: बिल्कुल सर। खेती बचाओ अभियान में जो आपने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोता वल्लभपुर सुनी खेती बचाओ अभियान अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर जनपति हेल्थ सोसाइटी कोसी अलमड़क प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री प्रशांत भटजी दलकरी के क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता और इन भेंट करना मनीष शाह।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोता, कार्यक्रम में अगले आपको सुना हूँ। सरकारक 12 वर्ष मोट अनाज और सब्जी उत्पादन में आय विषय पर भूपेंद्र सिंह द करीगे से भेंटवार्ता और इन दोगे भेंट करने आगरी प्रमोद कुमार पांडे।
7: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में आई ग्राम देहोली ब्लॉक ताड़ीखेत जिला अल्मोड़ा भट्टी श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी, आपको उनके बताओ आप की चीजें खेत कर छा।
8: आकाशवाणी श्रोताओं को नमस्कार। तो खेती बाड़ी में एल दो हम अनाज खेती करनो, जैसे धान, झोंगरा, मडुआ, गहत भट और शाग सब्जी ल करनो, आलू, प्याज और यो जो कद्दूदार बेलदार पेड़ होनी वह के शाग सब्जी खेती करनो और मसालों के लिए जो खेती पाती करनो और वह साथ में जो अच्छा बाग बगीचा में फल आड़ू पुलम खुमानी और चेरी नाशपाती कीवी नींबू माल्टा इत्यादि सब हूँ हमारे बगीचे में।
7: अब उनको मोटा अनाज लगू
8: जी जी मो
7: तो मोटा अनाज में के पूछा।
8: तो मोटा अनाज में जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, जौ और धान, मडुआ, मदिरा इत्यादि ये चीज।
7: तो धान को प्रजाति धान लग रही
8: धान हम एल जो चैती अच्छा धान बोरो जाऊँ की बड़पस कुनी वो जो हूँ लाल धान हूँ ना लाल धान बोरो।
7: अच्छा,
8: पैतृक से हमारे पैतृक से बीज।
7: अच्छा, बीज मतलब पैतृक लगू छा
8: जी जी।
7: और जो भट गहत
8: भट गहत तो हम जो छो यो अच्छा मडुआ फसल ही ना, जैसे हम अच्छा गेहूँ काट बेर फिर मडुआ बोजनु ना, फिर जब मडुआ उग जा 1 इंच हो जा वह बाद हम जब अच्छा इनमें धनेला लगनू तो वह साथ में गहत भटक अच्छा बुआई कर दिनू।

0: जाल की मिश्रित खेती है जी।
1: अच्छा, तो चैती धान कतान हो गो?
0: तो चैती धान एल हमुआ लगभग 4-5 इंचो है लगभग।
1: आई गुड़ाई तो करा ली?
0: ना ना, गुड़ाई जो शुरू हो रहा है, लेकिन अब दिन पर दिन जो बहुत परिवर्तन हो रहा है अब ना, क्योंकि आज तो जो अब यो कोई आज भी 30-35 साल पहले जो चैती धानों को अच्छा प्रथम अच्छा गुड़ाई कर भी एल जो द्वितीय गुड़ाई अच्छा समय छी, लेकिन आज आज ये तो परिवर्तन होगा कि आई जो से प्रथम गुड़ाई चल रहा है।
1: अच्छा पटियाल जी, मगर ये बताओ कि एल जो सिंचित धान अब लगाई जाल रोपाई वाला धान
0: जी जी
1: उलझा
0: ना ना, यो सिंचित धान हम वहाँ निहुन ना, हम वहाँ उपराऊ जमीन से उपराऊ धान में जो सा हमारे सिंचित है वो लोगों ने।
1: अच्छा, आपू जमीन जो से उपराऊ छे
0: जी जी।
1: मडू मादिर तो भरा जान नोन
0: हो? मडू मादिर यो जो फसल हर साल जो से बम्पर ही, लेकिन जंगली जानवरों की तो आतंक से कि हमको खेती करने में काफी परेशानी हो रहा है। पल्ली पर जो 5-5, 6-6 बोरी जो सी तब गेहूँ छी, 8-10 बोरी तब धान झोंगरा हो ची, अब सब जंगली जानवरों की तो आतंक से कि तब 2-4 महीनों को खाऊ हूँ।
1: तो कौन सा जंगली जानवर आज काफी नुकसान पहुंचा रखो हम पर्वतीय कृषि के? तो बोल कहो कद्दू वर्गी जो पहुंचन उन्हें लगा रखी साग पादक
0: खीरा है, लौकी है गई, तुमड़ा है गई और तुरई है गई, तो यो चीज
1: इधर बीज ले वही पैतृक बीज है या कहीं बेटी ला छा
0: ना इनोर तो? अच्छा, कुछ तो जो पैतृक बीज से कुछ बीज यो जो हम विवेकानंद पर्वतीय क्षेत्र भी लेनु, कुछ अच्छा पंतनगर भी लेनु, तो किले की यो बीज जो 100% जो अच्छा सही होनी।
1: अच्छा, तो ये पॉली हाउस में लगा रखी है या खुली में लगा रखो?
0: ना ना, खुली में जी लग रही, उसी के मिल जो से उद्यान विभाग द्वारा एक उलर लग रहा पॉली हाउस, तो ये मैं जो से हम खीरा ककड़ी ला अच्छा लगनू, लेकिन लेकिन यो जो से पॉली हाउस बिताई ला जो से काफी पानी आवश्यकता ही ना, तो उसी का अच्छा सिंचाई साधन तो हम ऊपर जो से अपन जो से पर्सनल अच्छा टैंक से या हम सिंचाई करते रहूं। अच्छा। लेकिन पॉली हाउस में जो से काफी अच्छा जो बीमारियां थी और दोहर वह लीजिए खाद जो से कैसुआ नुमा अच्छा खाद चाहिए बिल्कुल एकदम ना
1: तुम्हारे सन कैचुआ
0: ना, उसी की मिल एक जो से बर्मी कम्पोस्ट बनरो जमा 8-9 खान छी और यो जो से उद्यान विभाग द्वारा में गई 33,000 रुपये मिली, तो यो फी डिल समय पर, तो इनमें 3 महीने में जो से कैचुआ खाद है जी तैयार, तो ये जो से खेती लो उत्तम हो रहे
1: और सिंचाई टैंक तुम पाँच सन
0: हो
1: और जब तुम अचानक बीमारी लग जाओ फसल में कभी
0: जी जी
1: तो उभत क्या खर्चा फिर?
0: अच्छा, जैसे पेड़ हमारे फलदार पेड़ होनी मैं तो ये लीजिए हम जैसे आड़ू में पत्ती मोड़ चीट ले जाऊँ वो ले जाऊँ, तो जब पेड़ों को अच्छा गुलाबी कली अवस्था ही जता तो आड़ू पेड़ों में फूल होता तो हम उद्यान विभाग द्वारा 50% हाफ रेट पर जो से वहाँ पर उद्यान विभाग में दवाई लूँ, और जो तब घर में हमारा अन्य कद्दू वर्गीय अच्छा पेड़ होनी ये लीजिए हम गौमूत्र इस्तेमाल कर लूँ वह छिड़काव कर लूँ।
1: अच्छा
0: जी,
1: फल फूल में क्या कह रहा?
0: फल फूल उसी तो अलबेर जो से फल फूल बहुत कम से एक आड़ू को जो से बम्पर खेती से हमारा आयल और पुलम ला जो से 50% से और तक खुमानी और अच्छा तब नाशपाती वर्गी जतुकला फल छी इमें जो से 5% अच्छा फल से।
1: के कारण मन चाहिए?
0: यह कारण जो से अच्छा जलवायु परिवर्तन से, कि लेकिन पहाड़ों में जाता हूँ आजकल तब रोड खुदी दोहर सब जो एक तरफ अच्छा वैज्ञानिक लोगों को जो से संचार काफ़ी चल रहा ना, किले की कहीं जो से टावर बन गई कहीं क्या है वो, और यह जो से हमारा मोहल्ला जो से अच्छा काफ़ी प्रभावित हो रही, तो यह कारण जो से फल फूल है जो से शेड नहीं हो पा रहा।
1: तुम कौन सा हमें पास फल फूल है पेड़ आड़ घुमाइन पुलम और नाशपाती जैक्सन तो को प्रजाति छ नहीं आड़ू को प्रजाति
0: आर में तो जो से रेड जून से और एलेक्जेंडर से सब तोतापरी से और अन्य
1: पुलम और घुमाइन में
0: और पुलुम में जो सेंटर रोजा से मेरी पूजा से और अन्य प्रकार छे हरी छाल से
1: और कमटी लाचा यह पौधन के
0: यह पौध जो हम घर में जो नवंबर दिसंबर में जो जब हमारे खेत खाली होनी है हम आरू को जो बीजू बीज होनी उनको खेतों में लगे दिनों, फिर वह बाद फरवरी मार्च में वो उग जानी, फिर जब वो एक दू साल गया फिर वह बाद कोई प्रशिक्षित माल द्वारा हम उनमें कलम लगन।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो यह बीज कैसी बड़ो छा?
0: यह बीज जो अब तब उसी हमारे घर में तो यो कुछ पेड़ जो छी अच्छा बीजू आड़ू खुनी ना जो कि छोट छोट अच्छा आकार खुनी, तो वो कट्ठू आड़ को नहीं लेकिन वो कट्ठू नहीं हो असली आर वही हो।
1: अच्छा,
0: तो वही आर का हम जब तब सितंबर और टाइम हूँ वो इकट्ठा कर बेर फिर वह छाल हाल निकाल बेर फिर वो इकट्ठा कर लूँ वही वही बीजू को बीजू आड़ू को जो अच्छा गुठियाल से हमारे क्षेत्र में 120-130 रुपये किलो जाओ।
1: अच्छा,

0: तो ये लज उससे भले आमदनी ही कभी
1: तो के तो बढ़िया हूँ एक भी
0: हो बीज हूँ फिर वही बीजों का अच्छा बीज बोई बे फिर उसमें कलम चढ़ाई जी ना
1: अच्छा
0: फिर अच्छा नाना प्रकार का जो से आड़ आड़ निकाली जानी तब जैसे एक यो आजकल नेक्टिन आड़ निकल लो नेक्टिन
1: अच्छा
0: यो आड़ू और अच्छा प्लूमो को अच्छा क्रॉस कर भी निकाल जा रो
1: तो काम अच्छा है क्या
0: तो यो आर हम जो से आरू प्लूम और यो चीज तब नींबू माल्टा का तो जो हम जो से टूरिस्टों को निकाल देने की हमारे क्षेत्र में जो से काफी टूरिस्ट लोग उन्हीं ना तो यो फल का हम अच्छा उठाई निकाल देने तो हमको रेट ठीक मिल जाए और जो बकाई अच्छा ट्रको शापुल नाशपाती इत्यादि हूँ वो हम हल्द्वानी मंडी में वो करना
1: अच्छा हल्द्वानी मंडी में
0: जी जी
1: और जय के अलावा और के कराखा
0: और ये के अलावा अब खेती ला करूँ पशुपालन ला करूँ
1: कतु शन गोर भैंस
0: गोर ये भैंस पर द्वी अच्छा बल्द छी द्वी अच्छा गोर छी और हमारे क्षेत्र में जो है आजकल अच्छा बाघू आतंक ला काफ़ी हर हो यह कारण जो है जंगली तब जानवर जो है पालतू जानवर ऊपर काफ़ी हमले कर रही
1: अच्छा तो अच्छा प्रत्याज एक बात होगा और बताओ
0: जी
1: जो सरकार द्वारा योजना चलाई जानी
0: जी जी
1: बागवानी लीजिए है गे और पशुपालन है गे हमारे खेत बाड़ी लीजिए वो योजना का लाभ उठूचा
0: जी हाँ योजना लाभ तो उठनू लेकिन अब सरकार रख ल काफ़ी योजना हो रही है आजकल हमारे गाँव जो है हमारे यो अलमार जिले में कतु गाँव जो है सब जिलागम द्वारा अच्छा चयनित है रही ना लेकिन मैं सरकार हूँ यही कहूँ कि आप मुद्दों को यह रखनू कि जिलागम तब स्कीम हो रहा है चलो ठीक से लेकिन तब जो गाँव में आयल 80-90% खेती बागवानी हो रहा है वहाँ इन जो से तार बाड़ अच्छा पहल छोर पर वहीं करूँ चाहिए कि जब जब तार बाड़ जालीदार अच्छा तार लगला तब हमें खेल सुरक्षित रहो और हम उनमें खेत खेती आसानी तब कर सकूँ कि तब सरकार पॉलिसी अच्छा यह छी कि जो अच्छा जलागम कर्मचारी छी उनको पता नहीं कि जलागम अच्छा काम गाँव अच्छा चयनित है आप जो गाँव में अच्छा 90% अच्छा बंद हो गए वहाँ क्या खेती है
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल सही बात कहूँ आप हूँ अब एक बात मैं आपको सही योजना फसल बीमा योजना करूँ साहब न
0: तो फसल बीमा योजना ला करूँ जैसे आड़ू पेड़ों को अच्छा करवा दी कुछ
1: अच्छा और जो बीच में जो बारिश है
0: जी
1: फर्क पड़ो
0: वेल फर्क तो पड़ रहा उसी का अच्छा नोले स्रोतों में और जो ये अच्छा जंगलों में आग लग रहा थी मतलब अच्छा कंट्रोल हरो और खेती में जो एल काफी तरावट से
1: और बागवानी में
0: और तब बागवानी में जो से पेड़ एकदम जो से हरी भरी काफी हरी के लिए उनको तरी मिल गया
1: और जब मैं पेड़ में फूल आ रहा थी
0: जी जी
1: फूल में लगे नुकसान
0: हो जता तो यो मार्च अप्रैल में फूलों तत्व का हमारे क्षेत्र में काफ़ी वो है ना बारिश वेल वेल कि जो अच्छा फलदार पेड़ों में फूलों वह पराग अच्छा धुल जा तो फूल कम तब फल कम अच्छा शेड हुए
1: आपको किसान सम्मान निधि मिला
0: जी जी हाँ किसान सम्मान निधि मिली 6,000 रुपये तब
1: साल जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये आपको साल एक मिलनी मिला आपको क्या खर्चा
0: यो किसान सम्मान निधि जो हमको 6,000 रुपये साल मिल रहे तो इनमें जो हम पर एक अच्छा पैट्री टीलर 80% राशि आता है जो कि हमको 18-20 हज़ारों पड़ो तो एक जो हैरो हैरो होनी उनको ले लूँ के लिए कि तब एक में 24 हैरो लगनी तो 3-4 हज़ार का तो अच्छा साल में वही ले जानी फिर वह साथ साथ में और अन्य चीज़ ले यो जैसे पेड़ों में छिड़काव करने से उद्यान विभाग द्वारा अच्छा दवाई ले लूँ और कहीं बीज बाज हो जगह बीज में मिल जो 20 किलो विवेकानंद लेबोरेटरी की अच्छा गेहूँ बोरो छी तब जाल की मेरो अच्छा 2 क्विंटल अच्छा गेहूँ हेरो है
1: तो आप दो बड़ी जानकारी हम उनके थे यह लीजिए आप बहुत बहुत धन्यवाद
2: श्रोता वाला अपन सुनी मट अनाज और सब्जी उत्पादन में आय विषय पर भूपेंद्र सिंह देव करी की भेंटवार्ता और इन दुख भेंट करना प्रमोद कुमार पांडे
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में मसाला फसलों जैसे अदरक, हल्दी, फुलवारी, इलायची, लहसुन और धनी खेत ज्यादा लाभकारी छो, क्योंकि की आपको खेत पर दगाड़े साग सब्जी खेत तो कर सा, अगर भी दगाड़ मसाला खेत करी जाओ तो किसान मन की कहें दुगनी आय हो और यो कम जाग में ज्यादा मुनाफा दिनी बार फसल छू। मटा कटाव के लिए यो रोकूँ और स्थानीय किसानों को पारंपरिक अनाज की तुलना में लगातार आय प्रदान करूँ, क्योंकि पर्वतीय ढलानों वाले जाग पर अदरक और हल्दी जास फसल लगुण वे जड़ों पकड़ मठ में मौजूद हैं, जेल क्योंकि माटक जो कटाव हूँ उल्हे रुकूँ। दगड़े पर्वतीय क्षेत्रों में आज युवा कमी होने कारण युवा पलायन के रुकण में मसालों व्यवसायिक खेत एक कारगर साधन उन्हें लगी बढ़ सकी और सबन भी भल बात जो हमारे किसानों के हर वक्त जंगली जानवर डर सतूँ तो एक यह जानवर ले नुकसान नहीं पहुँचूँ और इनमें जैविक रूप में उगाई गई मसाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले भर मांग है और इन्हें कीमत ले सामान्य हवे बहुत ज़्यादा मिल जाए। इनमें बंजर भूमि सदुपयोग, कम लागत, ज़्यादा मुनाफा और मृदा संरक्षण और स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर ले पैदा होंगे। यह किसानों आय दोगुणी करण दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक और व्यवहारिक विकल्प छू और यो पलायन रोकण में ले मदद करूँ, जेल यो स्वरोजगार के लिए और स्वरोजगार के लिए एक भल साधन बढ़ जाए।

श्रोताओं, नंदनलाल आर्या का ये लोकगीत आज किसान वाणी कार्यक्रम इतिक संपन्न हो। हमारे यो कार्यक्रम का प्रायोजक छी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और अब अभुदगड़ी मनी सागर दियो आ गया। नमस्कार।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। आप कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नगदगर मी छू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार, भारतीय सैन्य अकादमी मा पासिंग आउट परेड बाद भारतीय सेना के मिली 481 युवा अधिकारी। ऐतिहासिक परेड मा 9 महिला कैडेट्स ले भई पास आउट। रुद्रप्रयाग जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशील जखोली मा ग्रामीणों की समस्या सुनी। अधिकारियों के प्राथमिकता आधार पर समस्याओं के निस्तारण करने के जिले निर्देश दें। देहरादून जिला प्रशासनक संवेदनशील पहल, गंभीर बीमारियों से परेशान आर्थिक रूपल कमजोर वर्ग नातिनन के मिलल निःशुल्क उपचार। और पौड़ी जिला मा अतिक्रमण खिलाफ प्रशासनक अभियान लगातार जारी। अब समाचार विस्तारल। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड के बाद 481 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बनी। सैन्य बैंड गूंज, अनुशासित कदम ताल और पारंपरिक अंतिम पग समारोहल पूर्व वातावरण के भावपूर्ण और गौरवपूर्ण बना। यो वर्षक परेड सब्य हबेर महत्वपूर्ण विशेषता छी 9 महिला कैडेट्स का सफलतापूर्वक पास आउट होना। भारतीय सैन्य अकादमी इतिहास में यो एक ऐतिहासिक पड़ाव छू। यो महिला नेतृत्व ऊन वाल विकास और सशक्त भारत अवधारणा के लिए नई ऊर्जा प्रदान करल। एक रिपोर्ट।
2: पासिंग आउट परेड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट सूल अंतिम पग पार कर बे सेना में अधिकारी बनना गौरव प्राप्त करो। इनम बटी 16 मित्र राष्ट्रों 34 कैडेट छी जो अपन अपन देशों सेनाओं में शामिल है। परेडक निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर करो। यह मौक पर राष्ट्रपति को की भारतीय सैन्य अकादमी सम्मान साहस और राष्ट्र सेवा का प्रतीक छो। उन्होंने पहली बार पास आउट हुई सैन्य कैडेट छू के भारतीय सैन्य अकादमी इतिहासक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए देश महिला नेतृत्व वाले विकासक दिशा में एक प्रेरक कदम बता। श्रीमती मुर्मू अधिकारी कैडेट सुहते बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आजीवन शिक्षण साहसिक निर्णय लेन और नैतिक नेतृत्व परिचय देने का आह्वान करो। पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता लीजी प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार के दी गो। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बटी योगिता बिष्ट।
1: कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशील आज जखोली में आयोजित जन कल्याण शिविर और संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्या सुनी। केंद्र सरकार 12 साल पूर्व होने के अवसर पर आयोजित जन कल्याण शिविर में उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सिद्ध बातचीत करी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में ठाड़ व्यक्ति तलक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना छू। श्री जोशील कहा कि जन कल्याण शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के द्वार पर पुजबेर उन्हें समस्याओं का समाधान करने जैक वजल आमजन के जग जग कार्यालयों के चक्कर नी काटन पर नहीं। उन्होंने अधिकारियों दे जनता की समस्याओं के संवेदनशीलता दगड़ निपटूनक और पात्र व्यक्तियों के सभ्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बखत पर उपलब्ध करनक ले निर्देश दें।
3: हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान वहीं पे कर रहे हैं। और आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई हैं, जिसमें 30 का निस्तारण हमने किया, अभी 10 बाकी हैं। और हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जिस समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने यहाँ पर जवाब दिए, अगर 15 दिन तो 15 दिन, 2 दिन तो 2 दिन, तो ये सुनिश्चित करें कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज एक जवाबदेह सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे प्रदेश में हो, एक जवाबदेह सरकार चल रही है। जनता की समस्याओं का निर्णय ना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन धामी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है।
1: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल आज अलमर जिला में सोमेश्वर कंडार कुआं मंडल में ऊणीवल सुनिया कोट मटीला मार्ग धें ओलिया गांव तलक प्रस्तावित 3 किलोमीटर

0: लंब बाटक निर्माण कार्यक शुभारंभ करो। यो मौक पर कैबिनेट मंत्री को कि ओलिया गोली जी मोटर मार्ग निर्माण ग्रामीणों कई दशकों की सुईण छी जो आज साकार हुनो। उनन को कि 77 लाख रुपए लागतक बढ़ने वाल यो सड़क वहाँ ऋण वालक मात्र शक्ति और ग्रामीणों जीवन के सरल बरुणक दगर दगर क्षेत्रक विकास के लिए नई गति दियल। उनन को कि प्रदेश सरकार प्रदेशक अंतिम गाँव तलक ले सुविधा पुजूणक लीजी प्रतिबद्ध छू। यह अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण असैनियनन सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताए।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: देहरादून जिला प्रशासन अल गंभीर और जन्मजात बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूपल कमजोर वर्ग नक नांतिरन के निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करुणक पहल करी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहानल यस नांतिरन के चिन्हित करण और उपचारक प्रक्रिया के प्राथमिकता आधार पर संचालित करणक निर्देश दी। उन्हें बाल विकास विभागक जिला कार्यक्रम अधिकारी के 6 वर्षक नांतिनन और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के 6 हबेर 18 वर्ष तलक आयु वाल नांतिनन और किशोरों के चिन्हीकरणक लीजी विशेष अभियान चलुणक ले निर्देश दी। जिलाधिकारी को कि जिल्मा कोल नांतिन डबल नक अभावक कारण उपचार है वंचित निरूण चे। उन्हें संबंधित अधिकारियों के निर्देशित करो कि यस नांतिनक पछाण करबेर उनर जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाओ ताकि उनन के टेम पर उपचार दी जा सको। जिला अधिकारी बता कि चिन्हित नांतिनक उपचार केंद्र सरकारक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमक अंतर्गत निःशुल्क कराई जाल। यह अलावा गंभीर बीमारियों को उपचार यो कार्यक्रम में संभव नहीं थी पर वीक उपचारक लीजिए दुहर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और राइफल फंडक उपयोग करी जाल जदे नांतिनन के भल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकल। पौड़ी जिल्मा अतिक्रमण खिलाफ प्रशासनक अभियान लगातार जारी छू। यो क्रम में यमकेश्वर तहसीलक अंतर्गत गरुड़चट्टी हैबे लक्ष्मण झूला तलक जिल प्रशासन और नगर पंचायत स्वर्गाश्रमक संयुक्त दलल विशेष अभियान चलाबेर सार्वजनिक भूमि और मार्ग क्षेत्र चिन्हित करी और 13 अस्थायी अतिक्रमणों के लिए हटाई गो। वहीं लेंसडाउन तहसीलक गौ सुराड़ी स्थित गमूरो तोंक मां राजकीय भूमि पर करी गई द्वि अवैध कब्जों के लिए हटा। यह कदगढ़ कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र माले 12 चिन्हित अस्थाई अतिक्रमणों के लिए हटाई गो। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरियाल को कि सरकारी भूमि जनहितक संपत्ति छू और यह एक संरक्षण लीजी प्रशासन पूर्व गंभीरता कदगढ़ काम करनो।
2: हम लोगों ने बैठक भी करी थी सभी एसडीएम्स के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में और सभी जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एनएच पीडब्ल्यूडी आदि सबके साथ में। तो उसमें यही निर्देशित किया गया था कि पूरी तैयारी के साथ में जो चिन्हित अतिक्रमण है उसको भी हटाएं और जो नए अतिक्रमण इस बीच हो गए हैं उसको भी चिन्हीकरण तथा हटाने की कार्रवाई की जाए। तो उसके क्रम में अभी लगातार पूरे जिले भर में अभियान जारी है और इसमें कोटद्वार में काफी अतिक्रमण हटाए गए हैं, साथ में रिखणीखाल में भी काफी सारे अतिक्रमण मुक्त किए गए हैं। साथ में हम लोगों की जो श्रीनगर वाला एरिया है या लॉकडाउन आदि के बस वहाँ पे भी ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसके साथ भू कानून के उल्लंघन के जो मामले थे जो कोर्ट में हमारे निस्तारित होते हैं उसके क्रम में भी धुमाकोट में 27.5 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है और उसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है। तो ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा।
0: राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय संचालन के लिए तैयारियां शुरू है गई। यो क्रम में हल्द्वानी गोरापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल सम्मेलन और प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन करी गो। यो बखत खेल संरचना पाठ्यक्रम और स्टाफ तैनाती के लिबेर ले महत्वपूर्ण मंथन भो। सम्मेलन में प्रदेश भर खेल अधिकारी कोच और खेल जगत से जुड़ी दिग्गज शामिल भई। खेल सचिव और विश्वविद्यालय कुलपति अमित सिन्हाल बताए कि बैठक में विश्वविद्यालय के लिबेर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ली गई छन।
3: पहली चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के इसकी बहुत बाहर डिमांड है। इसके लिए इसके जॉब के बहुत अच्छे स्कोप है। हम लोग ये चाह रहे हैं उत्तराखंड के बच्चे जो आसपास के जो भी वो यहाँ पे आए यहाँ पढ़े। स्पोर्ट्स कोचिंग में भी यहाँ पे जो गेम्स की कोचिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है उन सब चीजों पर चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक उसको प्रचार प्रसार करके हम लोगों को ला सके बिकॉज हम जो क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे सारी तैयारियाँ इन सब से चर्चा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो।

0: सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना के मिली 481 अधिकारी। ऐतिहासिक परेड में 9 महिला कैडेट्स ले भई पास आउट। रुद्रप्रयाग जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जखोली में ग्रामीणों की समस्या सुनी, अधिकारियों के प्राथमिकता आधार पर समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दी। देहरादून जिला प्रशासनक संवेदनशील पहल, गंभीर बीमारियों से जूझ रही आर्थिक रूप कमजोर वर्ग नक्नातिरन के मिलल निःशुल्क उपचार। अर पौड़ी जिले में अतिक्रमण खिलाफ प्रशासनक अभियान लगातार जारी। यह कदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक यहीं समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.

0: this June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: वासना, आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को एक बार फिर। गीत लिखा है साहिल उद्यानवी ने और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: शुक्र इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और भाई ये हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। फिल्म है खुदा कसम, गीत रचना मजरूर सुल्तानपुरी की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ।
1: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं फिल्म जोशीला का ये गीत। इस गीत को गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला धर्मशाला में जारी। अफगानिस्तान ने दिया भारत को 195 रन का लक्ष्य। महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड होंगे आमने सामने। और भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। 13.27 सेकंड के साथ बनाया नया रिकॉर्ड।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां धर्मशाला में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है और कप्तान शुभमन गिल 6 रन और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। ये श्रृंखला आगामी एक दिवसीय विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। पर अब रुख कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप की ओर, जहां मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 5 गेंद शेष रहते 121 रन पर सिमट गई। उधर बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये खास रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच कल हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एस्बेस्टन में माहौल बेहद जोशीला रहने की उम्मीद है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में अनुभव और आक्रामक खेल का शानदार मिश्रण है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में जहां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा शुरुआत से ही मैच की गति तय कर सकती हैं, वहीं भारत के पास एक संतुलित गेंदबाजी क्रम भी है। इंग्लिश कंडीशन में रेणुका सिंह की स्विंग और दीप्ति शर्मा की निरंतरता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्रांति गौड़ भी इस मैच में अपनी चमक बिखेर सकती हैं। मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि बर्मिंघम में भारतीय प्रशंसकों से उत्साह की पूरी उम्मीद है।
2: आई थिंक बिकॉज द मैच इज इन बर्मिंघम और वहाँ पर आई थिंक सपोर्टर विल बी यू नो इक्वल बिकॉज वहाँ पर काफी सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी रहने वाले हैं और हमने बहुत सालों से उनको डोमिनेट करा है।
1: भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिक्स ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला हमेशा प्रेशर वाला होता है।
3: आई रिमेम्बर व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम इन द ड्रेसिंग रूम हैरी actually spoke. She's like, we'll not deny it. There is pressure from outside because we know the history of India versus Pakistan. We know what the fans expect. Even like my building watcher will be like, kisi ke saath haro par Pakistan ke saath mat haro. That is the kind of pressure because they love cricket, they love this rivalry.
1: Bharatiya coach Amol Majumdar ne kaha ki is format mein koi bhi gendbaz ghatak sabit ho sakta hai.
4: Look, I mean, I'll be very neutral here. You know, I have to balance it out. I mean, every bowler on a given day, it's T20 cricket. So you know, it's the shortest version of the game. And a game of chance. So, you know, on that

0: पर्टिकुलर डे एनी बॉलर वुड बी अस।
1: दूसरी तरफ फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान की युवा टीम मैदान पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी टीम में स्पिनर सादिया इकबाल और निदा डार की भूमिका अहम होगी। भारत इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय में भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं। इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 2020 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में कल कौन सी टीम अंडर प्रेशर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
2: इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने T20 विश्व कप के समीकरण पर हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला से अपने विचार साझा किए।
3: नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू।
3: अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है, तो कितना मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए ये सफर?
4: तो डिफिकल्ट तो सभी के लिए है, किसी एक टीम के लिए नहीं है, एंड सभी की दावेदारी है। 12 टीमों का अगर विश्व कप है तो 12 की 12 की दावेदारी है। हाँ, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कोई ज्यादा स्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है बाकी टीमों से, तो लेकिन ऐसा कोई क्लियर फेवरेट नहीं है कि यही टीम है जो खेलेगी या यही टीम है जो जीतेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको कम्पीट करना पड़ेगा, एंड वही स्थिति सभी के लिए, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी के लिए भी हो, सबके लिए सेम है।
3: जी, जैसा कि आपने कहा कि स्थिति लगभग सभी के लिए सेम है, मेंस क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो लगभग खत्म होती नजर आ रही है, तो वुमेन्स क्रिकेट में आपका इस पर क्या कहना है?
4: चैलेंजेस वही रहेंगे, सबका स्किल लेवल अलग रहता है, सबकी गेम प्लान अलग रहती है, लेकिन खेलने तो विश्व कप आए हैं, तो जितना कीन इंडिया रहेगी मुकाबला जीतने के लिए उतना पाकिस्तान भी रहेगा, एंड ऐसा कोई कंपैरिजन या सिमिलैरिटी नहीं है, अदर देन द फैक्ट दोनों टीमें मैच खेलती हैं, यहाँ भी दोनों टीमें मैच खेलेंगी एंड कम्पीट करेंगी।
3: इंडिया टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक सीरीज खेली, भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पिच कंडीशन और मौसम को समझने का उनको मौका मिला है।
4: सिमिलैरिटी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आई थिंक मौसम का फर्क पड़ता है, किस तरीके से खेल चलता है, आप अपने घर से बाहर खेल रहे हैं तो यूज टू होने में थोड़ा सा समय लगता है ना। उसको भारतीय टीम, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में पहले भी खेले हैं, तो उनके लिए तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समय सबको लगता है, अब क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर है तो आई एम श्योर एडजस्ट हो चुकी होगी।
3: बल्लेबाजी की बात तो हम काफी करते हैं, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर की, बॉलिंग में ऐसे कौन से नाम होंगे जो भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
4: देखिए, T20 मुकाबले में सबका योगदान है, कोई ऐसे एक या दो गेंदबाज नहीं आएंगे जिसपे आप पूरा अपना दारोमदार रखते हैं। दारोमदार हम सिर्फ एक गेंदबाज रखते हैं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं, बट सब खिलाड़ियों की अपनी स्ट्रेंथ है, तो चाहे वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट हो लेड बाय दीप्ति शर्मा इन जर्नी, या हमारा फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट हो लेड बाय क्रांति गौड़ एंड रेणुका, हर एक का रोल रहेगा और किसी का रोल ज्यादा या कम नहीं है, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा क्योंकि इसी तरीके का T20 क्रिकेट हो गया है।
3: तो T20 खेल को समझते हुए सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर बात करें एक्स फैक्टर की, तो कौन भूमिका में नजर आएगा?
4: ऋचा घोष मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा भारतीय टीम के लिए, कि ऋचा घोष किस तरीके से इस विश्व कप में खेल पाती है या उनको कितना खेलने का अवसर मिल पाता है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं मेरी। मेरे को लगता है कि वो एक एक्स फैक्टर तो नहीं कहूंगी क्योंकि पहले हमें वो तो कंसिस्टेंट मेंबर है भारतीय टीम की, लेकिन हाँ उनपे थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, उनसे ज्यादा मुझे रहेगा कि वो गेम चेंजर वाला रोल खेल सकती हैं।
3: हमने बात करी ग्रुप ए की, लेकिन ग्रुप बी में आपको ऐसी कौन सी दो टीमें लगती हैं जो आगे जा सकती हैं?
4: हाँ, फिलहाल तो इंग्लैंड मुकाबला जीत चुकी है तो वो अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है तो आप उनकी तरफ जरूर देखेंगे, लेकिन जो बाकी टीमें भी हैं, वेस्ट इंडीज है, आप उनको हटा नहीं सकते पिक्चर से। तो मैंने कहा जैसे कि 12 टीमें हैं, वो सब दावेदारी के साथ आई और अच्छा खेलना चाहेंगी। हाँ, दो ही जा सकती हैं आगे, हर पूल से आगे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे पूल में वेस्ट इंडीज भी है और वो भी एक अच्छी टीम है, अच्छा खेल दिखाएगी, सो वेरी कीन कि स्कॉटलैंड कैसे खेलता है और आयरलैंड कैसे निकल कर आता है वहां से।
3: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
2: और अब बात बैडमिंटन की। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। एशियन गेम्स इस वर्ष जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: मेडलिस्ट पीवी सिंधु और एशियन गेम्स 2022 में पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के हालिया नतीजों और 26 मई 2026 तक की BWF रैंकिंग

देखने के बाद टीम को मंजूरी दी। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली इस टीम में अनुभवी एचएस प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एडिशन में भारत के ऐतिहासिक सिल्वर मेडल में अहम भूमिका निभाई थी। पुरुषों की टीम में इस साल के BWF थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने वाले अधिकतर मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले आयुष शेट्टी, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की इंडिविजुअल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तन्वी शर्मा और टीम चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली उन्नति हुड्डा को इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन के बाद चुना गया। पुरुषों की डबल्स टीम में हरिहरन अमसाक करुणन और MR अर्जुन मजबूत फॉर्म में हैं। अर्जुन के पास 2022 के पुरुषों की टीम इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल जीतने का अनुभव भी है। महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौतियों की अगुवाई कर रही हैं, जिन्हें सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम का साथ मिल रहा है। थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 चैंपियन देविका सिहाग, ईशा

0: अमसाक करुणन और एमआर अर्जुन मजबूत फॉर्म में हैं। अर्जुन के पास 2022 के पुरुषों की टीम इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल जीतने का अनुभव भी है। महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौतियों की अगुवाई कर रही हैं, जिन्हें सिमरन सिंघी और कविप्रिया सेल्वम का साथ मिल रहा है। थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 चैंपियन देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ और थारून मन्नेपल्ली के साथ मिलकर भारत की सिंगल्स की ताकत को और बढ़ाती है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो डबल स्क्वाड में अतिरिक्त कौशल और अनुभव लाते हैं। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भारत सभी 5 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। सेन और शेट्टी पुरुषों के सिंगल्स में हिस्सा लेंगे, जबकि सिंधु और हुड्डा महिला सिंगल्स की अगुवाई करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज चिराग और हरिहरन अर्जुन मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में ट्रिसा गायत्री और कविप्रिया सिमरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शीर्ष मिक्स डबल्स टीम में ध्रुव और तनिषा भी हिस्सा लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को 22-20, 21-12 से हराया। अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। सुनते हैं मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: अमेरिका की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। अमेरिका की टीम पूरे मैच में हावी नजर आई और पराग्वे को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। अमेरिका के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही। मुकाबले के 7वें मिनट में ही अमेरिका ने 1-0 की बढ़त बना ली। डेमियन बोबाडिला ने पराग्वे के डिफेंस को भेदते हुए बेहतरीन गोल दागा। मैच के 31वें मिनट में फोलारिन बालोगुन ने अमेरिका की बढ़त को दोगुना कर दिया। फोलारिन के शानदार स्किल्स के सामने पराग्वे का डिफेंस पूरी तरह बेबस दिखाई दिया। पहले हाफ में फोलारिन का एक बार फिर दमदार खेल देखने को मिला और उन्होंने अमेरिका को मुकाबले में 3-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में ही अमेरिका की जीत लगभग पक्की हो गई। हालांकि दूसरे हाफ में पराग्वे ने आक्रामक खेल दिखाया और वापसी का प्रयास किया। टीम को मैच के 73वें मिनट में सफलता हाथ लगी। पराग्वे के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मॉरिसियो ने पराग्वे के लिए मैच में पहला गोल दागा। इसके बाद अमेरिका ने अपने खेल में आक्रामकता बढ़ाई और पराग्वे के डिफेंस पर लगातार दबाव डाला। काफी प्रयास करने के बावजूद पराग्वे की टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। निर्धारित 90 मिनट के बाद स्टॉपेज टाइम में गियोवानी रेयना ने अमेरिका की बढ़त को 4-1 कर दिया। उन्होंने मैच की आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले पराग्वे के डिफेंस को एक बार फिर भेदा और अमेरिका की दमदार जीत पर मोहर लगा दी। फोलारिन बालोगुन 1930 के बाद फीफा विश्व कप में 2 गोल करने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बन गए और इस जीत के साथ ही अमरीका ने टूर्नामेंट का आगाज शानदार अंदाज में किया और टीम इस लय को आने वाले मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: पर अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। तेजस ने 13.27 सेकंड में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस पूरा करते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग के पहले मुकाबले में कल मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए। शुभमन गिल ने 15 और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर

0: करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.go.in पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

0: कहा कि सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग। This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow.

0: every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: और अब श्रोताओं कार्यक्रम के समापन में ये सुनते हैं रमेश पंत का लिखा आर डी बर्मन के संगीतबद्ध फिल्म अधिकार के गीत। इस गीत को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है

0: कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मॉनसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है, इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योग

0: योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
0: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहां तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
0: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
1: योगासन योग की शुरुआत और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
0: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आईं और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहाँ योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएँ और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे

0: ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहाँ से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूँ कहूँ कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, सो ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीज़ें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहाँ कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर

0: किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
1: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
0: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी? कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
1: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहाँ लेवल अच्छा नहीं होगा, जहाँ चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
0: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है। बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से। और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूज़ॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डी यू म्यूज़िक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूज़िक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे करके परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीज़ों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना

0: है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना, अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है ये। आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं
1: रादर देन योर ओन कंपोजिशन?
0: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव।
1: जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
2: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

जुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharat. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayan itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने 2 लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है। राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। हरगोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको

0: अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी, इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीना रामा, इसके रचनाकार हैं त्याग राजा, ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। कॉम्पोजिशन निन्नू वीना रामा, कंपोज्ड बाय त्याग राजा, इज सेट टू रूपकम तालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the...
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह

0: फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration

0: First one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 16.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी के मुताबिक रात्रि के ठीक 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सायंकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 5:55 पर हम फिर आपके समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।